0: Friends Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri mein kiya jayega. Shradhanjali ke liye aap 021-814-900 par call karein. Suchit kiya jata hai, Rajan, Shalen, Royland, Krishi, Shivlend aur Geeta ke pita, tatha Kamlesh Narayan ke pati, Nasole 6 miles Nasinu ke bhutpurva nivasi, Shiv Narayan ki mrityu Auckland mein ho gayi. Antim sanskar, Tuesday 1 p.m., Ains Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri mein kiya jayega. Shradhanjali ke liye aap 021-814-900 par call kare. Suchit kiya jata hai, Kirit, Yogesh, Kaushik Rajput ki mata tatha, Jayashree, Minachi aur Hina Rajput ki sasuma, Jaya Ben Govind Rajput ki mrityu Auckland mein ho gayi. Antim sanskar aaj 2 baje Ains Funeral Home and On-Site Cremations 11 Boulderwood Place Wiri mein kiya jayega. Shradhanjali ke liye aap 021-274-5030 par call karein. Suchit kiya jata hai Kirit, Yogesh, Kaushik Rajput ki mata tatha Jayashree, Minachi aur Hina Rajput ki sasuma Jaya Ben Govind Rajput ki mrityu Auckland mein ho gayi. Antim sanskar aaj 2 baje Ains Funeral Home and On-Site Cremations 11 Boulderwood Place Wiri mein kiya jayega. Shradhanjali ke liye aap 021-274-5030 par call kare.
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी
2: Playing Bollywood's biggest hits
3: बजे हिट गाने
2: Just chill
3: आ गया
4: You're listening to Avineet
0: क्यारा बुला सलाम नमस्ते सस्रेकाल नमस्कारम केम छो आप सभी का खास स्वागत करता हूं जबकि आज है 6th ऑफ सितंबर तो हम पर एक बार फिर आपके साथ में जुड़ गया हूं लेकर आया हूं आपके लिए जस्ट चिल और ये जो कारवा है आपके साथ में अभी से लेकर शाम 6 तक चलता रहेगा और जबकि आज है 6th ऑफ सितंबर तो फादर्स डे है काफी जगह पर सेलिब्रेशंस हो रही होंगी अभी या फिर प्रिपरेशंस चल रही होंगी तो ऐसे में आप सभी को याद करते हैं या फिर आप निकल पड़े हैं अपने डेट को अपने पापा को अपने अप्पा को या जो भी आप कहते हैं उन्हें बड़े प्यार से आप लेकर निकल पड़े हैं ब्रंच कराने के लिए वेल डन ये सभी कुछ आप करते रहें अपने डेट का आज भर के खूब जी भर के उनके साथ में टाइम स्पेंड करें तो अगर जो आप आपके लिए ये पहली फादर्स डे है यानी कि पहली बार एज अ न्यू डेड आज आप फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको याद करते हैं या फिर आपके पिता इस फादर्स डे आपके साथ नहीं है और ये पहली फादर्स डे है जहां पर आपको सुना सुना लग रहा है आपके डेड आपके साथ में नहीं है या फिर किसी कारण वो आपसे दूर है तो आप सभी को याद करते हैं एक स्पेशल दिन है साल भर आप अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं और आज आप बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर एंड दूर दूर से आप तक कॉल भी आएंगे फ़ोन कॉल्स भी आएंगे ये सभी कुछ सिलसिला आपके साथ में चलता रहेगा तो याद रहे 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमारा साथ देते रहें आप देश में हैं विदेश में हैं कहीं दूर से सुन रहे हैं You are always closer to the heart, जबकि हम playing Bollywood's biggest hits में मैं अभी लेकर आया हूँ आपके लिए ढेर सारा प्यार तो आज इस प्रोग्राम में दिन भर आपसे अगर जो आपको कुछ कहना है अपने डेट के बारे में कोई स्पेशल मेमरी है या फिर कोई खास लेसन है जो आपको सिखा कर गए हैं जिसके बारे में आप हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगे तो मैजिक नंबर्स है 5599 या फिर 0800-004-866 पर आप कॉल कर सकते हैं स्टेशन आपका है इसीलिए हम हैं और हम भी आपके हैं इसीलिए आपके साथ में ढेर सारी बातें होती रहेंगी कुछ अपनी भी कहेंगे और आज ज़्यादा आपकी सुनेंगे ये सभी कुछ हमारे साथ में रहेगा एंड कीप हमिंग

हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और जुड़ चुका हूँ आपके साथ में छह तक साथ देता रहूंगा। और जबकि आपने अगर जो समाचारों में मिस कर दिया होगा तो गिस्बन में किसी ने 28.25 मिलियन डॉलर्स जीत लिया है और इसका जो हेडलाइन था आपने न्यूज़ में भी सुना होगा और कहीं ना कहीं किसी की लाइफ अब गिस्बन में बदल गई होगी आज ड्रॉ के बाद में, जैसे ही उनको पता चला होगा कि इतने सारे पैसे इनके पास या फिर इनके हाथ लग चुके हैं। तो कभी कभी ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि पैसा ज़्यादा हो तो क्या किया जाए और ना हो तो भी क्या किया जाए।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
3: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes. So eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
4: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi 1 Plus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings.
5: Bunnings Warehouse.
4: Lowest prices are just the beginning.
6: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
7: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
6: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
7: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
6: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
8: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुगाव में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुगाव हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
9: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
10: कभी भी कहीं भी
11: मस्त मलंग
12: आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM साथ में रोवा पर अभी का साथ है और ये है जस्ट चिल का कारवा अगला गाना सुनाने से पहले जिसे हमने लिया है फिल्म मिर्जापुर से ये फिल्म काफ़ी अच्छी चल रही है बॉक्स ऑफिस पर और इसे क्रिटिकल अप्रिशिएशन भी मिल रहा है यानी कि क्रिटिक्स भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं तो इट्स एक्चुअली रनिंग इन अ सिनेमा नियर यू अगर जो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो इसे ज़रूर करिएगा या फिर आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो यू कैन ऑल्सो कैच दैट और इसके साथ में आपको ये भी बता कि सीबीडी में मौसम थोड़ा बिगड़ा सा है कुछ बादल भी छाए हैं और रह रहकर बारिश भी हो रही है तो ऐसे में आपके इलाके में मौसम क्या है या फिर कैसा होने वाला है इसके बारे में मेट सर्विसेज ने फोरकास्ट किया है कि कुछ बादल ज़्यादा नज़र आएंगे आज ऊपर आसमान में साथ में आइसोलेटेड शावर्स भी रहेंगे मेनली इन द इवनिंग हवाएं नॉर्थ वेस्टलीज बहेंगी इसके साथ में सनसेट एट 6:05 PM टुडे और अगर जो नेशनली देखें तो नेशनली यानी कि जितने और भी शहर हैं यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मौसम प्रेडिक्ट किया गया है और जब मैं साउथ आइलैंड की ओर देखता हूं, तो साउथ आइलैंड में ज्यादातर टाउन्स एंड सिटीज में आज सिर्फ मुझे देख रहा है ग्रे शेड क्लाउड्स उनके मैप पर यानी कि मौसम वहां पर भी कुछ साथ नहीं दे रहा होगा लेकिन व्हाटएवर इट इज मैं हूं अभी आपके साथ में और जो भी हो मौसम जो भी हो क्योंकि मौसम तो बदलता रहता है लेकिन आप इंजॉय करते रहे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: मंचों पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाए, रिश्तों को और करीब लाए। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
1: 3, 2, 1, रश! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
2: No matter how you wrap it, make Dad's Day with the perfect gift from Mitre 10. Get a sweet deal on a Bosch 3.6 volt cordless air compressor pump, now $79. Or pick up a 150 litre number 8 heavy duty storage box for only $35. And for the lawn obsessed dads, grab a 140cc Lawnmaster petrol lawnmower, now just $529. Or let Dad decide with a gift card. Shop now at Mitre 10.
3: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
4: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
5: हमें एम्पायर चलाना नहीं गुड्डू भैया, बनाना है।
4: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
6: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
4: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
7: जस्ट चिल में हम आपको स्पोर्ट्स की दुनिया में भी लेकर जाया करते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स पता लगे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग पर थोड़ी देर पर बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए बैटल ऑफ द जायंट्स जो कि बा के शहर फिजी में चल रहा है, जहां पर कल जो आखिरी मैच था बा और रेवा के बीच में, यहां पर रेवा ने बा को शोकी कर दिया उसके अपने होम ग्राउंड पर, जबकि रेवा की शानदार जीत बा के खिलाफ 3-0 से हुई। और आज के लिए जो मैच नसीनी और सुबह के बीच में हो रहा है, अभी तक हाफ टाइम का जो रिजल्ट है दोनों टीमें 1-1 से बराबर है। आज बाद में जो और खेल होंगे, यहां पर नेंडी और रेवा फील्ड लेगी, साथ में नावा टेक्स ऑन लंबासा, साथ में बा और लोटोका जो नेबरिंग टाउन से इसके बीच में भी खेल रहेगा। ऑल ऑफ दिस जैसे और भी जानकारी हमारे हाथ लगेगी आपके साथ में शेयर करते रहेंगे।

0: Just chill.
1: Yo, main hu chhota sa chhora.
2: You're listening to Avineet.
3: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और हमारे स्टूडियोज में ठीक एक बज रहे हैं. ऐसे में आपको बता दूं कि अगले आवर पर दो बजे के बाद हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आएंगे एपिक बॉलीवुड चैलेंज. लेकिन इस आवर पर भी एक कॉन्टेस्ट है जहां पर आपको म्यूजिकली चैलेंज करेंगे, यानी कि कुछ सुनाएंगे आपको. एक इंस्ट्रूमेंटल होगा जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल आसान नहीं करेंगे, क्योंकि लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट. तो आपको दो पार्ट्स में ये सुनाएंगे ताकि आप, अगर जो आपको म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट है तभी आप इसको फिगर आउट कर पाएंगे. तो देखेंगे कितने लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या म्यूज़िकल पीस हम बजाने वाले हैं या फिर किस गाने की ये म्यूज़िकल पीस है. तो इसको दो बिट्स में आपको सुनाएंगे, सुनिएगा ज़रूर ध्यान से. ये था पहला बिट. हाँ, तो दो बिट्स में हमने आपको सुनाया सिर्फ 3 सेकंड के लिए. और अगर जो आपको पता लगता है कि कौन सा गाना है तो 5599 पर आपको टेक्स्ट करना है हमारे पास में. हियर इट गोज वंस अगेन. ये था पहला बिट. हाँ, तो अगर जो आपको पता लगता है 5599 पर हमारे पास में अपने नाम के साथ में टेक्स्ट करिए. और अगर जो कुछ और कुछ आपको सुनना है, कोई गीत आपको सुनना है तो आपको ज़रूर सुनवाएंगे. और एक फ़ोन भी आ रहा है, चलो इस फ़ोन कॉल को भी ले लेते हैं. हेलो, हम पर आपका स्वागत है.
4: हेलो, कैसे हो आप?
3: ठीक हूँ, आप कैसे हो?
4: एकदम मस्त.
3: अच्छा, क्या हो रहा था?
4: बताइए. गाना था हमको भी है यकीन,
3: आपको
4: तुमको भी है पता, आई गेस.
3: आपको लगता है वही है?
4: वही है.
3: अच्छा अच्छा, आपने जिस तरह से हेलो बोला ना, मुझे लगा कि आप डांटने वाले हो.
4: नहीं भाई साहब, आपको क्यों डांटेंगे? आप हमारा संडे इतना खुशनुमा बनाते हो तो आपको कैसे डांटेंगे हम.
3: थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू. और ऐसे ही आप. अच्छा. हाँ, और कुछ हो रहा है स्पेशल फादर्स डे के लिए?
4: हाँ, मेरे कल मुझे सरप्राइज गिफ्ट मिला है मेरी बच्ची से, मेरी वाइफ से. So I'm really happy for them. और I love. अगर आपको याद है, मैंने आपसे बात की थी लास्ट वीक.
3: हाँ हाँ, मुझे याद है.
4: और आपने मेरा नाम ड्रॉ में शामिल किया था मेरे ख्याल से.
3: जी हाँ, I did. हाँ
4: हाँ, और आपने क्वेश्चन मुझे मेरे ख्याल से पूछा था मुझे कि what is the meaning of cooked.
3: Yes, that's right.
4: मैंने बोला था कि हाँ, तो मेरी बच्ची मेरे साथ है अभी. आर्या से हेलो. हाय
3: हाय आर्या. अच्छा ठीक है, शाय होगी थोड़ी सी ना.
4: अच्छा
3: हाँ.
4: अच्छा, मेरे एक वाइफ को कुछ कहना है प्लीज.
3: हाँ,
4: अगर उनको भी शामिल किया जाए.
3: एकदम बिल्कुल
4: बोलिए मैडम.
5: मुझे ऐसा लग रहा है ये गाना है तारे जमीन पर.
3: अच्छा, हस्बैंड को कुछ और लग रहा है, वाइफ को कुछ और लग रहा है. अच्छा,
4: अब आप बताइए क्या है.
3: अच्छा, मैं बस थोड़ी देर में आपको ये गाना सुनवाने वाला हूँ. आप बस साथ देते रहिएगा. नाइस टॉकिंग टू यू और हैव अ हैप्पी फादर्स डे. एंजॉय योर डे भाई साहब.
4: थैंक यू. थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू सो मच. टेक केयर. हाँ, तो ये थे हमारे साथ में हमारे अच्छे साथी जिन्होंने लास्ट वीक भी पार्टिसिपेट किया था प्रमोशंस में, अपने फैमिली के साथ में हैं और सभी से बातें हुई. और एक बार फिर आपको बता देते हैं, शीनल का जवाब आया है, साथ में करिश्मा ने भी जवाब दिया है. करिश्मा हैज़ आइडेंटिफाइड द राइट सॉन्ग. इसके साथ में शीनल का भी अंदाज़ा सही था. तो चलो एक बार फिर आपको सुनवाते हैं एंड यू कैन सेंड इन योर मैसेजेस. हाँ, तो ये पहला बिट था और इसके बाद में एक और एक जो बिट है. हाँ, तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा. 5599 पर मैसेज करें हमारे पास में. एंड आप भी कुछ स्पेशल कर रहे हैं, कुछ प्लान किया है अपने डेट के लिए, तो एवरी आवर पर आपके फादर के लिए, आपके लिए एक गाना ज़रूर बजाएंगे. तो अगर जो आपको अपने डेट की कोई मेमोरी याद है और अगर जो आपसे दूर है अभी और आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो 0800004866 पर आप कॉल कर सकते हैं. या फिर आप रेडियो शाय हैं, ओने या नहीं आना चाहते तो 5599 पर आप अपना जो मैसेज है हमारे पास में भेज सकते हैं.

आपको समझ में आता है इस बीट से या फिर इस म्यूजिकल इंट्रो से कि कौन सा गाना है, तो 5599 पर आपको अपना जो अंदाजा है हमारे पास में मैसेज करना है और फिर थोड़ी देर में आपको ये गाना ज़रूर सुनवाएंगे। इन द मीन टाइम अगर जो आपको समझ में आता है तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना। हाँ, कि कौन सा गाना है, और काफ़ी फेमस गाना था, फिल्म थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी अपने टाइम के मुताबिक से, लेकिन इफ़ यू नो द सॉन्ग सेंड मी योर मैसेज ऑन 5599।

हम पर 1:22 हुए हैं और जो म्यूजिकल इंट्रो हमने आपको सुनवाया था, यहाँ पर काफी मैसेजेस आए हैं। तनुब, आपने भी सही पहचाना। इसके साथ में तारंश, आपका भी मैसेज आया। साथ में शीनल और करिश्मा, आपने भी सही जवाब दिया। इसके अलावा महक, आपने भी भेजा अपना जो जवाब। एंड सूर्या, आपका भी मैसेज मिला। आप लोगों ने सही पहचाना और जो गाना है, और साथ में जो हमारे फ़ोन कॉलर भाई साहब थे, इन्होंने भी सही पहचाना। गलत हुई इनकी बीवी, लेकिन जो भी हो, आप साथ में हैं तो अपना जो डे है आप इंजॉय करिएगा और हमारा साथ देते रहिएगा। नाउ इट्स टाइम टू प्ले दैट सॉन्ग, जिसे आज भी सुनने के बाद में आप कहीं ना कहीं यादों की दुनिया में खो ही जाते हैं।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
1: Hey, still house hunting next weekend?
2: No, hopefully not. Going to an auction tomorrow.
1: Whoa, how did you sort things so quickly?
2: My BNZ home loan partner, Jane, met her last Saturday, got her home loan sorted, and she's even calling tonight, so we're ready for the auction.
1: All that from one person.
3: Go direct to a BNZ home loan partner and deal with the decision maker from search to settlement. Bank of New Zealand. Let's find a way. All home loans are subject to BNZ lending criteria. Minimum equity requirements and terms and conditions. Up to a $150 establishment fee and other fees may apply.
4: How fresh is your produce? At Barro, our team are at the markets at 3 a.m. handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Barro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. New season asparagus, luscious tomatoes, bright juicy berries. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
5: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
6: Just chill.
7: जशिल में अभी का साथ है और आपको शायद याद होगा कि हमने पिछले वीक आपके साथ में शेयर किया था कि मिडलमो हॉस्पिटल में काफ़ी ओवरनाइट क्यूज हो गए थे जबकि स्टाफिंग इश्यूज थी और कुछ 100 से ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे थे टू बी सीन बाय डॉक्टर. तो आरएनजेड ने रिपोर्ट किया है कि गिस्बन हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक एब्सोल्यूट केओस का सिनारियो है जहाँ पर स्टाफिंग इश्यूज के कारण काफ़ी कुछ डिलेज हो रहे हैं. न्यूजीलैंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि जितने भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स है अक्रॉस द कंट्री अंडर स्ट्रेन है. एक तो यहाँ पर स्टाफ शॉर्टेजेस है, इसके साथ में जो एक वायरस चल रही है जिससे लोग काफ़ी बीमार भी हो रहे हैं. वायरस इन द सेंस कि ये इन्फ्लुएंजा जो वेदर के कारण हो रही है और इसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं और स्टाफिंग लेवल्स भी काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट पर है. तो ये सभी कुछ लेकर जो गिस्बन हॉस्पिटल है यहाँ पर खास एक घंटे की स्ट्राइक होने वाली है वेंसडे को ओवर अनसेफ स्टाफिंग लेवल्स, क्योंकि ये जो स्टाफ भी है कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि दे आर सो मेनी पीपल हु आर सीकिंग हेल्प लेकिन ये उनको अच्छी तरीके से मदद भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दे आर सो शॉर्ट ऑन स्टाफिंग लेवल्स. तो आप भी अगर जो नर्स है या फिर आप एक डॉक्टर है और आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं इट कैन बी क्वाइट स्ट्रेसफुल. तो ऐसे में आप खुद का भी ध्यान रखें और जितने भी लोग अभी रेडियो सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं खासकर आपको मैं बता दूं कि आप ऐसे वेदर में खुद का भी ध्यान रखिएगा जहाँ पर चेंजिंग वेदर पैटर्न्स के कारण आप बीमार भी हो सकते हैं. तो कीप वार्म और साथ में ऐसे बारिश से भी बचे जहाँ पर आप भीग कर बीमार हो सकते हैं. तो याद रहे कि गिस्बन हॉस्पिटल में जो स्टाफिंग इश्यूज़ को लेकर एक बार फिर एक समाचार सामने आई है एंड इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स.

0: Wow.
1: हाँ पर मैं हूँ अभी आपके साथ और यह है जस्ट चिल का कारवा। मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से होती थी, फिर लोग मेरे पापा को मेरे नाम से भी पहचानने लगे। जिस दिन ऐसा पहली बार हुआ ना, मेरे पापा मुस्कुराने लगे और प्यार से बोले, जिस पौधे को बड़ा करने में जमाने लगे, आज उस माली को लोग पहचानने लगे और फिर वापस मुस्कुराने लगे। हैप्पी फादर्स डे।

0: Hollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: डिब्बा खुल गया
3: भरत भाई, टिफिन खुल गया छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
4: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
3: डिब्बा खुल गया।
4: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: What day is Father's Day? Sunday! And with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
6: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy, because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions, and terms apply.

Just Chill. Just Chill में this is me Avi और 8 मिनट बाकी है 2 बजने में. 2 पर आपके लिए समाचार और straight after news आपके लिए रहेगा epic Bollywood challenge.

0: listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अवि आपके साथ में और हमारे स्टूडियोज में 2:02 हो रहे हैं और अब समय हुआ आपके साथ में इस आवर पर खेले एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहाँ पर वीकली बेसिस पर आपके लिए कॉन्टेस्ट में कोई ना कोई एक आइकॉनिक गाना लेकर आते हैं जिसके बारे में क्लूज शेयर करते हैं और बेस्ड ऑन दोज क्लूज आपको पहचानना होता है कि कौन सा गाना है. सो यू नो द ड्रिल. और ऐसे में जो लास्ट वीक की जो हमारी विनर थी रजनी, इन्होंने पहचाना था प्यार हुआ चुपके से 1942 अ लव स्टोरी से, जबकि सबसे पहले इन्होंने जवाब भेजा था तो उस वीक की विनर ये ठहरी थी. और आज भी एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग है जिसको आपको पहचानना है बिफोर आई प्ले द सॉन्ग. तो जितना देर मैं आपको इस गाने के बारे में बता रहा हूँ, क्लूज दे रहा हूँ, बस उतनी ही देर में आपको अपना जो गाना है लिखकर 5599 पर अपने नाम के साथ में भेजना होगा. सो हियर इट गोज. आज का सॉन्ग 2000 की एक ऐसी फिल्म से है जिनके स्टार्स है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी विद शिल्पा शेट्टी, लेकिन ये कोई एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सॉलिड रोमांटिक फिल्म है. अक्षय और सुनील शेट्टी को लेकर अक्सर एक्शन मूवीज बनते थे लेकिन यहाँ कुछ अलग है. इस फिल्म के डायरेक्टर है धर्मेश दर्शन, जिन्होंने राजा हिंदुस्तानी भी डायरेक्ट की है. इस फिल्म की कहानी सिंपल है. देव और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन अंजलि के पिता कुछ ऐसे कंडीशंस रख देते हैं जिसको पूरा करने के लिए देव को दूर जाना पड़ता है. तो आपको मेन कैरेक्टर्स के नाम भी पता लग गया है तो शायद मूवी का टाइटल अब आपके दिमाग में या फिर आपके ख्याल में आ गया होगा. लेकिन इन द मीन टाइम अंजलि की शादी एक ऐसे घर में होती है जो फाइनेंशियली वेल टू डू है. अंजलि मान तो जाती है लेकिन कहीं दिल के किसी कोने में देव बसते हैं. लेकिन शादी एक भले और सीधे राम से होती है और ओवर टाइम दोनों के बीच का रिश्ता ठीक भी हो जाता है. तो मेन कैरेक्टर्स हैं देव, राम और अंजलि. और शायद फिल्म का पता आपको लग गया होगा लेकिन अब आपको गाना पहचानना होगा. जब देव वापस एंट्री लेते हैं तो ही इज़ अ बिजनेस टाइकून और अंजलि की शादी के बारे में सुन के वो इनिशली राम को टारगेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन बाद में क्लाइमेक्स में वो फिर दूर हो जाते हैं. इस फिल्म को बनने में 4 साल लगे फॉर वेरियस रीजंस और रिलीज होने पर किसी को खास उम्मीद नहीं थी क्योंकि एक तो ये डिलेड फिल्म थी और फिल्म के सारे स्टार्स की कैरियर डमाडोल थी. और जबकि अक्षय और सुनील शेट्टी को जो कॉम्बिनेशन थी ये वेल नोन थी फॉर एक्शन मूवीज, वहीं पे ये एक आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म थी. लेकिन इस फिल्म के गाने बहुत चले और गानों की वजह से फिल्म का हाइप हो गया और फिल्म देखने के बाद लोगों को पसंद भी आई. अब बात करते हैं खास इस गाने के बारे में. ये जो गाना है फिल्म में एक ऐसे जंक्चर पर प्ले होता है जहां अंजलि से शादी के बाद राम अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं गाने में, लेकिन अंजलि एक ओड पॉइंट पर है जहां वो देव को भुला भी नहीं पा रही और राम के इमोशंस को देखकर पिघल भी रही है. आज का जो गाना है इसको कुमार शानू और उदित नारायण ने मिलकर गाया है. दोनों ने खुद पर्सनली हज़ारों में गाने गाए लेकिन दिस इज़ वेरी रेयर कि साथ में ड्यूट्स गाना हुआ. इस गाने में साथ दिया है उनका अलका याग्निक ने और अलका को इस गाने के लिए अवार्ड भी दिया गया है. सुनील शेट्टी को भी बेस्ट एक्टर इन अ विलेनियस रोल के लिए अवार्ड मिला. तो अगर जो आपको गाना पता लगा है आप गाने को पहचान कर अपने नाम के साथ में 5599 पर जल्दी से भेजें. खासकर जो गाना है ये एक बार फिर मैं आपके लिए दोहरा दूं, ये गाना एक ऐसे जंक्चर यानी कि एक ऐसे मोड़ पर लगता है जहां पर अंजलि से शादी के बाद राम अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन अंजलि शी इज़ अ बिट हेजिटेंट और वो देव को भुला भी नहीं पा रही है और राम के इमोशंस को देख कर शी इज़ कॉट इन अ ट्रबल कि कैसे अब क्या किया जाए. तो अपना जो जवाब है 5599 पर जल्दी से भेजिए और अब समय हुआ कि आपके लिए ये गाना प्ले करें.

एक ब्यूटीफुल फिल्म जिसे आप अगर जो देखना चाहें तो देख सकते हैं, धड़कन, जहां पर काफ़ी अच्छे अच्छे गाने थे। लेकिन आपको एक और इफेक्ट बता दूं इस गाने को लेकर, ये गाना किसी और गाने से इंस्पायर्ड है और थोड़ी सी झलक मैं आपको सुनवाता हूं।

हाँ, तो एक आर्टिस्ट थे और इन्होंने इस गाने को सबसे पहला रिकॉर्ड किया था और अहबक ले नाम के इस एल्बम में ये गाना था जिसको रिकॉर्ड किया था अब्दुल मजीद अब्दुल्ला ने। तो यहाँ से जाकर फिर इस गाने की जो धुन है बेसिक लिया गया। और जबकि टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो काफ़ी मैसेजेस हमारे पास में आए हैं। डेजी, रफ़ीक, साथ में इम्तियाज़ और हेज़ल, आपने जवाब दिया। इसके साथ में सोनाली, आपने भी जवाब दिया। हालांकि आपकी शुरुआत किसी और गाने के साथ में हुई थी, फिल्म के नाम से हुई थी, लेकिन फाइनली आपने सही जवाब भेजा। फिर उसके बाद में 4407 आपका भी जवाब आया है। और उसके अलावा एली, आपने भी एक और एक गाने की को आइडेंटिफाई किया था। इसके साथ में आपने फिल्म का नाम भले ही सही पहचाना था, लेकिन आज का जो पहला मैसेज, सही मैसेज हमारे पास में आया है, देयर इज़ अ न्यू प्लेयर इन द गेम जिसका नाम है स्वस्तिका। स्वस्तिका ने सही फिल्म से सही गाने को पहचान कर सबसे पहले अपना मैसेज हमारे पास में भेजा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी तरह से आप सभी को थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया। मैं आपको बताऊँ कि गाने चुनने में और उनके बारे में रिसर्च करने में, ट्रिविया लिखने में काफ़ी समय लग जाता है, और आप खेलते हैं जब, तब हमें पता लगता है कि हाँ, यू आर इंटरेस्टेड, ताकि अगले वीक भी कुछ एक अलग गाना आपके लिए हम ले आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग एंड टेकिंग योर टाइम आउट। और इसी तरह से साथ देते रहिएगा जबकि एवरी वीक लेकर आते हैं आपके लिए एपिक बॉलीवुड चैलेंज। इन द मीन टाइम फॉर टुडे, स्वस्तिका, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है जसशील का कारवां, छः तक आपके साथ में चलता रहेगा। जबकि फादर्स डे है तो बीच बीच में फादर्स डे का सॉन्ग भी बजाते रहेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू शेयर सम मेमोरीज अबाउट योर डेड, 0800-004-866 या फिर 5599 पर आप लिख सकते हैं कि आपको डेड ऐसी कौन सी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कि जो सबसे ज़्यादा आपके डेड को स्माइल देती है। यानी कि एक तो होती है स्माइल और एक होती है ईयर टू ईयर स्माइल, यानी कि इनका जो स्माइल है बिल्कुल ब्राइटन अप हो जाता है। कोई ऐसी चीज़ है जिसको देखकर ये सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, तो 5599 पर गिव योर डेड अ शाउट आउट। कोई गाना उनको पसंद है तो ये भी आप लिखकर भेज सकते हैं हमारे पास 5599 पर, और यहाँ से आपके डेट को एक शाउट आउट देंगे, क्योंकि हार्डवर्क तो करते हैं सभी डेट्स और ऐसे में अप्रिसिएशन भी ज़रूरी है और एक्नॉलेजमेंट भी ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ते हुए जो अगला गाना आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं, ये कुमार शानू की आवाज़ में है, ब्यूटिफुल नंबर, सूदिंग सॉन्ग। लेकिन आपको ये बताना होगा कि किस फिल्म से ये गाना लिया गया है। इस फिल्म के पास में एक रिकॉर्ड है, ये सेट मैक्स पर सबसे ज़्यादा चली गई फिल्म है और इसके अलावा काफ़ी मीम्स भी इस फिल्म को लेकर बनाए गए हैं, लेकिन गाना बिल्कुल ऑसम।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: Samoa is on sale now at Flight Centre. Book a 5-night fly and stay holiday from $1,169 per person. Book in store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
3: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it. We're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
4: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas mera focus hai.
5: Achha,
4: batao. Tuhanda focus. Sada kuch nahi.
5: Shh, Mrs. Singh.
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
8: जबरदस्त हिट्स
9: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं,
8: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
10: हम पर दिस इज़ मी अवी कीपिंग यू कंपनी। और जबकि बातें हो रही थी फादर्स डे के बारे में, जहां पर आप अपने डेट को शाउट आउट दे सकते हैं, तो हमारे पास में बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है। हैप्पी फादर्स डे टू वर्ल्ड्स बेस्ट डेड राहुल नायकर, आपके ट्विन बॉयज़ ने ये मैसेज भेजा है। और होपफुली आई एम सेइंग द नेम राइट, आइज़ैक नायकर, साथ में राइज़ैक नायकर, और जिनको आप प्यार से लव एंड कुश भी बोलते हैं। और बॉयज़ ने लिखा है, लव यू डेड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डू टू मेक अस हैप्पी। तो इसी तरह से हैव अ वंडरफुल डे राहुल, गेट स्पॉइल्ड बाय योर फैमिली, और साथ में आप जितना कुछ भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए, आज ये आपको अप्रिशिएट और एक्नॉलेज कर रहे हैं। आपने गाने को भी पहचाना, जो गाना हमने बजाया था कुमार शानू की आवाज़ में, इट वाज फ्रॉम सूर्यवंशम, द मोस्ट प्लेड मूवी ऑन सेट मैक्स। लेकिन अगर जो आपको भी अपने डेट को एक शाउट आउट देना है, यू कैन सेंड मी अ मैसेज 5599 पर। और साथ में अगर जो कोई गीत है, कोई सॉन्ग है जो आपके डेट बेहद पसंद करते हैं और अभी इस समय वो सुनना भी चाहते हैं, तो ये भी रिक्वेस्ट डेडिकेशन आप हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं।

पर आप सुन रहे थे आतिफ असलम को, और एक टेक्स्ट आया है हमारे प्लेटफॉर्म में, आपको सुनना है। पापा कहते हैं 5747, आपने इस गाने की फरमाइश की है, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप पापा कहते हैं 2.0 सुनना चाहते हैं या फिर ओरिजिनल पापा कहते सुनना चाहते हैं। सो यू आर स्पॉइल फॉर चॉइसेस, दो गाने हैं, आपको लेटेस्ट वर्जन सुनना है या फिर ओरिजिनल सुनना है। इसका जो सिलेक्शन है आप जल्दी से हमें बताइए, ताकि इस आवा पर फादर्स डे पर यही गाना बजाए आपकी रिक्वेस्ट पर। और आप हमें यह बताएं, जबकि 20 मिनट बाकी है 3 बजने में, आपको क्या लगता है ओकलैंड में कौन सा ऐसा एरिया है, इलाका है, जहां पर सबसे ज़्यादा पार्किंग इन्फ्रिंजमेंट टिकट्स इशू किए गए होंगे। हाँ, ओकलैंड में ऐसा कौन सा सबब है या ऐसा कौन सा सबब है, हाँ, जहां पर सबसे ज़्यादा पार्किंग टिकट्स इशू किए गए होंगे, कोई आइडिया है? इसको लेकर एक कहानी है मेरे पास में, आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, लेकिन इफ़ यू थिंक यू नो इट, 5599 इज़ द नंबर।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी डिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट.
4: What day is Father's Day? Sunday! And with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
6: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
7: Want to be rewarded five times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners and scan your card to enjoy more points. Download the Everyday Rewards app today and boost away. TCs and exclusions apply.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, hamari koi branch nahi hai.
10: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और जबकि हमने पूछा था कि ओकलैंड में वन ऑफ दी हाईएस्ट जो टिकटेड एरियाज है स्ट्रीट्स हैं ये कहाँ पर है तो अंतरप्रीत को तो पता है इन्होंने अपना जो जवाब है भेज दिया है अगर जो आपको मालूम है तो आप हमारे पास में शेयर कर सकते हैं ओकलैंड सीबीडी में प्रिंसेस स्ट्रीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट उसके बाद में ये जो एरिया है ये आती है और यहाँ पर कुछ साल के 8,700 पार्किंग टिकट्स इशू किए जाते हैं कौन सी एरिया है इसके बारे में और बताएंगे लेकिन फिलहाल के लिए जितने भी हार्ड वर्किंग डेड्स आउट देयर है आपके नाम ये अगला गाना

हम पर आप सुन रहे थे सभी डेट के लिए ऑन हैप्पी फादर्स डे, आपके लिए ये गाना हमने शामिल किया था। और जबकि बातें हो रही हैं कि किस स्ट्रीट पर सबसे ज़्यादा ओकलैंड में पार्किंग टिकट्स इशू किए गए हैं, सो वन ऑफ देम इज़ ओनिहांगा मॉल स्ट्रीट, जहां पर 8,700 पार्किंग टिकट्स इशू किए गए थे लास्ट ईयर और इससे कुछ $196,000 रेवेन्यू जनरेट हुए थे। और अब यहां पर काफ़ी कंप्लेंट्स के बाद में अब ये सॉल्यूशन पर आए हैं कि यहां पर लोंगा पार्किंग टाइम लिमिट्स अलाउ किया जाएगा, और ऐसा करते ही जितने भी टिकट नंबर्स थे इनको अब हाफ कर दिया गया है, यानी कि हाफ द ऑफेंसेस आर ओनली बीन कमिटेड नाउ, जबकि पार्किंग टाइम लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। इंटरेस्टिंग।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी एंड इट्स जस्ट आफ्टर थ्री. तो ऐसे में वी आर हाफ वे थ्रू द शो, जबकि छः तक हमारा और आपका प्यारा सा साथ बना रहेगा. बस इसी तरह से आप साथ देते रहिएगा हम 104.2 FM साथ में रोबा पर, और इसी तरह से साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर इस सफर को भी तय कर लेंगे.

हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में, और अक्सर करंट अफेयर्स को लेकर या फिर हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ योजनाएं या प्लान्स गवर्नमेंट बना रही है, इसको लेकर जो लेटेस्ट अपडेट्स है आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो अभी हाल ही में पैसिफिका यूथ को लेकर न्यूजीलैंड में कई जगह पर नए अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगे टू गेन प्रैक्टिकल स्किल्स, एक्सप्लोर फ्यूचर करियर्स और साथ में अपने एम्प्लॉयमेंट पाथवेज को ये बिल्ड कर सके। ये सभी कुछ इनको सपोर्ट करने के लिए एक नया गवर्नमेंट पार्टनरशिप है, जहाँ पर यूथ मिनिस्टर जेम्स मीगा और साथ में पैसिफिक पीपल्स मिनिस्टर पॉल गोल्डस्मिथ ने कहा है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है कुछ $125,000 ताकि पैसिफिका यूथ को ये सपोर्ट कर सके और साथ में पैसिफिका यूथ के लिए एक प्रोग्राम डिलीवर कर सके। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है पैसिफिका यूथ को लेकर अक्रॉस न्यूजीलैंड।

बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: anywhere you get your podcast.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: What day is Father's Day? Sunday, and with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: You filled the pinata before I sealed it, right?
4: No, you did.
3: Oh, I thought you did.
5: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
7: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
8: अब हमारा क्या होगा?
9: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
7: तो क्या करें?
10: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
11: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
12: Big Save's big spring sale is on today. We need to clear $20 million worth of sofas, recliners, beds, bunks, sofa beds, dining and bedroom furniture. Get two recliners for only $6.99, three set of chasers from $9.99, and get a king bed for only $9.99. Big deals, big savings with no big prices, only at Big Save.
13: हम पर मैं हुआ भी आपके साथ में और फिजी के शहर बा में जहां पर बैटल ऑफ द जाइंट्स टूर्नामेंट पूरे पैमाने पर जारी है. तो फोवार स्टेडियम में कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं जहां पर कल रात होम टीम की डिफीट हुई है रेवा के खिलाफ 3-0 से. और आज एक और एक खेल में नसीनू ने अपसेट कर दिया जबकि उन्होंने सुबह को 2-1 से बीट किया. तो ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हमारे हाथ लगे हैं ये आपके साथ में शेयर कर रहे हैं. जैसे जैसे गेम्स प्रोसीड होंगी और भी जो जानकारी है लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ में शेयर कर

104.2 FM साथ में रोवा पर आप सुन रहे हैं हम और मैं हूं अभी आपके लिए लेकर आया हूं जस्ट चिल। अभी से लेकर 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा।

0: Google Translate.
1: We gotta go. Are you ready?
2: Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
4: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
7: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
8: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
9: Showerdome.co.nz.
10: Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
11: When Dad's come in here, it's like a kid in a toy shop.
12: Dad loves to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. The new water blaster, new drill, new barbecue.
10: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad.
13: A Zito 18-volt drill driver and speaker kit, $99.98. Stanley 16-inch open mouth tool bag, $41.98. Tradie fitted trunks pack of six, $40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
14: Bunnings Warehouse.
13: Lowest prices are just the beginning.
15: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
16: TradeDepot.co.nz.
17: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kuka Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
18: TradeDepot.co.nz.
19: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. Altogether Auckland.
20: Naya hybrid dhoondh rahe ho? To Havel hi lo. Right now, Andrew Sims Melukau mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada Kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Melukau. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
21: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
22: कभी भी कहीं भी
23: मस्त मलंग
24: हम पर बातें कर लेते हैं एनआरएल के बारे में जहां पर कल वॉरियर्स की जीत सी ईगल्स के खिलाफ काफ़ी मुश्किल या फिर ऐसे कहें कि काफ़ी चैलेंजेस के बाद में 31-30 से हुई काफ़ी टफ मैच था दोनों टीमों के लिए एंड एक टीम जैसे ही ट्राई स्कोर करती बदले में जवाब में दूसरी टीम भी स्कोर करती इसी तरह से ये जो गेम था एंड टू एंड था एंड बिल्कुल इलेक्ट्रिफाइंग जहां पर लोगों ने इसे काफ़ी इन्जॉय किया एंड आफ्टर हार्ड फोट एफर्ट वॉरियर्स ने इस गेम को 31-30 से जीत लिया है। अब इसके चलते ये अभी टेबल को भी लीड कर रहे हैं और ऐसा शायद चांसेस है कि वॉरियर्स ऐसे ही परफॉर्मेंसेस देती रही तो प्लेऑफ्स तक ज़रूर मेक कर लेगी। लेकिन इट वाज अ नाइस मैच जिसे मैंने भी कल एंजॉय किया एंड काफ़ी दिनों के बाद में एक थ्रिलिंग एनकाउंटर देखने को मिला।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और आज सुबह सुबह जो खेल हुई ऑल ब्लैक्स साथ में स्प्रिंग बॉक्स के बीच में, यहाँ पर ऑल ब्लैक्स की हार स्प्रिंग बॉक्स से सोवेतो साउथ अफ्रीका में 29-24 से हुई। और अब इस हार के बाद में जो स्प्रिंग बॉक्स है इस सीरीज को लीड करने लगे हैं, ऐसे में काफ़ी जगहों पर

जो मीडिया आउटलेट्स है रिपोर्ट किया है ग्लोबली ऑल ओवर, और इस खेल पर भी उन्होंने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है दिए हैं। और इस विक्ट्री के बाद में ये कहा गया है कि स्प्रिंगबॉक्स कहीं ना कहीं इज़ अ बेटर टीम कंपेयर टू ऑल ब्लैक्स, लेकिन अभी भी खेल बाकी है और आने वाले मैचेस में क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं ये देखने को बाकी है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जबकि वर्ल्ड कप रहेगा, रग्बी वर्ल्ड कप, इसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि ऑल ब्लैक्स टीम सही समय पर पीक करे और एक नए कोच के साथ में शायद ये एक नई टीम को मोल्ड करने में बिल्कुल लगे हुए हैं एंड इसके जो रिजल्ट्स है शायद बाद में हमें देखने को मिले।

0: You're listening to Avineet.
1: On the waves of hum, मैं हूँ अभी आपका साथी और आपका साथ दे रहा हूँ just after 4, आप 104.2 FM पर हमें सुन रहे हैं या फिर आप रोवा पर हमें सुन रहे हैं, इसी तरह से साथ देते रहिएगा। इसके अलावा एक और एक जगह है जहाँ पर आप जाकर जो हमें फॉलो कर सकते हैं, हम FM का जो फेसबुक पेज है इसे भी फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए अपलोड करते रहते हैं और कुछ कुछ अपने शो से भी कुछ वीडियो रिसर्च करके और कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स और साथ में कुछ फन वीडियोस भी आपके लिए यहां पर अपलोड किया जाता है, तो ये सभी कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं।

हम पर मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ, और अक्सर हम ऐसे ऐसे बातों को भी आपके लिए लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हो या फिर आपको इम्पैक्ट करती हो। तो अपने ब्रेकफास्ट केचअप में विजय और पूजा ने बातें की हैं डॉक्टर परमजीत परमार के साथ में, जो इमिग्रेशन स्पोक्सपर्सन है फॉर द एक्ट पार्टी, और एक्ट पार्टी की क्या प्रपोजल है इन रिलेशन टू रेसिडेंसी वीजा, पर्मनेंट रेसिडेंसी वीज़ा को लेकर क्या प्रपोजल ये बना रहे हैं, क्या प्लान वो बना रहे हैं। अगर जो आप ये सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको BF लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करना होगा और आपको फुल ऑडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप अगर जो PR पर हो, पर्मनेंट रेसिडेंसी वीज़ा पर हो, और आप जानना चाहते हो कि एक्ट पार्टी का क्या प्रपोजल है, तो BF लिखकर आप 5599 पर ज़रूर भेजें।

0: दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर।
1: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
2: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
3: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव होए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स GWM मेलोकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
5: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
6: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
7: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
8: MediaWorks complaints. How can I help?
9: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
8: Nice.
9: And you talked me into creating this funny character.
8: Great.
9: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
8: Are you?
9: Yes.
8: Are you Bobby the Baker?
9: Yes.
8: What's that thing you do again?
9: Stop it.
8: You bring the mouth.
9: Stop it.
8: I'll bring the pie.
9: Stop it, please.
8: Okay.
9: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
8: So what's the problem?
9: My name's Bruce.
10: Advertise with MediaWorks.
8: New Zealand listens to us.
11: Non-stop Bollywood.
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
11: हम playing Bollywood's biggest hits.
13: हम पर अभी के साथ है और हमारे रोवा ऐप पर अभी हम बोर्डिंग कॉल का जो प्रमोशन है ये जारी है जहां पर आप अपने ड्रीम आइलैंड एस्केप के लिए टिकट्स जीत सकते हैं विद जस्ट वन बोर्डिंग कॉल जी हाँ टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी आपको सिर्फ क्या करना है कि वीक डेज आप हम सुनते रहें जो स्पेशल बोर्डिंग कॉल का क्यू है ये आपके लिए ऑन द आवर ऑफ 8 यानी कि 8 o'clock इन द मॉर्निंग उसके बाद में विद इन द आवर ये लग सकता है उधर फिर 11 AM इन द डे ये भी यहाँ पर भी ये जो क्यू है आपके लिए प्ले हो सकता है एंड देन इन द आफ्टरनून एट 1 PM यहाँ पर भी आप ध्यान से सुनिएगा विद इन द आवर आपको सुनाई देगा और फिर शाम को 5 बजे भी आपको ये बोर्डिंग कॉल क्यू सुनाई दे सकता है हमारे स्टेशन पर और यहाँ पर जैसे ही आप सुने उसके बाद में आपको जाना है रोवा पर और यहाँ पर 60 मिनट्स का समय है आपके पास में जाकर सर्च कीजिए बोर्डिंग कॉल और जैसे ही आपको वो मिले फिर एंटर करो टाइप करो बोर्ड नाउ एंड जस्ट क्लिक सबमिट और अगर जो आपको एक लिंक चाहिए इस पेज तक नेविगेट करने के लिए तो बी और सी यानी लेटर्स बी सी लिखकर 5599 पर भेज दे ताकि आपको लिंक मिल सके एंड दैट्स इट आप ड्रो में शामिल हो जाएंगे जहां पर आप एक अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेटअवे जीत सकते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस Flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu, visit flysolomons.com. T's and C's do apply.

हम पर मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ और अक्सर आप सैंडी और रुजबे को सुनते हैं उनके ड्राइव शो में। और सैंडी तो आपके साथ में हर आफ्टरनून वीकडेज 3 PM से हो जाती है, लेकर आती हैं कॉफ़ी ब्रेक, लेकिन इनकी जो अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है यहाँ पर भी ये अक्सर काफ़ी अच्छी अच्छी बातों को करते हैं और ऐसे गेस्ट को लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और नॉलेज आपका बढ़ा सकते हैं। तो अब की बार के लिए इन्होंने कॉन्टेंट क्रिएटर अभी से बात की है, जो यूँ कहें कि उन्होंने बताया है, डिस्कस किया है कि कैसे कंटेंट क्रिएशन से आप एक पावरफुल बिजनेस मॉडल बना सकते हो जो फ्यूचर के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है। तो ये जानने के लिए आप ड्राइव लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करें ताकि आपको वो पॉडकास्ट का लिंक मिल सके जिससे आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सके। इसके साथ में जो ट्रेंड मेकर्स का जो एक यूं कहें कि पैकेज है जहां पर रोड ट्रिप के गाने को उन्होंने स्टोर करके रखा है आपके लिए, तो एनी अपकमिंग ट्रिप के लिए अगर जो आपको सैंडी और रुजबे का ट्रेंड मेकर्स का रोड ट्रिप गाने सुनने हैं इनके प्लेलिस्ट, तो TM लिखकर 5599 पर मैसेज करें।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18.
4: So, you've been thinking about adding a modular home to your property.
5: Yes, and Zelo sounds great, but I'd really like to see one in person.
4: Now you can. Come and walk through two fully finished Zelo homes at the Auckland Home Show 10 to 13 September. Explore the layouts, see the premium inclusions for yourself, and talk to the team about what could work on your property.
5: Now that I like the sound of.
4: Discover Zelo by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane or visit zelo.co.nz.
6: MediaWorks complaints. How can I help?
7: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
6: Nice.
7: And you talked me into creating this funny character.
6: Great.
7: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
6: Are you?
7: Yes.
6: Are you Bobby the Baker?
7: Yes.
6: What's that thing you do again?
7: Stop it.
6: You bring the mouth.
7: Stop it.
6: I'll bring the pie.
7: Stop it, please.
6: Okay.
7: Yeah, sure. I might have three stores now, but Bobby's more famous than me.
6: So what's the problem?
7: My name's Bruce.
8: Advertise with MediaWorks.
6: New Zealand listens to us.
9: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
11: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और ये है जस्ट चिल. और क्योंकि हम आपका फेवरेट बॉलीवुड स्टेशन है तो ऐसे में आपको बॉलीवुड की सैर भी कराते रहते हैं. इस बार के लिए जो दृश्यम है द कंक्लूजन मेकर्स ने इसका जो पोस्टर है ये रिलीज किया है और पोस्टर लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और साथ में काफी टेंस्ड लग रहा है क्योंकि अजय देवगन को कैप्चर किया गया है. ही इज लुकिंग काफी टेंस्ड और उसके साथ में फैमिली मेंबर्स लग रहे हैं स्केर्ड. और जो पोस्टर का कैप्शन है, इस बार खतरा और भी बड़ा है, सलगांवकर परिवार वापस घेरे में है, ये लिखा हुआ है पोस्टर पर. तो काफ़ी इंट्रिगिंग है और मेकर्स ने कहा है कि ये जो फिल्म है इसी साल रिलीज होने को है. आपको शायद पता हो कि जो मोहनलाल की जो दृश्यम थर्ड पार्ट थी ये रिलीज हो गई है और शायद इसी कारण इस बॉलीवुड फिल्म का जो एडेप्टेशन है थोड़ा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा, ताकि एक नया कॉन्सेप्ट एक नई स्टोरी के साथ में ये ऑडियंस को भी प्रभावित कर सके. तो लेट्स सी क्या होता है जब फिल्म निकलती है, रिलीज होती है, ट्रीटमेंट कैसी रहती है. और कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आ गए थे जबकि अक्षय खन्ना ने मार्च आउट कर दिया था फिल्म से, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ बदलाव या ट्वीक किया गया होगा. लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन. और जबकि मैंने मोहनलाल की फिल्म थर्ड पार्ट भी देख ली है और इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब ये फिल्म कितनी अलग रहती है.
12: You know

मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से होती थी। फिर लोग मेरे पापा को मेरे नाम से भी पहचानने लगे। जिस दिन ऐसा पहली बार हुआ ना, मेरे पापा मुस्कुराने लगे और प्यार से बोले, जिस पौधे को बड़ा करने में जमाने लगे, आज उस माली को लोग पहचाने लगे और फिर वापस मुस्कुराने लगे। हैप्पी फादर्स डे।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: Auckland, it's time to sit back, relax, and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites, or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ। बोली बस मेरा फोकस है।
5: हाँ। अच्छा
4: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz. Playing Bollywood's

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर हमारे स्टूडियोज में जस्ट आफ्टर 5 आपका खास स्वागत करते हैं इस फाइनल आवा में भी, जबकि 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। इस आवा में भी आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जानकारियां हैं शेयर करने के लिए, कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स भी है जो आपके साथ में शेयर करेंगे। ऑल ऑफ दिस हैपनिंग ऑन दिस आवा। मैं हूं अभी 104.2 FM, साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, आपका खास स्वागत है।

हम पर रवि का साथ है और जबकि जस्ट चिल है, ऐसे में संडे के रोज मैं आपको बता दूं कि अक्सर कुछ दोस्तों की ये कंप्लेंट होती है कि आप 60s या 70s के गाने सुन नहीं पाते हैं, लेकिन आप हमेशा भूल जाते हो रोवा ऐप के बारे में। और यहाँ पर जो हम म्यूजिक स्टेशन है, इसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जो 60s और 70s के जो एवरग्रीन नंबर्स हैं यहाँ पर आपके लिए स्टोर किए गए हैं। इसके अलावा अगर जो आप आर्डेंट लिसनर हो 80s के गाने सुनने के लिए, तो 80s का ज्यूक बॉक्स भी आपके लिए सेटअप किया गया है। इसके साथ में आप फिजी भजन सुनना पसंद करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक 24/7 फ्री भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप जाकर फिजी के कलाकारों की आवाज़ में भजन सुन सकते हैं। एंड फॉर ऑल योर पंजाबी पंपिंग हिट्स, यहां पर चढ़दी कला है जिसका आप मज़ा ले सकते हैं। इसके साथ में फिजी कीर्तन संग्रह भी है, जहाँ पर फिजी के प्रमुख कलाकारों की आवाज़ों में कीर्तन को स्टोर किया गया है इस संग्रह पर। और इसके साथ में राहत फ़तेह अली खान के भी जितने फैंस हैं, आपको सूफी या कवालियां पसंद है तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बिल्कुल यहां पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ में आपको ये भी बता दूं कि रोवा का एक एडवांटेज ये भी है कि यहां पर ढेर सारे प्रमोशंस होते हैं। जैसे अभी हम बोर्डिंग कॉल 2026 यहाँ पर चल रहा है, तो अगर जो आपके फ़ोन पर रोवा है तो एक तो आप हमारे साथ में हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, फिर जो म्यूज़िक स्टेशन है इसके बारे में भी हमने आपको बताया, और इसके अलावा हम बोर्डिंग कॉल में भी आप जाकर पार्ट ले सकते हैं।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है बिल्कुल मौसम की तरह कभी धूप कभी बादल अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342 That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
3: Okay, we've got a handful of coffee beans, hot water, full fat milk, 3 packets of sugar, oh, and a nice little chalky fish on top. That sound like you?
4: That does sound like me. But wait, how much is that? You know what? I'm actually good. I'm just going to make my own fancy flat white with stuff from Pack and Save.
3: Oh, well that's sick, man.
4: Close, it's Stickman. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
3: Assembly? Oh, we used to have that at school.
5: Big milestones call for even bigger deals with Father's Day at Rebel. Save up to 30% on men's clothing and footwear. Plus, score at least 15% off store-wide. Treat Dad to some fresh gear this Father's Day and Sunday at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: G'day, Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
9: Sorry about that.
8: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
10: हम पर यह है जसशील का सिलसिला और यह चलता रहेगा आपके साथ में 6 तक। लाइफ में हम अक्सर परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं और कई बार इसको हम अटेन नहीं कर पाते हैं, यानी कि परफेक्शन या फिर परफेक्ट रिजल्ट्स हमारे हाथ नहीं लगती। लेकिन वाइल चेजिंग परफेक्शन, हालांकि परफेक्शन हमारे हाथ नहीं लगती, लेकिन वी एंड अप विद एक्सेलेंस, यानी कि एक्सेलेंट रिजल्ट्स तो मिल जाते हैं। तो इसीलिए परफेक्शन के पीछे भागते रहिए, हालांकि ये कभी कभी हाथ नहीं लगेगा, नेवर माइंड, लेकिन एक्सेलेंस कहीं ना कहीं ये हमें मिल जाती है।

हम पर मैं हूं अवि और आपके लिए खास लेकर आया हूं इंग्लिश प्रीमियर लीग की दुनिया से जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं हमारे पास में और आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जबकि जो खेल हुए थे कल, जहां पर लिवरपूल ने इप्सविच को 2-0 से हराया था, उसके बाद में न्यूकासल और बोर्नमाउथ के बीच में जो खेल हुआ, यहां पर दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर ठहरी। इसके साथ में आज सुबह सुबह ब्रेंटफोर्ड और सन्डरलैंड के बीच में गेम ड्रॉ हुआ 1-1 से। इसके साथ में एक और एक रिजल्ट जो ड्रॉ में एंड हुआ, यह था जो मैच नॉटिंघम और साथ में स्पर्स के बीच में हुई थी, 0-0 से ये गेम बराबर ठहरी। इसके बाद में मैनचेस्टर सिटी ने कोवेंट्री को 1-0 से पछाड़ा और वहीं पर एक और एक जो इंटरेस्टिंग मैच पैलेस और फुलम के बीच में थी, यहां पर पैलेस की जीत फुलम से 3-2 से हुई। और अन्य मैचेस में ब्राइटन और लीड्स के बीच भी मैच ड्रॉ ठहरा 1-0 से और एस्टन विला साथ में हल, ये स्कोरलाइन भी 0-0 था। और जो इस राउंड के जो आखिरी दो मैचेस है, कल सुबह 1 पर एवर्टन और मैनचेस्टर यूनाइटेड एक दूसरे का सामना करेगी, उसके बाद में 3:30 पर आर्सेनल और चेल्सी एक दूसरे के अगेंस्ट मैदान लेंगे।

0: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
1: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
0: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
1: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
0: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
1: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
2: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
3: Farmers Manchester Mania sale is now on with an amazing 50% off duvet covers, sheets, duvet inners, pillows and more. 50% off towels by top brands like Sheridan. Plus 50% off sleepyhead beds. Shop Farmers Manchester Mania. Conditions and exclusions apply.
4: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.

हम पर यह है जस्ट लवी के साथ में, और इस आवा में मैं कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं आपको एक गजल सुनवा ही दूं। तो ऐसा ही कुछ सेलेक्ट कर लेकर आए हैं आपके लिए, आप इसे भी सुनिएगा। और फिर 6 के बाद में ऐसे ही मेलोडीज नंबर्स आपके लिए लेकर आएंगे जिकाश, उनका भी साथ दीजिएगा। लेकिन अभी के लिए ये जो गजल है खास आपके लिए चुनकर लेकर आया हूँ।

0: आज के लिए हम पर मैं अभी बस इतना ही साथ दे सकता हूँ आपका, जबकि 6 तक हमने वादा किया था टू अकंपनी यू, तो ये मोड आ गया है कि अब हम आपसे कहें गुड बाय. सो हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द इवनिंग. जबकि फादर्स डे है, ऐसे में कई जगह पर डिनर भी किया जाएगा विद अ सेलिब्रेशन, तो ये सभी कुछ आप करते रहें, अपने डेट का ख्याल रखें और कहीं ना कहीं उनके साथ में जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो करते रहिए. बस इतना ही आपसे कहना चाहेंगे. इसी नोट पर आपसे अब अलविदा कहते हैं, फिर मिलेंगे और डू टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द वीक अहेड. बाय.
1: झूठे

द 6th of September 2026, 6 तारीख सितंबर हो चुका है, 6 बजने को आए हैं और 6 बज जाते हैं रविवार की शाम को। तो मैं जिकाश आपके साथ में शामिल हो जाता हूँ विद संडे नाइट मेलोडीज। दिल से कार्यक्रम हम लेकर आते हैं जहाँ पर अलग अलग घंटे पर कुछ अलग ही करने की कोशिश हम आपके लिए करते रहते हैं। तो आइए आप सभी का स्वागत करते हैं ऑन हम संडे नाइट मेलोडीज में। कुछ नए और तरोताज़े गीत संगीत हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, प्लस अ होल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस सप्ताह क्या हुआ है, आने वाले सप्ताह क्या होने वाला है, वेदर कैसा होने वाला है फॉर नेक्स्ट वीक, इसके बारे में आपको मालूम है नहीं मालूम है तो बस जुड़े रहें, इसकी जानकारी हम आपको देते चलेंगे। स्वागत कर रहे हैं आप सभी का विद दिस ऑसम ऑसम कोट। किसी ने लिखा है कि छोटा शुरू करें, लगातार आगे बढ़े और अपने सपनों पर विश्वास रखें, क्योंकि बड़ी मंजिल पाने के लिए पहला कदम उठाना ही सबसे ज़रूरी है। अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन्स विथ योर फर्स्ट स्टेप। अगर आपको $1,000,000 कमाना है भाई, तो पहले $1 आपको कमाना होगा, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके आप अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। स्वागत कर रहे हैं आप सभी का इन संडे नाइट मेलोडीज़। मैं हूं जिकाश क्योरा।

buzz@humfm.com, that is the website, या फिर not the website, that is the email, जहां पर आप हमें contact कर सकते हैं. अगर आप कुछ organize कर रहे हैं, चाहे community में आप कोई event कर रहे हैं या फिर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं for some good cause for the community, तो बस हमारे तक आप ये जानकारी पहुंचाए and आपके event को successful बनाने में, आपके venue पर लोगों को पहुंचाने में हम अपना भरसक प्रयास करेंगे. तो ईमेल याद रहे, buzz@humfm.com पर आपको ईमेल करना है.

चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

नेशनल रग्बी लीग जिसमें हमारी वॉरियर्स ने बहुत ही कमाल का खेल दिखलाया है इस सीज़न एंड फॉर श्योर दे आर इनटू द फाइनल्स और फाइनल्स शुरू होने वाले हैं 11th ऑफ सितंबर से यानी कि अगले शुक्रवार से. अभी फ़िलहाल खेल जारी है पैंथर्स वर्सेस वेस्ट टाइगर्स एंड इफ पैंथर्स विन दिस मैच विद अ गुड मार्जिन they will overtake warriors on the points table. Abhi warriors sabse aage hai. Now looking at the finals, week 1 qualifying and elimination finals ye 11 september se sunday september 13th ke beech mein khela jayega. Week 2 rahega the semi finals which will be mid to late september और वीक 3 विल बी दी प्रिलिमिनरी फाइनल्स लेट सितंबर में. अभी डेट्स को वेरीफाई या फिर निर्धारित नहीं किया गया है और फॉर दी प्रिलिमिनरी फाइनल्स एंड सेमी फाइनल्स लेकिन ग्रैंड फाइनल हैज़ बीन सेट फॉर संडे अक्टूबर 4th 2026. नाउ क्यों सेमीफाइनल्स और प्रिलिमिनरी फाइनल्स के डेट्स अभी तक फाइनलाइज नहीं किए गए हैं. दिस डिपेंड्स ऑन टू नाइट्स मैच एंड इसके बाद जो क्वालिफाइंग एंड एलिमिनेशन फाइनल रहेगा उसमें से कौन कौन सी टीमें जीतती है उसके आधार पर वेन्यूज डिसाइड किए जाएंगे एंड डेट्स डिसाइड किए जाएंगे एंड देन आफ्टर एवरीथिंग इज डन द ग्रैंड फाइनल विल बी प्लेड ऑन द 4th of October संडे को एट द अको स्टेडियम इन ऑस्ट्रेलिया.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.

0: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
1: A Kogan washing machine is just like a machine. Both washing machines do very similar washing machine things, but with slightly different little logos, handles, and end-of-cycle sounds. One's a Kogan 7.5-kilogram front-load inverter washing machine. The other washing machine has a price you won't like the sound of. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
2: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
3: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी अली फजल दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार
4: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया बनाना है
3: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज
5: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
6: हम पर आपके साथ हैं चिकाश।

तुर्किश सुबह तो बहुत ही बढ़िया मैच हुआ बिटवीन आवर ऑल ब्लैक्स एंड द साउथ अफ्रीकन टीम. साउथ अफ्रीका में हुआ है ये मैच और द नेक्स्ट मैच इज ऑल्सो बिटवीन द ऑल ब्लैक्स एंड द साउथ अफ्रीकन टीम हैपनिंग ऑन द 13th ऑफ सेप्टेम्बर. देर इज नेक्स्ट

Hey, kia ora. Welcome back to Sunny Night Melodies. मैं हूँ जिकाश and मेरे साथ आप दे रहे हैं. इस घंटे पर हम nostalgic moments share करते हैं. कुछ लम्हे ऐसे जो आपको memory lane में down memory lane लेकर चल देता है. कुछ अच्छी यादें, कुछ तकलीफ देने वाली यादें हम ताज़ा करते हैं. And I make sure that we are thankful for where we are at the moment. क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ बिछड़ चुकी है, उससे आगे हम बढ़कर आगे हैं. तो द नेक्स्ट सॉन्ग इज़ फ्रॉम द ईयर 2021. लेकिन उससे पहले, बिफोर आई फॉरगेट, वेदर कैसे होने वाला है फॉर दिस कमिंग वीक, मंडे से फ्राइडे के लिए. मंडे को बदली धूप और बारिश, कुछ शावर्स आप एक्सपीरियंस करेंगे. मंडे के दिन में टेम्परेचर 18 डिग्रीज रहने वाला है. रात को 11 डिग्रीज टेम्परेचर ड्रॉप होगा. ट्यूजडे को धूप और बादलों का सिलसिला रहने वाला है. अ चांस ऑफ अ शावर ऑन द इन द आफ्टरनून ऑन ट्यूजडे. अदरवाइज ठीक ठाक वेदर रहने वाला है. ट्यूजडे को 17 डिग्रीज दिन में, ओवरनाइट टेम्परेचर 8 डिग्रीज रहेगा. वेंसडे को बदली, बारिश और धूप, ये तीनों आँख में चोली खेलने वाले हैं. शावर्स क्लियरिंग टू अ फाइन स्पेल इन द आफ्टरनून. और दिन में टेम्परेचर 17 डिग्रीज, ओवरनाइट टेम्परेचर 10 डिग्रीज रहेगा. थर्सडे को बदली और बारिश का समय बनने वाला है. शावर्स बिकमिंग हैवियर एंड मोर फ्रीक्वेंट ऑन थर्सडे. 16 डिग्रीज टेम्परेचर दिन में, ओवरनाइट टेम्परेचर 10 डिग्रीज तक पहुंचने वाला है. फ्राइडे को और भी ज़्यादा बारिश होने वाली है. काले काले बादल और अधिकांश इलाकों में, ढेर सारे इलाकों में बारिश होगी. तो इसके लिए आप ज़रूर तैयार रहे. ओवरऑल वीक जहाँ पर बारिश ज़्यादा होने वाली है, बदली रहने वाली है और धूप बहुत ही कम हमें देखने को मिलेगी. आई होप जैसा समझ जाएगा धूप, ये डिसाइड कर ले कि नहीं भाई अब मुझे निकलना ही है एंड वी एंड अप विद बेटर वेदर. लेकिन जो भी हो, अपनी छतरी और अपने रेनकोट्स, रेन जैकेट्स आप साथ में रखें ताकि यू डोंट गेट कोट आउट इन द कोल्ड एंड इन द रेन फॉर द वीक अहेड. All the best, आपको.

जोली मुखर्जी की आवाज़ हम शामिल करने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट सॉन्ग एंड वन ऑफ द एवरग्रीन हिट्स ये है. इफ़ यू हैव लिसन टू दिस सॉन्ग प्रीवियसली, आप के दिल में इस सॉन्ग की अलग ही जगह है. बहुत ही मज़ेदार ऑन स्क्रीन प्रेजेंस भी रहा है ड्यूरिंग दिस सॉन्ग. नाउ जोली मुखर्जी आनंद मिलन के संगीत पर लिरिक्स लिखा था इसका संतोष आनंद में आनंद ने 1991 में आई फिल्म संगीत. बहुत ही बढ़िया ये फिल्म रही है. इफ़ यू नो अबाउट दिस फिल्म तो शायद 1991 के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता होगा. शायद दिस वॉज अ मेजर ईयर जिसमें देर वॉज अ न्यू मेम्बर इन यू फैमिली, या फिर किसी का बिछड़ा हुआ था आपकी फैमिली से, या फिर यू जस्ट हिट द लॉटरी, कुछ अच्छा काम आपको मिला था जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी बदल गई थी, या फिर 1991 वॉज द ईयर जब आप अपने देश को छोड़कर दूसरे देश गए थे. वेल 1991 वॉज द ईयर जब द वर्ल्ड वाइड वेब बिकेम पब्लिकली अवेलेबल. 1991, अब आप जोड़े कि कितने साल हो गए हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द वेब इंटरनेट. दैट change the whole game, changing the global communication forever. 1991 was the year jab www.falanadhakana.com aaya tha. Anyways, that was 1991 and economic shift hua tha, where in 1991 India began major economic liberation reforms in July. Culture aur technology ko dekhe to Nirvana, they released their landmark album Nevermind and the hit single Smells Like Teen Spirit, launching the global grunge movement. Terminator 2, Judgment Day, ये रिलीज हुई थी 1991 में और इसके साथ में Chicago Bulls won their first NBA championship under Michael Jordan. 1991, ये साल आपको क्या याद दिलाता है? सोचो इसके बारे में, उसको appreciate करें और मजा ले इस अगले गीत का in the voice of Jolly Mukherjee.

वेलकम बैक टू सनडे नाइट मेलोडीज, जहाँ पर नॉस्टैल्जिया नाइट्स हम और आप एंजॉय कर रहे हैं बिटवीन द आवर्स ऑफ 7 PM एंड 8 PM एवरी संडे। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं टुगेदर विद सम क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एक्टिविटीज। स्पोर्ट्स की ओर देखें, इंटरनेशनल मेंस टेस्ट मैचेस की अगर हम देखें तो फिजी ने खेला था विद जापान ऑन द 4th of September, जिसमें नैरोली फिजी टीम की जीत हुई 15-12 से ओवर जापान। नाउ आज सुबह तो खेल हुआ बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद में अब नेक्स्ट संडे को मैच होगा बिटवीन द टू टीम्स अगेन, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड एट द M&T बैंक स्टेडियम यूनाइटेड स्टेट्स में। दिस इज अगेन ड्यूरिंग द रग्बीज ग्रेटेस्ट राइवलरी। नाउ एक न्यूट्रल ग्राउंड पर US में ये गेम होगा, तो इसका परिणाम ही अलग होने वाला है। इसके अलावा मूविंग फोर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, द ओनली अदर इंटरनेशनल मेंस यूनियन टेस्ट मैच इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका टीम आने वाली है ऑस्ट्रेलिया पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वर्सेज साउथ अफ्रीका 10:30 ऑन द नाइट ऑफ संडे 27 सितंबर ये मैच होने वाला है।

ये अगला गाना बहुत ही प्यारा है एंड आई पर्सनली जस्ट लव दिस सॉन्ग. 2022 में ये फिल्म ये सॉन्ग आई थी एंड इस गाने में विजय देवरकोंडा और अनन्या. हाँ, हालांकि ये फिल्म ने उतना अच्छा कमाल नहीं दिखाया था लाइगा एंड आई हैवन वॉच्ड दिस मूवी. इतना बुरा ये फिल्म ने किया था. तो हैव यू वॉच्ड लाइगा लिगा व्हाटएवर ओरिजिनल मोशन पिक्चर का ये साउंड ट्रैक है जिसमें कुणाल वर्मा, तनिष्क बाग्शी और लक्ष्य कपूर की आवाज़ें हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द ईयर 2022, क्या कुछ कमाल हुआ था उस साल में आपके लिए? Do share with me if there's a particular year जिसके बारे में हमने आपको याद दिलाई है, कुछ यादें ताज़ा हुई है, share with us. अगर आप चाहें तो ये हम उन्हें भी बता सकते हैं. जानकर अच्छा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में वो खास लम्हे, वो खास पल क्या थे जिसने आपकी ज़िंदगी सवार दी है. Now, talking about the year 2022, ये वो साल था जब ChatGPT इसकी पैदाइशी हुई है एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. ये हम कहना चाहेंगे कि लोग बहुत ही स्मार्ट हो गए आफ्टर ChatGPT. और आप तो जानते ही हैं कि ChatGPT के ज़रिए उसके बाद AI आया और ChatGPT और भी स्मार्ट हो गया. तो द ईयर 2022 was marked by major geopolitical shifts, economic challenges and historic scientific breakthroughs. Russian ne Ukraine ko invade kiya tha aur ye jhagda aaj tak chal raha hai. 24th February 2022 was the year jab Russia launched a full scale invasion of Ukraine. Queen Elizabeth II, inki death hui, the UK's longest reigning monarch, passed away on the 8th of September. Matlab aaj hai 6/7/8, अभी दो और रोज़ में डेथ एनिवर्सरी इनका मनाया जाएगा. शिंजो आबे, फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे वर शॉट एंड किल ड्यूरिंग अ कैंपेन स्पीच ऑन द 8th of July. एंड ईरान में प्रोटेस्ट भी शुरू हुए थे. तो ये कुछ दुखद जानकारियाँ थी. लेकिन साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको 2021 में स्पेस में भेजा गया था, इस साल 2022 फर्स्ट वेब टेलीस्कोप इमेजेस नासा ने रिलीज किया था. द फर्स्ट टर्निंग डीप स्पेस इमेजेस फ्रॉम द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 12 जुलाई को रिलीज किया गया. ChatGPT के बारे में बताया हमने. ओपन AI रिलीज्ड ChatGPT ऑन 30th November, ट्रिगरिंग अ ग्लोबल वेव ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके बाद में इलॉन मस्क, इन्होंने 2022 में ट्विटर खरीदा था, विच इज़ नाउ नोन एज एक्स. $44 बिलियन में इन्होंने ट्विटर को खरीदा था अक्टूबर 2022 में.

Kira, welcome back to Sunday Night Melodies, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. विकी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. आपने कहा है कि लवली सॉन्ग्स, आप इंजॉय कर रहे हैं सभी को, एंड दी ऑसम ऑसम इन्फॉर्मेशन. थैंक यू ब्रदर फॉर कीपिंग कंपनी. आई होप आपका साथ यूं ही बना रहे ताकि और भी बढ़िया हम कर सके आने वाले दिलों में, आने वाले दिनों में. नाउ नेक्स्ट सॉन्ग है डेनी फीचरिंग एवी सरा, और इस गाना को आप सुने. इस गाने के बाद में और भी नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स आपके हम साथ में हम शेयर करेंगे, राइट हियर ऑन हम 104.2 एफएम एंड ऑन रोवा. और लगे हाथ आपको याद दिला दे अबाउट आवर हम बोर्डिंग कॉल. बहुत कम मौका अब आपके पास है टू गेट इनटू दिस ड्रॉ. सुबह 8 बजे कल हम बोर्डिंग कॉल आपके लिए अनाउंस करेंगे एट 8 AM. इतना हम सरल कर रहे हैं कि आपको हम वक्त भी बता रहे हैं. 8 बजे सुबह, 11 बजे सुबह, 1 बजे दिन में और 5 बजे शाम को आपको इस कॉम्पिटिशन में शामिल होना है. जैसे ही ये आवाज़ आते हैं, एज सून एज यू हियर आवर बोर्डिंग कॉल ऑन रेडियो, आपको जाना है रोवा पर हमारे हम बोर्डिंग कॉल कॉम्पिटिशन वहाँ पर डाला गया है, उसके अंतर्गत जाकर आपको टाइप करना है बोर्ड नाउ एंड क्लिक सबमिट. वंस यू डू दैट यू विल बी इन द ड्रॉ, जहाँ पर 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलमन एयरलाइंस हम आपको देंगे. इतना ही नहीं, $1,000 स्पेंडिंग मनी भी आपको हम देने वाले हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने एंटर कर लिया है, पर क्या आपने किया है? दैट्स वॉट आई एम आस्किंग यू, क्योंकि आपको एंटर होना है अगर आप जीतना चाहते हैं. 2 रिटर्न एयर टिकट्स और $1,000 स्पेंडिंग मनी, एक वेरी इजी और जेब पर बहुत भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एयर फेयर और $1,000 आपको हम दे रहे हैं. आराम से ये भीगा और ठंडे मौसम से निकलकर जाकर आप वक्त बिता सकते हैं इन वनुआतु. सोलमन एयरलाइंस की ओर से कॉम्पिटिशन जारी है, फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतु. विजिट करें solmans.com पर आप, और वहां पर आपको टीज एंड सीज भी मिलने वाली है. याद रहे सुबह 8 बजे, 11 बजे, 1 बजे और शाम को 5 बजे बोर्डिंग कॉल अनाउंस होगा.

द 11th सनातन वर्ल्ड कप ये कहाँ हो रहा है? वेल यही हो रहा है, मतलब आओतेरोआ न्यूजीलैंड में हो रहा है। वी आर होस्टिंग इट और हमारे साथ में अलग अलग कंट्रीज के ढेर सारी टीम्स आ रही है जिसके पूल ड्रॉज हो चुके हैं। एंड इफ़ यू गो टू आवर फेसबुक पेज, वहाँ पर मैंने डाला हुआ है दी पूल्स, जो टीम्स अलग अलग पूल्स में बांटे गए हैं। और वेरी सून आपके लिए हम मैच डेट्स और वेन्यूज भी लेकर आएंगे, मैच टाइमिंग्स। एंड सिर्फ सोका ही नहीं, नेटबॉल टीम्स भी शामिल है सोका में। तो 45 ग्रेड्स है, प्रीमियर टीम्स भी है। तो बहुत सारा हंगामा मचने वाला है ड्यूरिंग द 11th सनातन वर्ल्ड कप। इस पर और भी अपडेट्स आपको देते रहिए क्योंकि वी आर द मीडिया पार्टनर्स।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

आठ बजने को आए हैं एंड मैं हूँ जिकाश। संडे नाइट मेलोडीज कार्यक्रम जारी है। कुछ लोग हैं जो तैयारियां अपनी शुरू कर चुके हैं फॉर देयर नाइट शिफ्ट। यू आर ऑन योर वे, या फिर घर से अभी निकले हैं, या फिर पहुंच गए हैं काम पर थोड़ी ही जल्द। बहुत ही बढ़िया है भाई, समय से पहले आप आ गए हैं। आराम से आप चेंज कर सकते हैं इन योर PPE टू गेट रेडी फॉर योर वर्क। अपना टेक 5 चेक्स कर सकते हैं, इसके बारे में आप तो जानते होंगे। हैज़र्डस कंडीशंस अगर है आपके आसपास, इसको हटाइए, इसको एलिमिनेट कीजिए। अगर कुछ रिस्क है उसको मिटिगेट कीजिए, ताकि अपना काम आप सक्सेसफुली विदाउट स्ट्रेस और सेफली एग्जीक्यूट कर सके। अगर आप आफ्टरनून शिफ्ट वाले हैं एंड यू आर गेटिंग रेडी टू नॉक ऑफ, 9 या फिर 10 को आपका काम ख़त्म होता है, आप क्लॉक ऑफ करते हैं। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और जल्द जल्द अपना काम ख़त्म कर देते हैं सेफली ऑफकोर्स, और अब समय से पहले ही बस तैयारी करने लगते हैं कि कब हम क्लॉक आउट करें। अगर इफ़ यू आर वन ऑफ दोज, आपको आप सभी को हम शाउट आउट कर रहे हैं इन दिस फर्स्ट सॉन्ग बाय श्री रामचंद्रा इन आवा अनप्लग्ड बॉलीवुड आवा। फ्रॉम नाउ टिल 9 PM आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गाने अनप्लग्ड वर्जन में हम आपके लिए शामिल करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत कर रहे हैं इन संडे नाइट मेलोडीज अनप्लग्ड बॉलीवुड में। मैं हूँ जिकाश क्योरा।

0: You're listening to Chikash.
1: अच्छा, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए इज़ नॉट अ नेसेसिटी, लेकिन इसका इस्तेमाल आप करते थे, चाहे खाने वाली चीज़ हो, चाहे पहनने वाली चीज़ हो, या फिर किसी भी तरह से, लेकिन अब बढ़ते हुए दाम के कारण यू हैव सेड ना भैया बस अब ये चीज़ मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि इसका दाम एकदम से आसमान छूने लगा है। वैसे कई चीज़ों का दाम है जो बहुत ही बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा, पहनना तो पड़ेगा। लेकिन देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन द प्राइस ऑफ समथिंग यू बॉट फॉर इयर्स सडनली मेक्स यू पुट इट बैक ऑन द शेल्फ। अभी भी कुछ चीज़ें मेरे साथ भी है कि जो मैं इस्तेमाल करता था, लेकिन अब दाम देखकर मैं इसको छूता ही नहीं हूँ, ये सोचता हूँ कि इसके बिना भी ज़िंदगी चलेगी। मे बी इट वॉज योर फेवरेट ब्लॉक ऑफ चीज़, अ पर्टिकुलर कट ऑफ मीट, और द कॉफ़ी यू यूज टू ग्रैब ऑन द वे टू वर्क। परहैप्स यू स्टॉप्ड बाइंग लंच, ditched a streaming subscription, given up on takeaway night, or decided that a trip to the hairdresser can wait a little longer. That's me. Instead of 4 weeks, I've gone 5 weeks. Anyways, so what have rising prices made you cut back on the most? Sometimes there isn't even a cheaper substitute. You just decide you can do without it. And the line between that's getting expensive and I'm not paying for that will be very different for everyone. तो आप भी हमारे साथ में शेयर करें कि वो लास्ट थिंग क्या थी दैट यू स्टॉप्ड बाइंग बिकॉज इट वाज टू एक्सपेंसिव, एंड व्हाट वाज द प्राइस दैट फाइनली मेड यू डिसाइड इट वाज नो लॉन्गर वर्थ इट। इसके लिए एक पोल हम डालेंगे ऑन फेसबुक, तो डू कीप एन आई आउट हमारे फेसबुक पेज पर, एंड लेट्स सी आपने क्या गिव अप किया है ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस।

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, it's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now 4299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin. Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
3: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. TCs and exclusions apply.
4: संडे नाइट मेलोडीज में और भी आगे बढ़ते हैं. दिल से कार्यक्रम जारी है और इन दिस आवर अनप्लग्ड बॉलीवुड म्यूजिक आप एंजॉय कर रहे हैं. एक से एक बढ़कर दिल को सूद करने वाले ये गाने आप तक हम पहुंचा रहे हैं. नाउ वीकेंड आ जाता है एंड इफ़ यू आर समवन हु वर्क्स मंडे टू फ्राइडे और वीकेंड छुट्टी रहती है तो जाहिर सी बात है यू ट्राई टू स्लीप इन. मतलब फ्राइडे को एक मूवी हो गया और देर रात तक जाग गए तो सैटरडे को एकदम तड़के सुबह उठना आप पसंद नहीं करते हैं. बच्चे भी घर पर रहते हैं स्कूल से तो ये भी स्लीप इन करना पसंद करते हैं स्पेशली ये ठंडे मौसम में. और ये बात आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है. इफ़ यू लाइक टू स्लीप इन और लाई इन इट मे बी गुड फॉर योर हेल्थ. योर गिल्टी वीकेंड स्लीप इन. काफ़ी लोग जज करते हैं भाई कि शनिवार को 9 बजे तक आप खाट में थे ज़िंदगी में क्या करोगे. वेल अगर वो आपके घर के बिल्स नहीं पे करते हैं, अगर वो आपके प्लेट पे खाना नहीं रखते हैं, दे डोंट हैव एनी राइट टू टेल यू हाउ यू शुड लिव योर लाइफ. हैविंग अ लाई इन एट द वीकेंड मे हेल्प प्रोटेक्ट द हार्ट. ये एक नए रिसर्च में सामने आया है. लीडिंग हार्ट डॉक्टर्स इनका कहना है कि इट वॉज टाइम टू स्टॉप फीलिंग लेजी और गिल्टी अबाउट गेटिंग अप लेटर ऑन अ सैटरडे और अ संडे. The study found that people who caught up on sleep at the weekend were up to 9% less likely to have high blood pressure. It also identified the amount of extra sleep needed to get the most benefit, 1 hour and 27 minutes. 6 घंटे की स्लीप लोग कहते हैं कि बहुत ही जरूरी है, 8 घंटे की मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन if you get 1 hour and 27 more minutes of sleep in a weekend, over a weekend, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है. तो अगर आप नॉर्मल अलार्म लगाते हैं 7 बजे की, भाई अब सैटरडे या संडे के लिए आप लगाए 8 मिनट्स 27 मिनट्स के लिए, 8 o'clock 27 मिनट्स, यानी कि 8:27 इन द मॉर्निंग इसका अलार्म आप लगाए. एक्सपर्ट्स हैव प्रीवियसली सजेस्टेड लेजी वीकेंड मॉर्निंग्स कुड बी हार्मफुल एंड हैव रिकमेंडेड कंसिस्टेंट बेड एंड वेकअप टाइम्स फॉर स्लीप हाइजीन. लेकिन नए रिसर्च जो कि प्रेजेंट हुआ था एट द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी इन म्यूनिक सजेस्ट दैट अ लाई इन माइट बी द बॉडीज वे ऑफ रिकवरिंग डिस्प्यूटिंग द आइडिया दैट यू कैन नॉट कैच अप ऑन मिस्ड स्लीप. द 7-year स्टडी एनालाइज्ड 41,000 अडल्ट्स बिटवीन 2016 एंड 2023 एंड लुक्ड एट द अमाउंट ऑफ कैचअप स्लीप पीपल वर गेटिंग एट वीकेंड्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन स्लीप ड्यूरेशन ऑन अ वीकडे एंड वीकेंड डेज. इंटरेस्टिंग. तो पहले रिसर्च हुआ, कहा कि स्लीप इन माइट बी बैड. दूसरा रिसर्च हुआ कि पता लगा कि 1 hour 27 minutes ऑफ एक्स्ट्रा स्लीप इन द वीकेंड इज़ गुड फॉर यू. वेल, आपके लिए क्या बेहतर है ये आप ही जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो अपने डॉक्टर्स की सलाह लीजिए. रिसर्च तो होते रहेंगे और हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना. जैसे कि डॉक्टर नोवन ली ने कहा है कि द स्टडी ऑथर फ्रॉम कोरिया यूनिवर्सिटी इन सियोल सेड नॉट गेटिंग इनफ स्लीप पुट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन द बॉडी. इट कीप्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स वर्किंग हार्डर एंड कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर. भाई, आराम की ज़रूरत है तो आराम आप ज़रूर करें.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: November 7th, 2026, that is the election day, jab general elections kiye jayenge in New Zealand to see if the current government can continue ya phir koi naya government form kiya jayega. Aur ye aapke haathon mein hai, to do make informed choices aur inform aapko karne ke liye, to stay informed, aapko hamare saath mein rehna hai kyunki hum ab aapke liye lekar aane wale hain kuch election campaigns ke details. Jaise ki earlier this week, Dr. Paranjit Parmar के साथ में बातें की है विजय एंड पूजा ने इन देयर ब्रेकफास्ट शो. ब्रेकफास्ट कैचअप में इमिग्रेशन स्पोक्सपर्सन फॉर द एक्ट पार्टी, इन्होंने पार्टी का जो नया प्रपोज्ड इमिग्रेशन पॉलिसी है इस पर कुछ बातें की है. डॉक्टर परमार डिस्कसेस द प्लान टू इंट्रोड्यूस ए फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायरमेंट फॉर परमानेंट रेजिडेंट्स, जहाँ पर इन्होंने कहा है कि इट रिक्वायर्स 2 years ऑफ रेजिडेंस विद इन एवरी रोलिंग 5 year पीरियड एंड एड्रेसेस की क्वेश्चंस अराउंड करंट पीआर होल्डर्स एक्सेप्शंस एंड कीपिंग न्यूजीलैंड्स इमिग्रेशन सिस्टम फेयर एंड बैलेंस्ड. तो क्या आप इस चीज़ में हामी भरते हैं? डू यू अग्री टू इट? अगर आपको पूरा एपिसोड सुनना है BF लिखकर भेजिए 5599 पर. फुल ऑडियो आपको मिलने वाला है एंड तभी आपको पता चलेगा कि एक्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन क्या कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हैं और क्या आपको इनको वोट करना चाहिए या नहीं.

संडे नाइट मेलोडीज का मजा आप ले रहे हैं दिल से कार्यक्रम में. अभी आप अनप्लग्ड बॉलीवुड म्यूजिक का मजा ले रहे हैं. एंड मिर्ज़ापुर जो सीरीज आई थी अमेजोन प्राइम वीडियो पर, इसके 3 सीजन्स आए थे. सीजन 1 जो 2018 में आई थी नवंबर में, इसमें 9 एपिसोड्स थे. फिर 2020 में सीजन 2 रिलीज किया गया, फोकसिंग ऑन रिवेंज, पावर स्ट्रगल्स एंड गुड्डू पंडित्स राइज. और सीजन 3 विच वॉज द फाइनल सीजन ऑफ मिर्ज़ापुर, ये रिलीज़ हुआ 2024 में. क्या सीज़न 4 आएगी या नहीं, इस पर काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ पुख्ता नहीं हुआ है. सीज़न 4 2024 में रिलीज़ हुआ था, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सीज़न 3 2024 में रिलीज़ हुआ था, सो इट्स हाई टाइम सीज़न 4 अगर आना चाहिए तो इट शुड कम समवेयर नेक्स्ट ईयर, अगर आएगा तो. लेकिन उससे पहले मिर्ज़ापुर द मूवी, ये तो सिनेमाज में आ ही चुकी है और काफ़ी बढ़िया कर रही है, राइडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ मिर्ज़ापुर एंड ऑन द ब्रिलियंट कास्ट ऑफ मिर्ज़ापुर. मिर्ज़ापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर अली फजल, पंकज त्रिपाठी द्वारा ये मूवी जो आई है, इट हैज़ स्कोर्ड द 4th हाईएस्ट ओपनिंग डे ऑफ 2026. The film spin-off of the popular Mirzapur universe took a roaring start at the box office on Friday, jisko direct kiya hai Gurmeet Singh ne. The film collected 24.7 crores at the domestic box office, playing at nearly 11,100 screens all over India, according to SACNILC. Interestingly, the film performed significantly better in Delhi compared to other urban centers, including Mumbai, registering occupancy rates of 54.3% in the territory. Among two-tier cities, the film performed the best in Lucknow with a 74.3% occupancy. With its stupendous opening day figures, Mirzapur, the movie, is only behind Dhurandhar 2, Border 2 and Toxic when it comes to day one collections for 2026 films. So, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है मिर्ज़ापुर द मूवी को. ओवरऑल द मूवी हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज़ फ्रॉम बोथ क्रिटिक्स एंड ऑडियंस, सो द मेकर्स कैन ईजिली एक्सपेक्ट एन 80 to 85 crore नेट फिगर्स फॉर द फर्स्ट वीकेंड. तो देयर यू गो, मिर्ज़ापुर द मूवी, इसको ओपनिंग अच्छी मिली है एंड 4 डेज रनिंग इट इज़ डूइंग वेरी गुड कंपेयर टू द ग्रेटर मूवीज़ लाइक धुरंधर 2, Border 2 and Toxic, the films of 2026. अगर आपने इसको नहीं देखा है, this is reason enough for you to check this movie out in the big screens. Bye.

0: समय के साथ बदलना और बढ़ती हुई उम्र के साथ में अपना ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी आए दिन फिल्म्स आ रहे हैं, मूवीज़ आ रहे हैं जिसमें डेमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में तो काफ़ी लोग जान चुके हैं। विथ एज चीज़ें लोग भूलने लगते हैं, शायद कुछ हैबिट्स है, भूलने की आदत है, ये दूसरी बात है, लेकिन अगर ये बीमारी हो जाए तो ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो सकती है। तो ऐसी कुछ हैबिट्स है, कुछ आदतें हैं जो हम करने लगते हैं जिसके कारण से हमारा ब्रेन और भी ज़्यादा एज होने लगता है। कुछ मिड लाइफ हैबिट्स है दैट आर एजिंग आवर ब्रेन, एंड इसको कैसे हम कॉम्बैट कर सकते हैं, इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मेरे हाथ लगा है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है ऑन दिस आवर। आई मेक सम टाइम इन द नेक्स्ट आवर कहकशन के दौरान ये आर्टिकल हम आपके साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप 40 के होने वाले हैं या 40 हो चुके हैं तो आपका ब्रेन इट स्टार्ट्स टू लूज वॉल्यूम एट अ रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5% पर डेकेड। तो ये अलार्मिंग रेट पर आपके ब्रेन मेटा में डिक्रीज होता है, एंड ब्रेन विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर ये श्रिंक होने लगे तो इन्फॉर्मेशन आप नहीं रिटेन कर पाते हैं, एंड भूलने की बीमारी। तो इस पर बातें करेंगे इन द नेक्स्ट आवर कहकशन में बिटवीन 9 and 10। फिलहाल मैं हूँ जिकाश, आपके साथ एंजॉय कर रहा हूँ द अनप्लग्ड बॉलीवुड आवर ऑन संडे नाइट मेलोडीज।
1: रात भर शोर मचाए रखता है, तुम्हारा ख्वाब है शायद।

0: show with Vijay and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsoras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m. Non-stop Bollywood.
5: Pooja ke ghar pe shiddat ke saath karte hain.
0: Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
6: संगीत की दुनिया में हम आपके लिए कुछ बेहतर, कुछ नया, कुछ रिफ्रेशिंग हमेशा करने की कोशिश करते रहते हैं. एंड वन सच अटेम्प्ट इज दिस आवर. 9 to 10 के बीच में आपके लिए हम लेकर आते हैं कहकशन, जहां पर आपके लिए एक से एक बढ़कर गज़ल आपके लिए हम शामिल करने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू एन्जॉय एंड वी एन्जॉय विथ यू. तो एक तो है गज़ल, दूसरा है हमारे रोवर पर हमने शुरू किया है ट्रेंड मेकर्स. ये एक म्यूजिकल पॉडकास्ट है. व्हाट इज ट्रेंड मेकर्स? इट इज़ ए पावर पैक्ड म्यूजिकल जर्नी वेयर एवरी सॉन्ग इज क्यूरेटेड अराउंड अ यूनिक थीम इन ड्राइव शो विथ सैंडी एंड रुज़बे. फ्रॉम जॉनरेस दैट डिफाइंड द एरास टू ट्रिब्यूट सेलिब्रेटिंग द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड, बी इट आइकॉनिक सिंगर्स, चाहे विजनरी कंपोजर्स हो, चाहे पोएटिक लिरिसिस्ट्स हो, या फिर अनफॉरगेटेबल एक्टर्स. हर एक एपिसोड एक अलग स्टोरी, एक अलग कहानी बताता है थ्रू म्यूजिक. एंड दीज एपिसोड्स आर नाउ अवेलेबल ऑन रोवा. अगर आप प्लान कर रहे हैं एक रोड ट्रिप, तो इसके लिए एक खास एपिसोड तैयार किया गया है विथ क्यूरेटेड म्यूजिक फॉर योर लॉन्ग रोड ट्रिप. चाहे आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, या फिर आप हॉलीडे पे जा रहे हैं जहाँ पर आप ड्राइव करने वाले हैं लंबे समय तक, वी हैव गॉट यू कवर्ड. There is a specific, specially curated playlist to set the mood, to get your energy high and make every kilometer of your journey more enjoyable. आप TM लिखकर भेजे 5599 पर और ट्रेंड मेकर्स का एक एपिसोड फॉर योर ऑसम रोड ट्रिप ये यहाँ पर आपको मिलने वाला है. चाहे आप सनसेट चेस कर रहे हो, चाहे आप बस नई गाड़ी ली है और उस नई गाड़ी में आप एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं, उस सफ़र के लिए म्यूज़िक हमने चूज़ कर लिया है, या फिर अगर आप स्टक है ट्रैफिक में, एकदम से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वेल आपके मूड को हल्का करने के लिए दिस इज़ द एपिसोड फॉर यू. अ मिक्स डिज़ाइन टू बी योर परफेक्ट ट्रेवल कंपेनियन ऑन द रोड. TM लिखकर भेजिए 5599 पर. शायद अभी आप पूरा नहीं सुन पाएंगे क्योंकि अभी आप इन्जॉय कर रहे हैं मेरा कार्यक्रम. जब ब्रेक हो तो जल्द से TM लिखकर भेजिए 5599 पर. आपको लिंक मिलेगा ऑफ दिस ट्रेंड मेकर्स एपिसोड, जिसे आप क्विकली चेकआउट कर सकते हैं ऑन रोवा. रोवा पर जाए और ट्रेंड मेकर्स सर्च करें, यू विल गेट टू दिस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ ट्रेंड मेकर्स म्यूजिक.

0: असली ब्लॉकबस्टर
1: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: कर्कशन में आप पंकज उदास की आवाज सुन रहे थे। नाउ हमने कहा था अबाउट ब्रेन केयर, ब्रेन हेल्थ विथ बढ़ती हुई उम्र। तो आई होप यू आर रेडी टू गो थ्रू दिस आर्टिकल, जो विच माइट बी अ बिट ऑफ एन आई ओपनर फॉर एवरीवन। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब आप मल्टीटास्क नहीं कर पाते हैं उस तरह से जिस तरह से आप 10 साल पहले कर पाते थे? आर यू मोर सेंसिटिव टू डिस्ट्रैक्शंस और फाइंड दैट यू टेक स्लाइटली लॉन्गर टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन? मेरे साथ होता है कभी कभी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। ईच ऑफ दीज साइंस आर ऑल लिटिल हिंट्स ऑफ मिड लाइफ ब्रेन एजिंग, something that affects all of us to a certain extent. From the age of 40 onwards, 40 साल के उम्र से ज़्यादा अगर आप हैं तो the brain starts to lose volume at a rate of approximately 5% per decade. हर 10 साल में 5% of brain matter decrease हो जाता है। And in our 60s, we begin to lose connections between distant brain areas, meaning information doesn't transmit quite as rapidly between one part of the brain and another. This can be exacerbated by a number of factors. The midlife crunch is a huge one, where we find ourselves juggling careers, raising children, and assisting elderly parents, which all take its toll on the brain and make it harder to eat well, to exercise, and to get enough sleep. So, बहुत ही आम सी बात है, अच्छा खाना, अच्छा एक्सरसाइज करना और अच्छी तरह से सोना। लेकिन रिसर्च क्या बताता है? रिसर्च इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू स्पेसिफिक बिहेवियरल हैबिट्स विच प्ले एन आउटसाइज्ड रोल इन एजिंग द ब्रेन इन मिड लाइफ। अगर आप 40 के आसपास है, ऐसी कुछ हैबिट्स है जो आपके ब्रेन को और भी डैमेजेस पहुंचा रही है। द ब्रेन लाइक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बिगिंस टू एज एंड स्टार्ट सेगिंग एंड विल्टिंग। बेन रायन का कहना है, हु इज़ अ क्लिनिकल असिस्टेंट न्यूरोसाइंस प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी एट बफलो एंड ऑथर ऑफ द न्यू बुक कॉल्ड व्हाई ब्रेन्स नीड फ्रेंड्स। बट इट्स नॉट ऑल बैड न्यूज, इफ यू कैन स्टार्ट प्रिवेंटिंग सूनर यू आर गोइंग टू हैव मोर प्रिजर्वेशन, ऐसा प्रोफेसर रेन का कहना है। तो कुछ बैड हैबिट्स है जो आपके ब्रेन को जल्द एज कर रहा है और उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? नंबर वन इज yes, too much screen time. The idea that televisions or iPads can rot your brain has pervaded for decades, and a new study has suggested that there may be a specific basis to this fear. Through tracking 1,700 midlifers for 2 decades, 20 सालों तक रिसर्च किया गया है, Californian scientists found that those who watched the most hours of television per day experienced more brain shrinkage, especially in regions linked to memory, decision making, and the ability to process visual information. लो भैया, स्क्रीन से एडिक्शंस आप दूर करें। इसके लिए फिक्स क्या है, इस पर हम बातें करेंगे।

वेलकम बैक टू सनडे नाइट मेलोडीज, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। कहकशन में अब की बार पंकज उदास की आवाज़ हम शामिल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले द एजिंग ब्रेन, हमारा दिमाग जो बूढ़ा हो रहा है, एंड पर डेकेड 5% ऑफ ब्रेन मेटा हम लूज़ कर रहे हैं। कुछ आदतें हैं जिसको और भी एक्सेलरेट कर रही है, आपको आपके ब्रेन को और भी बूढ़ा बना रही है। नंबर 1 वाज टू मच स्क्रीन टाइम, इसका फिक्स क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बस सब कुछ बंद कर दें और स्क्रीन से दूर चले जाए। डजंट मीन दैट यू नीड टू इंस्टेंटली कैंसल नेटफ्लिक्स और डिलीट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। इंस्टेड सजेशंस आए हैं कि नॉट ऑल स्क्रीन टाइम इज़ द सेम व्हेन इट कम्स टू स्टिमुलेटिंग योर माइंड। इफ़ यू आर स्पेंडिंग मोर ऑफ योर टाइम रीडिंग ऑन अ किंडल और वॉचिंग एन आवर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री, दिस लाइकली टू बी मोर बेनिफिशियल देन द इनफाइनाइट स्क्रोल। Watching an educational content, participating in a video call or reading online places very different demands on the brain. So, question is not simply whether a screen is involved, but how the brain is being engaged. So, screen use कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या आप doom scroll कर रहे हैं? That is a big no-no. Number 2 is sitting too much may not be beneficial for your brain. Sitting is the new smoking, and as the saying goes, not just for the lungs and heart. Over 60s who spend more than 9 hours sitting have been found to be more likely to get dementia in the next 7 years. So fix hai, sitting isn't inherently harmful for all. We all need to sit in order to work, study or relax, but if we are spending large amounts of time in the chair and hardly moving, that isn't good. So for every 30 minutes of sitting down, take a 5-minute break to walk around in the house or office. 30 to an hour agar aap baithte hain, aadhe ghante se ek ghante ke beech mein agar aap baithe rehte hain, break le, 5 minutes walk le. Try to be more active during your non-sitting hours. That can also make a difference. Number 3 is smoking and vaping also has a detrimental effect on brain shrinkage. And fix hai ki bhai vaping aur smoking chhod de. Number 4 is too much sugar or sweetness. Fix kya hai? Well, try to use natural sweetness, jaise ki honey ho gaya instead of sugar or sweetness. Number 5 is not being socially engaged. अगर आप अपने आप को बंद करके रखते हैं, ब्रेन एक्टिव नहीं रहता है, ब्रेन भी अपने आप को बंद करता है और ब्रेन मेटा आप लूज़ करते हैं। प्रोफेसर रेन एडवाइस करते हैं पीपल टू कीप बिल्डिंग सोशल हैबिट्स थ्रू मिड लाइफ एंड बियॉन्ड, इवन व्हेन इट माइट फील इनकन्वीनियंट। तो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है।

सनराइज मेलोडीज़, मैं हूं जिकाश, आपके साथ हमेशा शामिल हो जाता हूं शनिवार को दिन में 12 से 6 बजे रेडियो पब। कल भी मैं आपके साथ में था जहां पर बहुत एनर्जेटिक एक प्रोग्राम हमने एंजॉय किया है, और रविवार की रात को 6 बजे मैं आ जाता हूं टिल 12 o'clock टू मेक श्योर कि आपका वीकेंड बढ़िया से ख़त्म हो। तो वीकेंड संडे ख़त्म होने में अब 2 घंटे शेष रह चुके हैं। दी नाइट शिफ्ट पीपल, आपने काम शुरू कर दिया है, और आफ्टरनून शिफ्ट वाले लौटकर घर आने लगे हैं, रास्ते में है। तो अ बिग शाउट आउट टू यू, कुडोस एंड अ बिग थम्स अप फॉर योर अचीवमेंट टुडे। यू आर द पीपल हु आर मेकिंग द वर्ल्ड गो राउंड। थैंक यू फॉर योर मेहनत, थैंक यू फॉर योर सर्विस। जितने भी हमारे राइड शेयर ऑपरेटर्स है, ड्राइवर्स है, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स है, आपको हम यही कहना चाहते हैं कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी हम कहना चाहते हैं, आपसे कह रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं, प्लीज़ बी सेफ आउट देयर। रास्ते पर है तो नाइट टाइम ड्राइविंग इज़ इन इटसेल्फ अ बिट डेंजरस कंपेयर टू डे टाइम, ऑब्वियसली, क्योंकि अंधेरा रहता है। दे आर सम पगला ड्राइवर्स ऑन द रोड, तो रोड रेज में आप ना बच जाए इन पागल ड्राइवर्स के साथ में। अगर किसी ने आपका रास्ता काटा है, शायद उनका पेट ख़राब है, उनको डायरिया हो रही है और वो जल्द से टॉयलेट ढूंढ रहे हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दीजिए, अपने आप को सेफ रखिए। ऐसा हमेशा आप सोचिए, समवन हैज़ कट यू ऑफ ऑन द रोड, बस ये सोचिए कि शायद उनके पेट, ही और शी हैज़ अ रनिंग स्टमक, या फिर उनको कोई अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही है, इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फॉर देम। तो भाई जाने दो, आप अपनी फिक्र करो और उनके लिए दुआएं करो कि जो भी वो अचीव करना चाहते हैं सेफली, वो भी अचीव कर ले, और आप भी सेफली अपने काम को करते रहे। देयर इज़ नो पॉइंट इन यू नो मिंगलिंग अराउंड विद पीपल जो गार्बेज लेकर घूमते हैं। एक छोटी सी कहानी है, ये आपके साथ में हम शेयर करेंगे आफ्टर दिस नेक्स्ट सॉन्ग। ये शुरुआत करते हैं दिस गोल्डन आवर की विद द वॉइस ऑफ उदित नारायण एंड अनुराधा पौडवाल। इस गीत के बाद में छोटी सी स्टोरी है आपके साथ में शेयर करेंगे अबाउट बैगेज एंड गार्बेज।

ना एक मोराल वाली, आपके मोराल को बूस्ट करने वाली और एक सीखने वाली स्टोरी है। स्टोरी तो बहुत लंबी थी लेकिन इसको हम संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको बताएंगे। क्या हुआ, एक रास्ते पर एक ट्रक जा रहा था और उसके पीछे एक मोटर जा रही थी और अचानक से उस ट्रक ने ब्रेक मारा और ढेर सारा कूड़ा करकट गार्बेज ये गिर गया, तो पीछे वाले व्यक्ति के ऊपर, कार के ऊपर ये गार्बेज आ गया और उन्होंने भला बुरा कह सुनाया आगे वाले को। उसके ठीक पीछे एक और एक कार में एक व्यक्ति अपने पोते के साथ में जा रहा था, उसने भी गाड़ी रोकी और अपने पोते को कहा कि बेटा सुनो क्या हो रहा है और इससे आपने क्या सीखा। तो छोटा बच्चा कहता है कि हाँ, वो बंदा गार्बेज लेकर घूम रहा था और ये गिर गया और फिर पीछे वाले बंदे ने उसको भला बुरा कहा और यही हो रहा है, इसमें से क्या सीखना है। तो आजा ने, यानी कि ग्रैंडफादर ने बताया कि जो जो जो भी लेकर घूमेगा वही गिराएगा। गार्बेज वाला अपने साथ गार्बेज लेकर घूम रहा था, थोड़ा सा धक्का लिया तो उसके पास से गार्बेज ही निकला। पीछे वाला व्यक्ति जो है वो भी यही कर रहा था, वो भी अपने दिमाग में गार्बेज, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन लेकर घूम रहा था, उसको थोड़ा सा धक्का लगा तो उसके भीतर से भी गार्बेज, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा ही निकला। तो भाई आप क्या लेकर घूम रहे हो, सोचिएगा इसके बारे में और आओ एंजॉय करते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज़।

0: Playing Bollywood's biggest hits. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbe, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha hai.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
3: Fatiha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk, street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
4: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
5: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghoome aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe, only on Hum.
7: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी डिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट. What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.

हमने एक पोस्ट डाला हुआ है फेसबुक पर और देर इज़ अबाउट द सनातन वर्ल्ड कप, 11th सनातन वर्ल्ड कप जो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है और ओपन ऑल एज वॉलीबॉल कंपटीशन भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो 4th अक्टूबर संडे से ये कंपटीशन शुरू होगा। वेन्यू इज़ द सिनर्जी स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर, दिस इज़ फॉर वॉलीबॉल। और आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा पोस्ट, वहाँ पर जाकर आप अपनी टीम को टैग कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो टैग योरसेल्फ अगर आप खेल रहे हैं। नाउ सनातन वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इनकॉर्पोरेटेड इनका फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी जाकर आप अपडेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और नांड्रो सनातन प्रीमियर ग्रुप बी सनातन वर्ल्ड कप 2026 में है। टीम डायरेक्टर रितेन सिंह, कोच है अनूप सिंह, इन सभी को हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में। एंड फ्राइडे 11 सितंबर को ये कीर्तन नाइट कर रही है, दैट इज़ अ फंड रेजिंग इवेंट वैदिक सेंटर पर 7 PM पर ये कीर्तन होने वाला है।

0: You're listening to Chikash.
1: ओकलैंड में रहते हैं आप बहुत ज़्यादा रेट्स भर रहे हैं और इसके लिए आपको सर्विसेज भी उतनी ही उमदा मिलनी चाहिए. तो क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? यू हैव अ से अबाउट व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुडन्ट बी डन. ओकलैंडर्स नाउ हैव देयर से ऑन प्रपोज्ड चेंजेस टू द ओकलैंड यूनिटरी प्लान. द सिटी इज प्लानिंग रूल बुक फॉर वेयर एंड हाउ न्यू होम्स एंड बिजनेसेस कैन बी बिल्ड. अगर आप तंग है कि आपके इलाके में ढेर सारे टाउन हाउसेस बन रहे हैं एंड इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंजेशन, आपके लिए गड़बड़ी हो रही है, तो प्लान चेंज 120 पीसी 120 proposes changes to Auckland's planning rules that aim to better protect people and property from floods and other natural hazards while providing significant capacity for more housing and greater housing choice in well-connected locations. An additional submission period on PC 120 ye shuru ho chuka hai, including the proposed changes, is open from 27th of August or this will stay open until 24th of September. You can go to akhaveyoursay.co.nz. akhaveyoursay.co.nz. Yahan par jaakar apna submissions aap de sakte hain. Submissions are open to anyone. People who submitted previously can make another submission if they wish, and their existing submission will continue to be considered by the independent hearings panel. Mayor Wayne Brown, इनका कहना है कि new round of submissions gives Aucklanders another opportunity to give their views कि कहाँ पर क्या कुछ development होना चाहिए और कहाँ पर developments को रोकना चाहिए. तो go to akhaveyoursay.co.nz and look up PC 120, that is the plan change 120. इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, ये आप बता सकते हैं.

0: पिंटरेस्ट पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m. handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. Bright, juicy berries, luscious tomatoes, creamy avocados. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.

संडे नाइट मेलोडीज में हम कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं. एंड अगर आप पेरेंट्स हैं एंड यू गो टीन एज किड्स, तो भाई खाते ये बहुत है, लेकिन क्या खाते हैं ये मैटर करना चाहिए. व्हाट एक्चुअली मैटर्स व्हेन वी फीड आवर टीन्स, क्योंकि इनका चले तो बस ये फास्ट फूड ही खाते रहे और दोस्तों के साथ इधर उधर घूम घाम कर बस पेट किसी भी तरह से भर ले. लेकिन इफ़ यू गॉट अ टीनेजर एट होम, you'll know the drill. Bottomless hunger, 1 minute, I'm not hungry the next, and a fridge that empties faster than you can fill it. Kyun ye teenage years matter karte hain? Ages 10 to 16 are one of the biggest growth windows of a person's life, second only to infancy. Bones, muscles and brains all are under construction. Getting the basics right now helps set kids up for life. Bones in particular build most of their lifelong strength during these years. So, good nutrition now matters a lot. It's much harder to make up for lost ground later. Jo malnourished rehte hain teenagers between the age of 10 and 16, unko aage chalkar dikkat bahut zyada hoti hai aur phir baad mein kitna bhi acha khana unko khawa do, ये दिक्कतें उनके साथ रह जाती हैं. बिल्डिंग ब्लॉक्स, नथिंग फैंसी हियर, हाफ द प्लेट इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, मोर वेजीज देन फ्रूट, प्रोटीन एट एवरी मील, मीट्स, एग्स, लेग्यूम्स, टोफू, डेयरी, वट एवर वर्क्स फॉर द चिल्ड्रन. इसके अलावा होल ग्रेन्स ओवर द वाइट स्टफ, डोंट बी स्केयर ऑफ फैट, एवोकाडो, नट्स एंड ऑयली फिश सपोर्ट, दे ऑल सपोर्ट आर डेवलपिंग ब्रेन. कीप डीप फ्राइड heavily processed food occasional rather than every day. तो deep fried food और heavily processed food ये बहुत ही कम, जितना कम हो सके उतना कम. water and plain milk should be the go to drinks. fizzy drinks हाँ कभी कभार, energy drinks I would say a big no, and even fruit juice are worth limiting. juice specially catches people out because healthy doesn't always mean low sugar. न्यूट्रिएंट्स को भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है. आयन, दिस इज़ दी वन दैट कम्स अप शॉर्ट अगेन एंड अगेन इन क्लिनिक्स. कैल्शियम एंड विटामिन डी, दीज गो हैंड इन हैंड फॉर बोन हेल्थ एंड मेनी टीन्स डोंट गेट इनफ ऑफ इधर. विटामिन डी एस्पेशली इन विंटर फॉर दोज हु आर मोस्टली इनडोर्स और कवर अप फॉर कल्चरल रीजन्स, वर्थ अ चैट विद द डॉक्टर इफ दैट साउंड्स लाइक योर टीन. विटामिन डी कहाँ से आता है भाई? बाहर निकलने से आता है और सनलाइट से आता है. जिंक, फोलेट एंड B12, दीज ऑल्सो मैटर पार्टिकुलरली फॉर वेजिटेरियन और वीगन टीन्स. वेरी डूएबल बट इट टेक्स अ बिट मोर प्लानिंग, अ चेक इन विद द GP एंड कैन हेल्प मेक श्योर द गैप्स आर कवर्ड. कुछ घरेलू नुस्खे हैं, अ फ्यू होम ट्रूथ्स, जो शायद आप सोचते हैं सही है या गलत है, इसके बारे में बातें करेंगे थोड़ी ही देर में.

0: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
1: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kukar Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
3: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी अली फजल दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार
4: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया बनाना है
3: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज
5: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग डीबीसी

प्यारे प्यारे गानों की लाइनअप हमने आपके लिए सेट कर दी है, तो डू एंजॉय दिस आवर एकदम पीसफुली। बीच बीच में हम आते रहेंगे, आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। जैसे कि राइट नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द ऑकलैंड हेरिटेज फेस्टिवल, जो 26 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में रहने वाला है। इस साल का थीम है टेस्ट्स ऑफ तमाकी, अ हेरिटेज फीस्ट सेंटर्स आवर सेलिब्रेशन ऑन द हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ फूड एंड बेवरेज इन ऑकलैंड। Food is a universal language that tells rich stories of migration, resilience, innovation and mana ki tanga, that is hospitality. It connects us to our past and reflects who we are today. With plenty of free or low-cost activities to choose from, including family-friendly school holiday events, there's something for everyone. Jaise ki heritage walk hone wala hai 26 September ko 12 baje ke beech कोना ऑफ प्रिंसेस स्ट्रीट और शॉर्टन स्ट्रीट में ऑकलैंड सिटी सेंटर में। इसके अलावा बिफोर द मिशलिन गाइड ईटिंग आउट इन ऑकलैंड, ये 26 सितंबर को रहेगा 3-4 PM के बीच में एट द फ्रेडा मार्गोलिस 440 रिचमंड रोड ग्रेलिन ऑकलैंड में। एंड एक्सप्लोरिंग सीक्रेट स्पेसेस बहाई कम्युनिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बहाई कम्युनिटी 129 तानिफा स्ट्रीट ग्लेन इनिस ऑकलैंड में 26 सितंबर को बिटवीन 3 PM एंड 5 PM। पाकिस्तानी वेडिंग ट्रेडिशंस, दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। 8 PM से 11 PM के बीच 26 सितंबर को माउंट एल्बर्ट सीनियर सिटीजन्स हॉल में 3B वायरेरे एवेन्यू माउंट एल्बर्ट ऑकलैंड में ये होने वाला है। एंड उमराव जान एम्पायर एंड आइडेंटिटी 26 सितंबर को 5-8 PM के बीच एलन मेलविल सेंटर हाई स्ट्रीट एंड फ्रेबर्ग प्लेस ऑकलैंड सिटी सेंटर में। तो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं जिसके बारे में जानकारियाँ हम ऑनलाइन भी शेयर करते रहेंगे ऑन आवर सोशल हैंडल्स।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

समय हो चुका है कि मैं यहाँ से निकलूँ और घर की ओर जाऊँ। अगर आप भी रास्ते पर हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो सावधानी बरते, रात बहुत हो चुकी है। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं एंड लॉन्ग ड्राइव पर है, स्पेशली ऑल आवर ट्रक ड्राइवर्स एंड राइड शेयर ऑपरेटर्स, मेक श्योर आप एडिक्वेट रेस्ट ले लें, ब्रेक्स लें एंड कंटिन्यू ऑन योर जर्नी। आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, तरोताज़ा होकर आप अपना सफ़र तय करें ताकि सेफ रहे आप आउट देयर, मेकिंग योर सेल्फ सेफ एंड एवरी अदर ड्राइवर एंड पैसेंजर ऑन द रोड सेफ। कभी कभार हमारी कमियों के कारण, हमारी गलती के कारण अन्य लोगों को परेशानियां हो जाती है, तो ऐसा ना हो कि यू बिकम द रीज़न फॉर एनी अदर पर्सन्स इनकन्वीनियंस। इसी के साथ मैं यहां से निकल रहा हूं, आपको छोड़े जा रहा हूं विथ अ फ्यू मोर लवली सॉन्ग्स फॉर द नाइट। हम मिलेंगे आपसे अब शनिवार को इन रेडियो पर, अगले शनिवार को 12 पर हम आ जाएंगे। तब तक के लिए यू गाइज हैव अ ग्रेट नाइट एंड हैव एन ऑसम वीक अहेड। भीगा भीगा सा मौसम रहने वाला है इन द वीक, तो छतरी और रेनकोट्स अपने पास में रखें। जुकाम से बचने के लिए आप बारिश से बच कर रहिए, कीप हाइड्रेटेड। फ्लू ये बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड इस साल तो 10-year रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ है, तो मेक श्योर अपने आप को सेफ रखे, सतर्क रखे, अपने इम्यून सिस्टम को तगड़ा रखे बाय हैविंग गुड फूड एंड इनफ हाइड्रेशन। मिलते हैं अगले शनिवार को, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट प्रोडक्टिव एंड सेफ वीक अहेड। नमस्कार।

या रॉक एंड रोल? Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: The world knew the legend.
2: Number 11, John Olamu.
1: Few knew the man.
3: Man, his life was complicated.
1: Lomu, an intimate moving documentary about one of New Zealand's greatest cultural icons, featuring never-before-seen footage from the family archive.
4: Power of the mind. If the heart's willing, anything's possible.
1: The definitive portrait of the player who changed rugby forever. Lomu. See it now, only in cinemas.

0: Flight on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Amsterdam AM. The beat of Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Night flying.

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।

0: स्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया। मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
2: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु केन डॉलर को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
3: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
7: मिसेस सिंह
8: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
9: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
10: डिब्बा खुल गया
11: भरत भाई टिफिन खुल गए छे
12: संजना का डिब्बा खुल गया
13: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
12: डिब्बा खुल गया
13: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
1: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
6: भौकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
7: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
6: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
8: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
6: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।

0: Dangerous Pay on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: सुनो, bills बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
2: हाँ, mortgage भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने.
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा.
3: NZPMI, your local development expert. Free site assessment के लिए visit nzpmi.co.nz या call 0800-4-NZPMI.
4: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली.
5: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर. मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार.
6: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है.
5: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज.
7: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते.
5: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC. कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह. कभी धूप कभी बादल. अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए. रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग. रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए. सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज. कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342. That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.

0: please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: HUM boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: डॉक्टर ने क्या बोला?
4: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
3: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
5: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अ श्योर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
6: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अ श्योर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashurevan.co.nz. नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अ श्योर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर.
7: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.

0: or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
1: Breakfast catch up.
2: दो मिनट हो रहे हैं, 6:00। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। सोमवार है, 7 तारीख सितंबर, आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
2: और वीकेंड होपफुली आपका अच्छा गया होगा, और अब एक नई सुबह, एक नए दिन, एक नए हफ्ते के लिए आप तैयार होंगे।
3: बिल्कुल, और जहाँ पर शुरुआत आप सभी के साथ हो रही है एक नई सुबह के साथ साथ, ऑफ़ कोर्स ये नया सफ़र भी आपके लिए काफ़ी कुछ एक्साइटिंग, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग जो है ये लेकर आने वाला है। कुछ ऐसे डेडलाइंस जिसे मीट करने के लिए आप भी काफ़ी एक्साइटेड थे ना, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही होता है, हम प्लान्स बनाते हैं एंड देन वी लुक फॉरवर्ड टू इट एंड वंस वी आर देयर एंड जब वो टारगेट हम रीच करते हैं या फिर वो डेडलाइंस हम मीट करते हैं तो एक खुशी तो महसूस होती है।
2: बिल्कुल, और होपफुली आपने वो अचीव किया हो, कल फादर्स डे भी सेलिब्रेट किया हो, फ्राइडे को जन्माष्टमी अच्छी तरह से आपने सेलिब्रेट की हो, और उसके बाद कुछ थकावट जो थी उसे आपने आराम करके दूर भगा दिया होगा, और नई एनर्जी के साथ तरोताज़ा होकर आप हमारे साथ शामिल हो गए हैं।
3: बिल्कुल, तो होपफुली यू आर ऑल रेडी आज के हमारे इस सफर के लिए ब्रेकफास्ट शो के, जहाँ पर आपके लिए ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ कर रहे हैं हम शुरुआत। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM पर या रोवा ऐप पर। अगर आप हमें सुन रहे हैं, दिस इज द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।

0: Side Up.
1: आज की सनी साइड अप स्टोरी इज अबाउट यू नो सम ऑफ द पीपल जो हम शायद यहाँ पर न्यूजीलैंड में जिनके लाइफ को भी एक्सपीरियंस करते हैं और इसको लेकर काफ़ी बातचीत जो है ये होती रहती है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द होमलेस पीपल जो तरह तरह के यू नो हार्डशिप्स फेस करते हैं लाइफ में. एंड इन दिस पर्टिकुलर सिमिलर सिचुएशन जो है ये कहानी है बेसिकली फिनलैंड की, जहाँ पर बताया गया है कि फिनलैंड में भी या फिर माफ़ कीजिएगा पेरिस में भी एक ऐसा सिचुएशन है. एक होमलेस शेल्टर है पेरिस में और यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं इनके लिए इट्स क्वाइट हार्ड टू कीप अप विद योर हेल्थ, क्योंकि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आपके पास रहने का ठिकाना ना हो और फिर अगर आपको शेल्टर जो है प्रोवाइड होती है तो वहाँ पर भी लिमिट चीज़ें होती है ना.
2: या ऑब्वियसली क्योंकि जो उनके पास सुविधाएं हैं उसी के मुताबिक तो वो आपको सेवा प्रदान करेंगे.
1: एब्सोल्युटली. सो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ, लेकिन बाद में चलकर कहा गया है कि एक कंपनी है जिनका नाम है ओमनी जिम, इन्होंने जिम के एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स वगैरह जो है ये इनफैक्ट डायरेक्टली भेजे हैं. दिस पर्टिकुलर कंपनी इज इन फिनलैंड और इन्होंने ऑल द वे टू पेरिस अपने कुछ एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स भेजे इस पर्टिकुलर शेल्टर के लिए. और ये जो शेल्टर है यहाँ पर अब रेसिडेंट्स को एक फ्री स्पेस मिलता है जहाँ दे कैन मूव, दे कैन एक्सरसाइज एंड दे कैन एक्चुअली स्पेंड टाइम टुगेदर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. खुद के हेल्थ पर ध्यान देने के लिए वो मेहनत जो है ये कर सकते हैं. एंड इट्स मोर देन यू नो समवेयर यू कैन वर्क आउट, इट्स बेसिकली अ प्लेस, एक मूवमेंट जहाँ पर आप वेलबींग अपना जो है अच्छा रखने के लिए यू नो आप एक्सेस कर सकते हैं इस जगह को. यू फील गुड. बहुत से लोगों से ये मैंने सुना भी हुआ है, बहुत से लोग ये चीज़ कहते भी है, व्हेन यू इन्वेस्ट योर टाइम इन योर हेल्थ और आप अपनी हेल्थ को जब अच्छा होता हुआ देखते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है
2: जी.
1: और योर हेल्थ इज गुड देन यू फील सो अमेजिंग इनसाइड आउट. तो इसी वजह से दिस इज समथिंग जिसके ऊपर काफ़ी काम किया जाता है एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती. सो व्हेन दिस पर्टिकुलर शेल्टर के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली दे वर जस्ट इमेंसली ग्रेटफुल. और कुछ बहुत ही इमोशनल यू कह सकते हैं मोमेंट्स अनफोल्ड हुए जहाँ पर फोटोज वायरल हुए, वीडियोज वायरल हुए ऑफ हाउ सिंपल थिंग्स कैन मेक अ पर्सन हैप्पी. कैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है लोगों की ज़िंदगी में कितनी बड़ी बड़ी खुशियाँ जो ये देती है,
2: क्योंकि ये चीज़ें शायद नसीब नहीं होती और जब ये ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से आ जाती हैं तो इट कम्स एज अ वेरी बिग रिलीफ इन लाइफ. एंड ज़िंदगी जो है उनके लिए जिनके पास ये सर्विसेज ना हो उनके लिए बहुत रिलीविंग हो जाती है.
1: एब्सोल्युटली. तो आज की हमारी जो सनी साइड अप स्टोरी आपके लिए हम लेकर आ रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. बी विद अस क्योंकि थोड़ी देर बाद आपके लिए आज का ग्लोबल हेडलाइंस, दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है ये हम चेकआउट करेंगे, क्योंकि राइट नाउ इट्स 14 मिनट्स आफ्टर 6.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines. Plus, $1,000 spending money.
1: Global headlines. Hum boarding call. Thanks to Solomon Airlines. Flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
4: अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
1: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
6: डॉक्टर ने क्या बोला
7: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
6: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
8: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश शीरा फ्रॉम अशोर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
9: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashore1.co.nz नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अशोर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर
10: Bollywood.
11: World's best. Hamari good brands nahi hai.
10: Global headlines.
12: Aaj subah ke mukhya samacharon mein. US military ne Iran ke 3 crude oil tankers par strike karke unhe tabah kar diya hai. Jo Iran dwara 2 US Navy warships par dagi gayi ballistic missiles ka jawab tha. US Central Command ke Admiral Brett Cooper aur US Defense Secretary Pete Hegseth ne saaf warning di hai कि अगर ईरान ने यूएस शिप्स पर अटैक जारी रखा तो उनके बचे हुए ऑयल टैंकर्स को भी सिंक कर दिया जाएगा दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस अटैक को यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन बताया है और पार्लियामेंट स्पीकर ने वार्निंग दी है कि ईरान के इंटरेस्ट पर होने वाले अटैक का हैवी और पेनफुल रिस्पॉन्स दिया जाएगा भारत में दिल्ली के सत्य निकेतन में कल शाम एक मल्टी स्टोरी पीजी बिल्डिंग गिरने से कम 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग क्रिटिकल हैं और कई अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान 9 लोगों को बचाया जा चुका है जबकि 40 से 50 साल पुराने इस बिल्डिंग के बेसमेंट में रिपेयर वर्क चलने को कोलैप्स की वजह बताया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए विक्टिम्स के लिए कॉन्डोलेंस जाहिर की है और अथॉरिटीज को साइट पर तेजी से असिस्टेंस प्रोवाइड करने के निर्देश दिए हैं फिजी में ऑपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेमिला कुमार ने प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रंबुका से एजुकेशन मिनिस्टर असेरी रनरोंडो को रिप्लेस करने का सुझाव दिया है अगर वो टीचर्स के पेंडिंग सैलरी और अलाउंस इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाते कुमार ने कहा कि टीचर्स को उनके हक के पैसे के लिए चक्कर नहीं काटने चाहिए और मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज या डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग की गलतियों की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए उन्होंने फीजी टीचर्स यूनियन और अपग्रेडेड सैलरी का वेट कर रहे 2024 ग्रेजुएट्स का हवाला देते हुए एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर अग्निदेव सिंह पर भी टीचर्स के राइट्स को इग्नोर करने के आरोप लगाए हैं पीजी में एक्स्ट्रा बैटल ऑफ द जायंट सॉकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स के फैसले हो चुके हैं इसी शनिवार को दिन में पहले सेमीफाइनल में सुबह मुंबई से खेलेगा जबकि शाम 4:30 बजे दूसरे सेमीफाइनल में रेवा और नसीनू का मुकाबला होगा कल आखिरी राउंड के पूल मैचेस काफी इंटरेस्टिंग रहे, जिसके बाद सदर्न डिवीजन से तीन टीमें इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुई हैं। इन पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
10: Bollywood's most wanted.
4: Gundi khad do ya seedha andar aao.
13: मैं लाऊं अपना A game.
10: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: सिंह और साथ में नेहा कक्कर की आवाजों में आपके लिए लेकर आ रहे थे आज का पहला चार्ट बस्टर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। और इधर चले प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हुए अगर देख ले तो हमारे पास और भी कई मैसेजेस जो है ये आए हैं गुड मॉर्निंग के। और सबसे पहले आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो है ये अगर हम चेकआउट करें, आज मिस्टर माटा माटा इन्होंने हमारे पास अपना गुड मॉर्निंग मैसेज जो है ये सेंड किया है और इन्होंने कहा है राम राम जय माता दी हैप्पी मंडे एवरीवन हैव अ गुड डे मिस्टर माटा माटा की ओर से।
1: और उसके अलावा राम राम विजय जी पूज्य जी महादेव जी की असीम कृपा आप दोनों पर बनी रहे आपका सोमवार मंगलमय हो। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू जॉइन अस आई एंड लिसन टू द प्रचार बाय आवर राम आदर्श नव युवक रामायण मंडली हर हर महादेव जया जी का ये मैसेज आया है।
0: ओह यस आई मेट हर ऑन फ्राइडे अमेजिंग पर्सनालिटी बाय द वे इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि आपको पता है जो जया मैसेज करती हूँ मैं हूँ एंड आई वाज रियली सरप्राइज टू मीट यू नो सो थैंक यू सो मच जया फॉर योर मैसेज। और जो जैसा इनका नाम है इट सीम्स लाइक अ वेरी क्या बोलते
1: रिलीजियस
0: नहीं नॉट
1: डाउन टू अर्थ
0: नहीं शी इज डाउन टू अर्थ लाइक जया इज नॉट अ रिलीजियस नेम बट इट्स मोर लाइक समवन हु इज वेरी काम एंड ऐसा मैं इमेजिन करती हूँ ये टोटल उनकी ऑपोजिट है एकदम हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है ये। सो फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई अच्छा लगा मिलकर थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। गुड मॉर्निंग भाई विजय एंड पीजे सलू लिस्निंग फ्रॉम गल्फ हार्बर फंगापुरोआ हैव अ ब्लेस्ड डे आपने कहा है थैंक यू सो मच आपको भी आज के इस दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बॉबी वान जी का मैसेज आया है इन्होंने कहा है मॉर्निंग पूजा एंड विजय फ्रॉम कैलिफोर्निया
1: हाय
0: हाँ
1: उधर निकल गए
0: उधर निकल गए हैव एन ऑसम वीक महादेव ब्लेसिंग हर हर महादेव इन्होंने कहा है तो आज ही इन्होंने अपना मैसेज भेज दिया है आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम इन कैलिफोर्निया राइट नाउ पर इन्होंने यार
1: तकरीबन एक रविवार के दिन में एक बजा होगा
0: हाँ तो इन्होंने एटलीस्ट अभी यू नो हमको मैसेज किया अपना जो ट्रेडिशन है ये कायम रखा इवन दो ही इज नॉट इन न्यूजीलैंड इट मींस अ लॉट यू नो थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: 6:30 बज रहे हैं वैसे कोमल नाहता आपको पता है कि ये बॉलीवुड के बहुत बड़े
0: क्रिटिक है या,
1: उन्होंने अभी हाल ही में अदनान समी से कुछ बातें जो है ये की और अदनान समी से उन्होंने सवाल पूछा अबाउट प्लेजरिज्म इन म्यूजिक तो उन्होंने कहा अदनान समी ने कहा कि देखिए मैं प्लेजरिज्म इन एनी फॉर्म उसके अगेंस्ट हूँ लेकिन मुझे उन म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए कंपोजर्स के लिए बहुत बुरा लगता है जो इस मिलेनियम में सामने आए हैं और उनको बहुत अनफेयरली टारगेट किया गया है ये अदनान समी का मानना है इफ यू ओनली क्रिटिसाइजिंग देम फॉर कॉपिंग एंड फॉरगिविंग द रेस्ट दैट इज अनफेयर ये इनका मानना है। उन्होंने कहा पिछले 20 सालों में इंटरनेट की वजह से लोगों के पास एक्सेस हो गया है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए तो अगर कोई कंपोजर इंस्पायर होता है और कंपोज करता है ट्यून तो वो तत्काल पकड़ा जाता है
0: राइट right.
1: उन्होंने कहा कि सम पीपल टेन टू हाइल आवर यस्टरडे म्यूजिशियंस उन्होंने कहा कि वो लोग तो काफी जीनियस होते थे पुराने जमाने के जो
0: म्यूजिशियंस
1: हाँ और उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि वो जीनियस थे लेकिन What happens is that a child may think that his father is a superhero. When the child grows up, he realizes, "Mera baap jo hai, aakhir wo insaan hai." Will you still respect him because he is your father? Hence, you cannot single out new composers and assume the rest were doodh ke dhule. क्योंकि उन्होंने कहा चाहे शंकर जयकिशन हो नौशाद हो एस डी बर्मन हो आर डी बर्मन हो बप्पी लहरी हो मैं उनका फैन हूँ आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम बट ईच वन ऑफ देम लिफ्टेड सॉन्ग्स उन्होंने भी यही किया था।
0: ओके इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए लेकर आएंगे आज का हमारा पहला सवाल थोड़ी देर बाद और देखते हैं कि आप में से कितने लोग हमारे साथ इस सवाल का जवाब देते हुए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यू नो सुबह सुबह हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए कितने लोग जो है सही जवाब जो है ये देते हैं। बाय द वे थोड़ी देर बाद आज का ये जो डे है यानी कि 7th of September इसके बारे में भी कुछ बातें आपसे हम जरूर करेंगे।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
2: Attention, hum passengers. Your next boarding call could take you to paradise. Listen out for your special hum boarding call for your chance to win to return a tickets to Vanuatu with.

0: flysolomons.com. Accurate traffic.
1: Sit back and save lives.
2: A high of 18, cloudy all day, some showers at times. Into the city, Southern Motorway, 24 minutes, Manukau to town, 44 from Drury now. Slow Papakura through to Manurewa and again at Papatoetoe. Fine on the southwestern, northwestern, slowing at Te Aratu and close to the city, 20 minutes, Massey to the city. Northern 18 in from Constellation, 35 from Silverdale, slow Constellation to Milford and back at Dairy Flat.
1: Every blood donation could save up to 3 lives. Book now, New Zealand Blood Service.
3: Professional Financials has साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस सो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
5: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली
6: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी अली फजल दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार
7: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया बनाना है
6: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज
8: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते
6: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग DBC
9: 3, 2, 1, rush!
10: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manuka.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। बॉबी मांझी का मैसेज आया है, इन्होंने कहा कि करंटली वहां पर 11:31 AM है जब इन्होंने मैसेज किया था। तो
3: अच्छा, बहुत बढ़िया।
2: राइट, थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा इधर चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि आज 7th of September के बारे में भी बातें करेंगे ना, क्या कुछ आज मार्क किया जा रहा है। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट टुडे?
3: Today is Brazil's Independence Day.
2: Okay.
3: और उसके अलावा फील द लव डे, ये आज मार्क किया जा रहा है दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ये भी आज ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत सारे लोग आज अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनमें शामिल हैं ममता शर्मा, अभी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे गाने गाती है ना
2: जी।
3: आज ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। और इनके साथ अगर देखें तो और जो लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनमें शामिल हैं एक्ट्रेस राधिका आप्टे,
2: ओके,
3: और साउथ के बहुत ही मशहूर एक्टर ममूती।
2: हाँ, बहुत अमेजिंग एक्टर है ये। हाँ। दुलकर सलमान जो है उनके बेटे हैं, ममूती के बेटे हैं।
3: तो ऐसा बोल सकती थी ना, उनके पिता
2: नहीं, आपका,
3: हैं।
2: आपका आपका जो जो एक्सप्रेशन था वो देखकर मुझे ऐसा लग गया कि आपको वो हुआ, डाउट हुआ।
3: हाँ, मुझे बोला हुआ।
2: एनीवेज, या
3: और सब ठीक ठाक है, वीकेंड काफी अच्छा था।
2: अच्छा। हाँ। और कोई नहीं बर्थडे मना रहा है आज?
3: मना रहे हैं बहुत सारे लोग ना, हम जानते ही नहीं किसी को।
2: चलो, अगर आप अपना बर्थडे मना रहे हैं डू लेट अस नो। आप 5599 पर हमारे पास मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, बट डू सेंड द मैसेजेस इन एट द अर्लीस्ट, क्योंकि अगले घंटे हम आपको विश करेंगे। जितनी जल्दी हमारे पास मैसेजेस आ जाएंगे उतना अच्छा, यू वोंट मिस आउट ऑन इट। फिलहाल आपका आज का पहला सवाल जो हम लेकर आए हैं, वेरी सिंपल। आज आपको हमें किसी एक ऐसी मूवी के बारे में बताना है जिसका टाइटल जो है एक कलर है, एक रंग है।
3: अच्छा,
2: ऐसे बहुत सी फिल्में आई हैं, पर मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ। इट्स नॉट ब्लैक, ब्लैक आज की हमारी मूवी ऑफ द डे नहीं है, और ब्लू भी आज की हमारी मूवी ऑफ द डे नहीं है।
3: ओके,
2: ऐसी फिल्में आई हैं, ब्लू आई है जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया है, उसमें गाना ना चिगी विगी बहुत पॉपुलर हुआ था।
3: और
2: ब्लैक आपको पता नहीं? अच्छा, ओके। और ब्लैक जो फिल्म है इसमें रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, इन्होंने काम किया था, संजय लीला भंसाली की फिल्म, इसका टाइटल भी ब्लैक था। दैट्स अ कलर, राइट?
3: ओके,
2: शेड ओवर इट, व्हाटएवर। पर एक फिल्म और है which is basically a color, एक ही टाइटल है, एक रंग है। ये कौन सी फिल्म है आज की मूवी ऑफ द डे? लेट्स सी इफ यू कैन फिगर इट आउट। BF स्पेस आंसर योर नेम 5599 पर आपको हमारे पास सेंड करना है। एक ऐसी बॉलीवुड मूवी आज की हमारी मूवी ऑफ द डे है जिसका टाइटल एक कलर है, एक रंग है, लेकिन हमने पहले ही क्लियर कर दिया है इट्स नॉट ब्लू नॉट ब्लैक। क्या आप सही जवाब पहचान पाते हैं या नहीं? अपने नाम के साथ अपना आंसर हमारे पास आप सेंड करें BF स्पेस 5599 पर।
4: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: Best Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
2: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
3: Rusbi, tickets book ho gaye.
4: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
3: Sunset, beach club और थोड़ा सा सुकून भी
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
6: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
7: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे ओनली ऑन हम Accurate traffic.
8: WM's great spring cleanup is on.
9: A high of 18, cloudy with showers on and off today. Into the city, Northern Motorway, 20 minutes, Constellation Drive to town, 35 from Silverdale. Slow at Silverdale, Constellation to Glenfield and Desmond. Northwestern, 26 in from Massey. Slow patches Massey to the Causeway, then all the way from St. Luke's. Southern, 28 Manukau to town, 48 from Drury. Slow on and off Papakura to Papatoetoe and slowing at Mount Wellington.
8: Book and be in to win a gift card from Woolworths, Bunnings or Mitre 10. T's and C's apply.
10: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से
11: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
12: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
13: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
14: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
15: The Auckland Home Show starts this Thursday at Auckland Showgrounds with inspiration from the front gate to the back fence. Discover hundreds of exhibitors, expert advice, and the all-new garden showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Buy tickets now and save at aucklandhomeshow.co.nz.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: Breakfast catch up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
17: तो फिलहाल 14 मिनट बाकी इससे मैं हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में ठीक 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे और मॉर्निंग मैडनेस अगले घंटे आपके लिए हम जबकि शुरू करने वाले हैं तैयार रहेगा क्योंकि आपके साथ मॉर्निंग मैडनेस में भी आज काफी कुछ जो है ये हम शेयर करते हुए चलेंगे फिलहाल के लिए आज का हमारा जो सवाल है बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे आपको पहचाननी है कई लोगों ने हमारे पास अपने मैसेजेस भेजे हैं स्नेहा है साथ में गुंजन है हरमिलाप है कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे नाम नहीं लिखा है रोनल्ड है साथ में फिजा है नितिका का भी मैसेज आया है मुनेश ने भी अपना जवाब भेजा है साथ में सलू है गल्फ अबा फंगपुरुआ से और जितने भी लोगों ने हमारे पास आज वैसे मैसेजेस भेजे हैं इनमें से मजोरिटी लोगों के आंसर्स हैं केसरी नाउ एब्सोल्युटली यू नो सही एज फार एज इट्स कंसर्न कि एक कलर है यस कलर तो है ये लेकिन आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे नहीं है
18: वो फिल्म नहीं है जिसकी हमें तलाश है बेसिकली अच्छा
17: तो वो फिल्म नहीं है केसरी आज का सही जवाब नहीं है आप दोबारा से कोशिश कर सकते हैं और हमारे पास अपने आंसर्स जो है ये आप हमें भेज सकते हैं हमने आपको बताया ना कि आज की जो बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे इसका टाइटल एक कलर है बेसिकली एक रंग है और ब्लू नहीं है, ब्लैक नहीं है, हमने ऑलरेडी बता दिया था। तो केसरी भी नहीं है, ये भी अब खैर क्लियर हो चुका है। अगर कुछ क्लूज आपको हम दे, ये एक मल्टी स्टारा मूवी है और इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन थे, जैसे ब्लैक में अमिताभ बच्चन थे,
18: हाँ।
17: इस मूवी में भी वो थे।
18: अच्छा
17: जी, इतना क्लू मैं आपको दे सकती टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। तो जल्दी से अपने आंसर्स आप हमारे पास भेजिए और देखते हैं कि क्या आप इस बार सही जवाब हमें भेज पाते हैं या नहीं। विनीता, आपने भी हमारे पास वैसे केसरी लिखकर भेजा है, अपूर्वा आपका भी मैसेज केसरी आया है, बट एज आई हैड जस्ट सेड कि केसरी इज अ कलर नो डाउट, बट आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे वो नहीं है। क्लू के तौर पर हमने बताया कि एक कलर है ये टाइटल इसका, और इसमें भी आपको अमिताभ बच्चन जो है ये दिखेंगे।
18: तो BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमें जरूर भेज सकते हैं। लेट्स सी, केसरी नहीं है, ब्लैक नहीं है,
17: ब्लू नहीं है,
18: ब्लू नहीं है, ये फिल्म में नहीं है, तो कौन सी फिल्म हो सकती है आज की हमारी मूवी ऑफ द डे जिसके बारे में हमने आपसे पूछा है। अपना जवाब आप हमें जरूर भेजें। एंड बाय द वे, रिमेंबर ये आखिरी वीक है हम बोर्डिंग कॉल
17: का। यस,
18: एज ऑफ लास्ट वीक आई थिंक ओवर 3700 एंट्रीज जो है ये आ चुकी थी।
17: बट इंटरेस्टिंग है क्योंकि इतने सारे लोगों ने जो एंट्रीज अपने सेंड की है उसमें से एक शख्स थे जो लास्ट वीक तक हर एक बोर्डिंग कॉल पर अपनी एंट्री सबमिट कर रहे थे। विल फाइंड आउट कि क्या उन्होंने वो बरकरार किया है टिल दिस मॉर्निंग और नॉट।
18: नहीं किया है,
17: नहीं किया। अच्छा, वो भी पीछे छूट गए,
18: उन्होंने एक
17: एक मिस किया।
18: या
17: बट एक मिस किया यार, हमने इतने सारे बोर्डिंग कॉल्स किए, उन्होंने सिर्फ एक मिस किया, इट्स नॉट बैड। बट नेवरदलेस फाइनल वीक है, विच मींस की फाइनल फ्यू डेज फॉर यू टू टेक पार्ट। इफ यू डोंट नो हम बोर्डिंग कॉल क्या होता है, अगले घंटे में आपको अच्छे से समझाएंगे। पर फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया में एक इवेंट मार्क हुआ टू सेलिब्रेट द 125 ईयर्स सिंस द ऑस्ट्रेलियन फ्लैग जो है इसे पहली बार लोगों के सामने लहराया गया था। एंड ऐसे में कैपिटल हिल इन कैनबरा, यहाँ पर क्या हुआ, 44 फ्लैग्स जो है ये ऑस्ट्रेलियन फ्लैग्स ये लहराए गए वापस से टू मार्क दैट पर्टिकुलर डे। एंड इट्स नॉट अनकॉमन टू गेट कन्फ्यूज्ड इन रिगार्ड्स विद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फ्लैग को लेकर। अगर आपको न्यूजीलैंड का फ्लैग आइडेंटिफाई करना हुआ ऑस्ट्रेलियन फ्लैग के मिलान में,
18: हाँ,
17: तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे?
18: वो स्टार्स जो होते हैं ना,
17: कैसे? हाँ, स्टार्स तो दोनों फ्लैग्स में है, यूनियन जैक भी दोनों फ्लैग्स में है।
18: एक में ज्यादा एक में कम है,
17: किस में ज्यादा है?
18: ऑस्ट्रेलियन।
17: यस, अनदर वे टू फाइंड आउट इज न्यूजीलैंड के फ्लैग में जो स्टार्स है वो लाल कलर के है विद व्हाइट बॉर्डर।
18: ओके,
17: ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग में जो स्टार्स है वो पांच स्टार्स है और सारे के सारे व्हाइट स्टार्स है, लेकिन न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के फ्लैग में चार स्टार्स है that are red in color with white border. तो apparently ये जो इवेंट हुआ जहाँ पर 125 years since the Australian flag ये mark किया गया in Canberra, 44 flags तो लहराए गए, लेकिन उन 44 में से सिर्फ 42 सही flags थे क्योंकि वो Australian flags थे, बाकी के दो flags New Zealand के flags थे। एंड वहाँ की जो लोकल न्यूज़ है 7 News, इन्होंने ये रिपोर्ट किया एंड दे सेड कि गलतियाँ हो जाती हैं और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फ्लैग में कंफ्यूज होना भी कॉमन है।
18: बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना।
17: हाँ, बट एट अ इवेंट वेयर इट वाज पर्टिकुलरली मार्क्ड टू सेलिब्रेट द फ्लैग ऑफ द कंट्री, वहाँ पर ये होना थोड़ा डिफरेंट है, यू नो।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम क्लाउडी रहेगा, जहां पर मॉर्निंग में रेन बताया जा रहा है, पॉसिबली हैवी रेन इनफैक्ट, और उसके बाद में चलकर पार्टली क्लाउडी वेदर विद फ्यू शावर्स प्रिडिक्ट किया गया है आफ्टर मिड डे. आज सनसेट जो है ये होगा 6:06 PM पर. राइट नाउ टेम्परेचर 14.6 डिग्रीज है, हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है. बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर आज का 9 डिग्रीज रहने वाला है.
2: Fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.

0: finance experience, call 0800-634-234.
1: 3 minutes away here, 7 bajkar. Welcome to Morning Madness on Hum, playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Aapke liye jari hai. Big Boss started yesterday?
2: Yeah, 6th of September ko, I think. That was yesterday.
1: Acha.
2: Hanji.
1: I didn't see anything.
2: Maine bhi nahi dekha. I don't know. Season 20 pahunch chuka hai, to shayad अभी थोड़ा जैसे यू नो बातें इसके बारे में ज़्यादा होंगी या कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड सामने आएंगे तो शायद इंटरेस्ट बढ़ेगा देखने के लिए, पर अभी मेरे को उतना ऐसे कुछ दिलचस्पी था नहीं ये देखने में.
1: क्या पहले क्या होता था कि पीपल इवन लुक फॉरवर्ड टू द ओपनिंग ना.
2: हाँ, और कौन कौन से लोग एस कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं.
1: या आई पर्सनली यूज्ड टू डू
2: दैट,
1: बट ओवर टाइम वो धीरे धीरे खत्म हो गया ना.
2: या
1: कि पहला एपिसोड क्या, मे बी अभी चॉइसेस इतने ज्यादा है
2: प्रोबेबली बिकॉज इंटरनेट पर अब अगर देखो, इनफैक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इटसेल्फ देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, और जब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और उन हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक कुछ शो है जो लोग देखना पसंद करते हैं, तो ऑप्शंस बहुत है ना लोगों के पास.
1: एग्जैक्टली. वैसे आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो कुछ खास, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट भी होगा आपके लिए, तो इंतजार करें. इसकी खातिर क्या होगा हम आपको बताएंगे कुछ देर बाद. बाय द वे, एक व्यक्ति ने जाकर एक्स पर शेयर किया है कि वो नॉर्वे में रहते हैं, इंडियन बंदा है
2: जी.
1: और इंडिया में शायद आई एम नॉट रियली श्योर कैसे होता है कि लाइसेंस हासिल करना एक रूटीन प्रोसेस होता है, लेकिन नॉर्वे में रहने वाले इस शख्स ने बताया कि उन्हें लाइसेंस लेने में 2 साल लग गए एंड ही स्पेंट अराउंड 6 लाख रुपीज. और उन्होंने एक्स पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. विनोद नाम है इनका
2: जी.
1: उन्होंने बताया कि व्हेन आई केम हियर इन 2011 उन्हें एहसास हुआ कि आपको तो ड्राइविंग आनी चाहिए, जस्ट लाइक हम न्यूजीलैंड आते हैं तब ना. एंड उन्होंने ड्राइविंग जो है ये सीखी अपने पड़ोसी की मदद से, लेकिन लाइसेंस हासिल करना इन्वॉल्व मच मोर देन सिंपली लर्निंग टू ऑपरेट अ कार. उन्होंने बताया कि एक प्रोसेस इंक्लूडेड मैंडेटरी कोर्सेज, थ्योरी टेस्ट, सेफ्टी ट्रेनिंग और कई आवर्स ऑफ प्रैक्टिस. एंड ही सेड अ ड्राइविंग सुपरवाइजर आल्सो नीडेड एटलीस्ट 5 years ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस. विनोद ने प्रैक्टिस की इन डिफरेंट कंडीशंस, स्नो, साथ में माउंटेन्स, टनल्स, हाईवे, स्मॉलर रोड, सभी जगह पर ड्राइविंग स्कूल्स वहां पर भी बाय द आवर चार्ज करते हैं. एंड यू केप प्रैक्टिसिंग अंटिल दे बिलीव्ड यू वर रेडी. द फाइनल ड्राइविंग टेस्ट वाज अनदर चैलेंज. उन्होंने बताया कि लगभग 1 घंटे से ज्यादा लगा उनको, और इन्वॉल्व ड्राइविंग थ्रू ट्रैफिक, टनल्स और माउंटेन रोड्स. उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि ही फेल्ड.
2: Okay.
1: He then spent another 2 months practicing, जिसके बाद एक और टेस्ट जो है ये इन्होंने किया. Almost 2 years of struggle for 1 license. जाकर उन्होंने कहा.
2: Very interesting. But अपने अपने सिचुएशन में देखा जाए, और साथ में अलग अलग कंट्रीज के रूल्स भी डिफरेंट होते हैं ना.
1: हाँ.
2: वो एक चीज हो जाती है. बट यहाँ पर कितना टाइम लगा आपको टू गेट योर लाइसेंस इन न्यूजीलैंड?
1: I can't remember कितना टाइम लगा, but बहुत टाइम नहीं था.
2: The process is not that hard. लेकिन आई थिंक कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर जब टेस्ट के लिए लोग जाते हैं, दे हैड एक्सप्रेस द फैक्ट कि जिस तरह से टेस्ट किया जाता है आपको वो थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल होता है, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल फेल, और इंटिमिडेटिंग होता है इन सर्टेन सिचुएशंस. लेकिन आउट ऑफ ऑकलैंड ऐसे सिनारियोज थे जहाँ पर लोगों को ज़्यादा यू नो फ्रेंडली और ज़्यादा काम सिचुएशंस मिले थे टू गेट द टेस्ट डन.
1: शायद रास्ते इतने बिजी नहीं होते.
2: रास्ते बिजी नहीं होते, प्लस द इंस्ट्रक्टर्स जो आते हैं ना टेस्ट करने के लिए, जो साथ में आपके रहते, वो आपको उतना इंटिमिडेट नहीं फील कराते. आई रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन क्योंकि एक आर्टिकल भी आया था कई साल पहले जहाँ पर अ डैड हैड स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि उनका जो बेटा है वो बार बार फेल कर रहा था. एंड जब वो एक टेस्ट में उनके साथ गए, देन ही रियलाइज कि जो यहाँ ऑकलैंड में ही बेस्ड थे वो, और उन्होंने रियलाइज किया कि जो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर्स जो उनके साथ जा रहे थे वो बहुत इंटिमिडेट फील करा रहे थे उनके बेटे को. तो डर में लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं.
1: हाँ.
2: और इसी वजह से उन्होंने आउट ऑफ ऑकलैंड एक जगह पर टेस्ट बुक की आफ्टर रिकमेंडेशन थ्रू अ फ्रेंड, जिन्होंने कहा कि यार आउट ऑफ ऑकलैंड जाकर कराओ ज़्यादा ईजी है. एंड दैट्स व्हाट दे डिड. एंड उसके बाद उन्होंने देखा कि जो इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत काम तरीके से बातें कर रहे थे, एक नॉर्मल यू नो रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. एंड दैट्स हाउ द सन even felt more relaxed, और कम गलतियां हुई जिसकी वजह से he finally passed. So okay. I remember this particular incident happening. Like मैंने पढ़ी थी ये कहानी and personal experience भी मेरा इस मामले में. So I guess that's why मुझे याद है.
1: ओके तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ड्राइविंग लाइसेंस लेते वक्त, जरूर आप हमें बताएं. शुरू शुरू में जब हम आते हैं तो उतना समझते भी नहीं है ना
2: कि क्या रूल्स हैं, कैसे
1: देखना, किस तरह से वो सारी चीजें, एंड यू आर न्यू टू द कंट्री एंड न्यू टू द रूल्स आल्सो, तो उस टाइम पर भी गलतियां जो है
2: ये हो जाती हैं. ट्रू. बट आपको कितने साल लगे आपका फुल लाइसेंस लेते हुए, इफ यू गॉट फुल लाइसेंस नाउ हमें आप जरूर बताइए 5599 पे टेक्स्ट करते हुए. ओह बाय द वे फॉरगॉट पिछले घंटे जो बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे इट वाज पिंक, जितने लोगों ने मैसेजेस भेजे थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए.

0: 1234.
1: Rashi Vibes.
2: तो कैसा रहेगा आज का आपका दिन? सबसे पहले मेष यानी एरीज आपके लिए कहा गया है। पहले दिन के हिस्से में आज काफ़ी प्लान्स पर आप फोकस करने वाले हैं, जबकि बाद में कामकाज जो है ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहेगा। किसी नए समझौते पर जल्दबाजी ना करें, अच्छी तरह से काम को इवेलुएट करें, सब कुछ अच्छी तरह से जाँच कर लें उसके बारे में, तभी जाकर आप डील पर साइन करें। और आज थकावट कुछ महसूस करेंगे, इसलिए आराम का ख्याल रखें और जितना हो सके पानी कंज्यूम करें।
3: उसके बाद वृष ने टोरस आपके लिए कहा गया है कि साथ काम करने वाले जो लोग हैं इनका सपोर्ट मिलेगा आपको, और इस वजह से आज आप अपनी डेडलाइंस भी मीट करेंगे और बहुत आसानी से विदाउट एनी इश्यूज एंड आर्ग्यूमेंट्स सब काम जो है ये आपके हो सकते हैं। साथ में आपके लिए ये भी बताया गया है कि आँखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी आँखों से जुड़ी कुछ तकलीफ़ों का सामना बड़े दिनों से आप कर रहे हैं, फाइनली दैट माइट कम बैक, और इसकी वजह से हो सकती है। परिवार की कुछ जरूरतों पर भी आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो फाइनली यू विल गेट सम गुड न्यूज़ इन रिगार्ड्स विद दैट।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज कहा गया है कि अपनी बातों को क्लियरली दूसरों के सामने रखें, और इसके अलावा जो लोग डिजिटल मार्केटिंग इन सारी चीज़ों से जुड़ी हैं, आज आपको काफ़ी काम मिल सकता है, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, और मेंटली यू विल बी फीलिंग वेरी टाइट टुडे। हो सके अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें।
3: आज कर्क ने कैंसर आपके लिए बताया गया है, बहुत इमोशनल रहेंगे आज आप, आज इमोशंस आपके सिर चढ़कर बोलेगा ऐसा आपके लिए बताया गया है। काम में हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा दबाव आप महसूस करें, इसीलिए ट्राई एंड बैलेंस थिंग्स आउट, अदरवाइज इमोशनली आप बहुत चार्ज्ड अप रहेंगे आज। पुराने संपर्क यानी कि कॉन्टेक्ट जो है आपके, इनके साथ वापस से मुलाकात होगी, एंड यू विल बी हैविंग सम गुड कॉन्वर्सेशंस, सम एनकरेजिंग कॉन्वर्सेशंस इनफैक्ट आज आपके लिए बताया गया है।
2: सिंह यानी लियो, लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने का मौका मिलेगा, और आज नए प्लान्स पर डिस्कशन होगा, हो सके आज किसी तरह का रिस्क ना लें, पैसों का फायदा आज आपको हो सकता है।
3: और के बाद कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर कुछ लोग हैं आपके पीछे पड़ चुके हैं, कहते ना हाथ धोकर, हाँ। तो वैसा ही कुछ माहौल आज आपके लिए रहेगा, इनसे थोड़ा बच कर रहे, थोड़ा केयरफुल रहे, ये सलाह आपको दी जा रही है। और साथ में आपके लिए कहा गया है कि अभी मार्केट का जो सिचुएशन है एज फार एज हाउसिंग मार्केट इज कंसर्न, तो आपके लिए ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ पर आप अपना खुद का घर ले सके। इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन बाइंग योर ओन प्रॉपर्टी, टुडे इज अ वेरी गुड डे इस पर काम शुरू करने के लिए। आर्थिक स्थिति जो है ये आप ऐसा ना कर ले कि ये सपना पूरा करते करते अपना फाइनेंशियल सिचुएशन आप एकदम बिगाड़ ले, इसीलिए इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट, बट यू हैव टू सी आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है।
2: तुला यानी लिब्रा, क्रिएटिव काम से आज आपको पहचान मिल सकती है, सक्सेस मिलेगा, टीम के साथ मिलकर काम करें, और प्रॉपर्टी के मामलों में आपको फायदा हो सकता है।
3: आज वृश्चिक ने स्कॉर्पियो के लिए कहा गया है कि अपने प्लान्स पर, अपने जो पर्सनल जानकारियों पर थोड़ा केयरफुल हो जाए, किससे क्या कह रहे हैं इसे जितना सीक्रेटिव हो सके उतना सीक्रेटिव बनाकर आप रखें, क्योंकि ये बात भी सही है कि अक्सर जो लोग दिखाते हैं कि आपका भला चाहते हैं वो आपका भला नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप फेल हो जाए, इसीलिए हर किसी के सामने अपनी बातों को रिवील करना बंद करें। आज रिस्क से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। पैसों के मामले में थोड़ा केयरफुल हो जाए, कोई भी डील वगैरह आप कर रहे हैं जहाँ पर पैसे इन्वॉल्व्ड है, बहुत सोच समझ कर आपको ये कदम उठाना है आज।
2: धनु यानी सजिटेरियस, ये जरूरी है कि अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आप प्रायोरिटाइज करें, कुछ नए प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको मिल रहा है जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको अच्छी तरह से पढ़ ले, और आज फाइनेंशियली दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा।
3: और फाइनली मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आज आपके लिए वैसे बताया जा रहा है कि आज का जो ये दिन है काम में बहुत ज्यादा आपका ध्यान रहेगा, समय जाएगा, मन लगेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि काम में मन लगाते लगाते खुद को ही भूल जाए। आपके लिए बताया गया है अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपने आसपास के रिश्तों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जीवन साथी का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन घर में जो वातावरण है हो सकता है कुछ समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, उसे इग्नोर ना करें, सही समय पर उनके साथ डील करना, उन्हें एड्रेस करना आपके लिए इमेंसली इम्पोर्टेंट है।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस क्रिएटिव कामों में और आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। बदलाव को लेकर कोई नई सोच बन सकती है और अगर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आप हैं तो नए कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे। इनकम के अच्छे योग हैं लेकिन अचानक शॉपिंग पर ना निकले तो अच्छा होगा आज।
3: और आखिर में मीन यानी पाइसेस आपके लिए कहा गया है, कुछ बड़े बुजुर्ग हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, इनकी बातों पर ध्यान दें, इनकी बातों पर विश्वास रखें, इनके सलाह पर काम करें, ऐसा आपके लिए बताया गया है। कुछ नई जिम्मेदारियों को आज आप जरूर संभालेंगे लेकिन पेशेंस भी इस मामले में आज आपका टेस्ट होगा। हो सके तो खुद को आप एकदम मेंटली स्ट्रांग बनाएं क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आप एक्सट्रीमली टेस्ट किए जाएंगे इन रिगार्ड्स विद योर पेशेंस। और दूर से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके संपर्क में आज आप आएंगे और ये भविष्य में चलकर आपको काफी फायदा दिलाने वाले हैं। सो ये थी आज की आपकी राशि वाइब्स। उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे और इसी उम्मीद के साथ साथ 20 मिनट हो रहे हैं 7:00 कमिंग अप नेक्स्ट आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म। याद है ना पिछले दो दिनों से लास्ट वीक एक आवाज लेकर आ रहे थे, नो वन गेस्ट इट।
2: अच्छा
3: आज वही आवाज वापसी कर रही है सेलिब्रिटी अलार्म में,
2: तो देखेंगे कि क्या आज आप में से कोई उसे पहचान सकता है या नहीं।
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
0: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ।
4: ड्राइविंग यू होम,
5: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
6: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
7: ये गलत बोल दिया यार।
6: और पहनता भी नहीं है उसको।
7: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
6: इंटरेस्ट
8: ब्रांड हो गया
7: अभी, ब्रांड हो गया ना
6: रुस्बे के बाल लगे उस।
5: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J.Crew.
9: Keep business moving with the American Express Gold Rewards business card. Pay suppliers today and extend your cash flow by up to 55 days. Plus, with Reward Pay, you can pay almost any supplier in New Zealand and earn points on payments. Get started with 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex Travel. Search Amex Business to discover a more rewarding way to pay suppliers. Offer ends 14th of December 26. 1.5K minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. Membership rewards, T's and C's apply and Reward Pay enrollment required.
5: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
10: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down and still earn smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
11: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी डिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
12: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
13: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
14: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
5: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
1: Celebrity Alarm.
15: Hit it.
3: 24 minutes after 7 for now, celebrity alarm ki bari aayi hai. I am having fun with this one. Kyunki last week se ye awaaz hum lekar aa rahe hain and no one has been able to get it right. The interesting thing is ki ye pehli aisi voice hai jiske saath itna lamba hum celebrity alarm mein chal pade hain ki 3 din ho chuke hain inko nahi pehchan paya. Par kya ye awaaz chauthe din tak jayegi ya nahi, ye aaj decide hoga. Isliye pehle aapko sunate hain awaaz. वही ऑडियो क्लिप जो हम उतने दिनों से सुनाते आ रहे हैं. नथिंग न्यू, नथिंग डिफरेंट, द सेम ऑडियो क्लिप. एंड लेट्स सी, कैन एनीवन गेस इट राइट टुडे.
4: थेरेपी बहुत सब लोग बहुत टैबू देखते हैं. आई यूज्ड टू थिंक इट वाज टैबू बिकॉज़ आई थॉट आई एम फाइन, आई डोंट नीड इट. बट लाइक यू नो, लाइक सालों साल आप काम करते आ रहे हो, काम करते आ रहे हो, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है. यू रियलाइज यू आर लूजिंग योर सैनिटी. एंड आई वाज अ स्क्रोलर ऑल द टाइम, जस्ट स्क्रोल अप, स्क्रोल अप, स्क्रोल अप, स्क्रोल अप.
3: तो कौन है ये जिसकी आवाज़ इतने दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप पहचान जाए, आप जान जाए. एंड अभी तक किसी ने भी सही सही आंसर जो है ये नहीं दिया है. बाय द वे, पिछले घंटे हमारे पास जो मैसेजेस आए थे उनमें गुंजन ने, धीर, शुभनम, यस माफ़ कीजिएगा, शुभम, साथ में क्रिस्टीन और फरजाना, इन्होंने भी अपने मैसेजेस जो है ये हमारे पास भेजे थे. लेकिन आज हमारे सेलिब्रिटी अलार्म के लिए क्या कोई कोशिश करता है या नहीं,
2: क्या कोई सही बताता है या नहीं. अटेम्प्ट तो आई थिंक कई लोगों ने किया था,
3: किए थे पिछली बार भी किए थे. आपको पता चल गया ना कि ये कौन है, ओनली बिकॉज आई हैड रिवील्ड इट टू यू.
2: या अदरवाइज मुझे नहीं पता चलता.
3: दैट्स व्हाट आई वाज गोना आस्क, कि अगर मैं नहीं बताती तो आपको पता नहीं चलता किसी भी तरह से. पर क्या आपने इनको सुना है पहले? हाँ, जब मैंने रिवील किया, देन मींस यू नो दिस पर्सन.
2: या ऑब्वियसली
3: नॉट बाय फेस, लेकिन इनकी आवाज आप जानते हैं.
2: हाँ.
3: लेकिन इनकी आवाज जिस अंदाज में आप जानते हैं, चलो वो आज हम आपके लिए रिवील करते हैं. मैंने ये पिछली बार भी कहा था, आई थिंक फ्राइडे को जब क्लूज दे रहे थे, कि थर्सडे को हमने क्लूज नहीं दिए थे, फ्राइडे को जब हमने क्लूज दिए थे हमने कहा था कि ये जाने ही जाते अपनी आवाज के लिए. ही इज अ वेरी वेल नोन सिंगर. बॉलीवुड मूवी में या मूवीज में इन्होंने बहुत से गाने गाए हैं. एंड यू विल बी शॉक्ड जब मैं इनके गाने आपको सुनाऊंगी, क्योंकि इनके गानों पर कभी ना कभी आपने भी डांस किया ही होगा. और अगर आपने डांस नहीं किया, किसी को डांस करते हुए इनके गानों पर आपने देखा होगा, इनके गाने आपने सुने होंगे मस्ट. तो इतना चलो आज हमने बता दिया, वन स्टेप अहेड वी हैव गॉन एंड वी हैव टोल्ड यू कि ये एक सिंगर है. अरे हमने अभी रिवील किया, सो वी गिविंग अ फ्यू मोर मिनट्स, क्योंकि हमने जैसे रिवील किया कि एक सिंगर है, उसके बाद आशीष चंचलानी, गुंजन आपने भेजा, वो एक यूट्यूबर है. इज नॉट द राइट आंसर, ही वॉज इन गोलमाल मूवी, ये किसी ने कहा. लेकिन गोलमाल मूवी में ये नहीं थे, ये एक्टर नहीं है, सिंगर है ये. और गोलमाल मूवी पता नहीं कब आई थी, मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक उसके बाद ये इंडस्ट्री में आए थे. सृष्टि ने कहा विकास खन्ना, विकास खन्ना द शेफ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सृष्टि अगर आप उनको मीन कर रहे हैं तो नहीं, ये वो भी नहीं है.
2: तो इतना आपने बता दिया है कि ये एक बॉलीवुड सिंगर है.
3: यस, नॉट जस्ट बॉलीवुड की मूवीज के गाने, इन्होंने काफी रीजनल सिनेमा के लिए भी गाने गाए हैं, पर बॉलीवुड में आप इनको जानते हैं.
2: तो अब सोचे कौन हो सकते हैं, अटेम्प्ट तो करें कम से कम.
3: या मैं एक बार फिर से आवाज सुनाती हूँ, ट्राई एंड लिसन टू हिज वॉइस वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी आवाज आप पहचान सकते हैं अगर आप इनकी इस पर्टिकुलर ऑडियो क्लिप पर थोड़ा ध्यान दें.
4: सब लोग बहुत टैबू देखते हैं. आई यूज्ड टू थिंक इट वाज टैबू बिकॉज़ आई थॉट आई एम फाइन, आई डोंट नीड इट. बट लाइक यू नो, लाइक सालों साल आप काम करते आ रहे हो, काम करते आ रहे हो, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है. यू रियलाइज यू आर लूजिंग योर सैनिटी. एंड आई वाज अ स्क्रोलर ऑल द टाइम, जस्ट स्क्रोल अप, स्क्रोल अप, स्क्रोल अप, स्क्रोल अप.
3: तो जल्दी से BF स्पेसी आंसर ये नहीं, 5599 पर आपको हमारे पास सेंड करना है कौन है आज की हमारी सेलिब्रिटी. इन सेलिब्रिटी अलार्म क्लूज भी हमने आपको दिए है कि ये बाय प्रोफेशन एक सिंगर है.
8: Hollywood's most wanted.
15: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao.
16: Main laun apna A game.
8: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: finance experience. Call 0800-634-234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, न्यूजीलैंड फेस्ट लीडर विंस्टन पीटर्स ने अनाउंसमेंट किया है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो 2029 से सिर्फ न्यूजीलैंड सिटीजन्स ही सुपर इनोवेशन के लिए एलिजिबल होंगे। पीटर्स ने कहा कि टैक्स बर्डन को कम करने और लोकल कीवीज को प्रायोरिटी देने के लिए ये जरूरी है ताकि कम समय से रह रहे माइग्रेंट्स पर टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च ना हो। इस पॉलिसी के तहत माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप के लिए 3 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, जिसके बाद रेसिडेंस या पर्मानेंट रेसिडेंस होल्डर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। उधर नेशनल पार्टी ने इलेक्शन पॉलिसी अनाउंस करते हुए फर्स्ट होम लोन स्कीम के तहत 5% डिपॉजिट पर घर खरीदने के लिए इनकम कैप को बढ़ाकर $300,000 करने का वादा किया है। हाउसिंग स्पोक्सपर्सन क्रिस बिशप ने कहा कि करंट लिमिट्स $95,000 सिंगल के लिए और $150,000 कपल्स के लिए है। ये पुरानी हो चुकी है, जिससे कई वर्किंग कपल्स डिपॉजिट सेव करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस पॉलिसी का मकसद है न्यूजीलैंड में होम ओनरशिप रेट को 66% से बढ़ाकर 74% तक पहुंचाना, ताकि नए फर्स्ट होम बायर्स को रिलीफ मिल सके। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सप्ताहांत ऑल ब्लैक्स को हार का सामना करना पड़ा। टीम की हार तीसरे मैच में हुई है। अब आखिरी मैच जो है ये खेला जाना बाकी है, जो कि एक न्यूट्रल वेन्यू पर यूएसए में खेला जाएगा। फिलहाल टीम के कई खिलाड़ी इस बार चौथे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। ओएफसी चैंपियंस लीग या ओएफसी अंडर 19 मेंस चैंपियनशिप के तहत फिजी को सप्ताहांत न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। फिजी की हार न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 से हुई। ताहिती और वनवातु एक एक गोल से बराबर ठहरे। उधर पापुआ न्यूगिनी ने सामोआ को 4-2 से हराया, जबकि सोलोमन आइलैंड्स की जीत न्यू कैलेडोनिया के खिलाफ 3-1 से ही हुई। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau. Accurate traffic.
5: Simplicity means lower KiwiSaver fees.
6: Showers on and off with a high of 18 today into the city. Northern Motorway 23 minutes from Constellation Drive to town. 45 from Silverdale. Heavy Silverdale to Snow Planet and at Constellation, then slow to the bridge. Northwestern half an hour in from Massey. Patchy there to the causeway, then heavy on and off from Point Chev. Southern 38 minutes Manukau to town. Slow all the way from Papakura. A couple of heavy spots. Southwestern slow northbound at Whitty.
5: Keep more of your money with Simplicity, the low fee, non-profit KiwiSaver provider.
7: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
8: The Auckland Home Show starts this Thursday at Auckland Showgrounds. With inspiration from the front gate to the back fence, discover hundreds of exhibitors, expert advice and the all-new Garden Showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Buy tickets now and save at aucklandhomeshow.co.nz.
9: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
10: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
11: Get your flooring project started now with Flooring Extra at the Auckland Home Show. So come see us for Auckland Home Show exclusive savings on Bremworth Carpets, Quickstep Laminate, Timber and more. Can't make it to the show? Visit one of our 10 Auckland showrooms to discover the deals. But be quick, savings are only available from Thursday 10th to Sunday 13th of September.
12: Flooring Extra. It's all your
0: floor.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
3: Birthday greetings.
12: Iska birthday bhai?
13: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
12: Happy birthday to you.
2: Many many happy returns of the day. Aaj 7th of September ko agar apna special day aap celebrate kar rahe hain Niketan, is din ki bahut sari shubhkamnaen aaj hum aapko dena chahenge. 18 years ke aap ho rahe hain, aapke mummy papa hain aur bhaiya hain jinhone aaj aapko bahut sara pyar aur aashirwad diya hai.

0: 1-800-634-234।
1: तो हमने जो आज का सेलिब्रिटी अलार्म आपके लिए प्ले किया था उसके कुछ क्लूज देने के बाद लोगों ने कोशिशें जो है ये जरूर की है, और इंटरेस्टिंगली कई आंसर्स जो है ये हमारे पास आए हैं। विधि ने कोशिश की, साथ में फिरोज है, फिरोज ने कहा अरिजीत सिंह, नव ने कहा जुबिन नौटियाल, सोनू निगम किसी ने मैसेज किया, शुभम ने कहा अमाल मलिक, काजल ने कहा मिका सिंह, भजन ने कहा हनी सिंह, मंजू ने कहा कुणाल गांजावाला, समन इज आस्किंग मलिक ब्रदर्स में से अरमान मलिक है क्या, और ज्योति ने अपना वही मैसेज भेजा है। साथ में दर्शन ने या जय ने कहा दर्शन रवल, अरमान मलिक किसी और ने भेजा है, टोनी कक्कर ये किसी ने कहा है, और अरमान मलिक रिजी इन्होंने भेजा है, कृष्णा जी ने कहा है टोनी कक्कर। तो मैं अब आपको कुछ क्लूज देने वाली हूँ, क्योंकि एक कोई शख्स है जिन्होंने इनकी आवाज पहचान ली है,
2: अच्छा,
1: एंड बाकी सारे गलत है। तो बाकी
2: तो ऐसा करेंगे, थ्रोबैक तक टाइम देते हैं, जस्ट इन केस,
1: जस्ट इन केस, और बाकियों की हेल्प करने के लिए। सम ऑफ द सॉन्ग्स दिस पर्टिकुलर पर्सन है संग जो बहुत पॉपुलर हुआ, ये था उनका सबसे पहला गाना। दिस वॉज द फर्स्ट सॉन्ग जो उन्होंने गाया था, और दिस वॉज द फर्स्ट सॉन्ग उनका जो बहुत हिट हुआ था।
2: इतना काफी है।
1: Another song which gained him a lot of popularity. And my personal favorite. He is one amazing singer जिन्होंने इतने सारे famous popular tracks गाए हैं कि मैं आपको ये list मतलब सुना ही सकती हूँ, and I wouldn't get tired of it, and I am absolutely sure कि आप भी नहीं थकोगे। अभी मैंने आपको चार गाने इनके सुना दिए, which means it should be very easy to identify आज के हमारे celebrity की आवाज कौन है, आज के हमारे celebrity in celebrity alarm BF space answer your name, जब तक throwback बज रहा है तब तक आप भेज सकते हैं।
2: तो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स जो हैं ये आप हमारे पास भेजें।
1: फिलहाल आपने कहा था ना कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट, सुना दे।
2: सुनाइए।

0: Wireless Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Pesic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours और IIIE Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: तो हमने आपको याद होगा काफ़ी समय पहले इसके बारे में जानकारियां दी थी कि तैयारियां चल रही हैं कि यहां न्यूजीलैंड के जो कलाकार हैं उनको भी फीचर किया जाए. हम फिजी कीर्तन संग्रह पर हम फिजी कीर्तन संग्रह इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूजिक स्टेशन जो अरूबा पर आपके लिए हैं. एंड थैंक यू, आपने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट दिया. लेकिन हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनको उस पहचान की ज़रूरत है. तो इतने
2: प्लेटफॉर्म की जरूरत है ना,
1: प्लेटफॉर्म की जरूरत है और शायद आप पूरा एल्बम जो है ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो हमने सोचा कि चलो ये अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं और अगर आप एक कलाकार हैं, आप कीर्तन गाते हैं और आप चाहते हैं कि आपका कीर्तन जो है ये रहे हम फिजी कीर्तन संग्रह पर, जहाँ पर दुनिया भर के लोग इन्हें बिल्कुल फ्री में सुन सकें,
2: राइट.
1: तो ये अपॉर्चुनिटी है. ये रिकॉर्डिंग जो है ये फ्राइडे 25th सितंबर को होने जा रही है, तकरीबन 18 दिनों बाद, विद इन 3 वीक्स. ये वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापा टोए टोए में होगी. जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग इज एब्सोल्युटली फ्री. थैंक्स टू ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड अस, जो वेन्यू कॉस्ट और बाकी सारे कॉस्ट है ये कैटर करने के लिए. और जो लोग बस सुनना भी चाहते हैं आपके लिए भी कोई चार्ज नहीं होगा. यू कैन जस्ट कम
2: And be part of it.
1: हाँ,
2: oh, that's interesting.
1: उस शाम उस रात आकर वहाँ पर हिस्सा बन सकते हैं इसका. लेकिन सिर्फ 20 आर्टिस्ट जो है उनकी, क्योंकि टाइम लिमिट होता है ना, सिर्फ 20 आर्टिस्ट जो है उनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी. एंड इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू रजिस्टर,
2: राइट.
1: इस बात का ख्याल रखें, रजिस्ट्रेशन डज नॉट गारंटी ए रिकॉर्डिंग स्पॉट.
2: ओके.
1: हमारी टीम जो है ये आपको कॉन्टेक्ट करेगी और तब अगर आपको कंफर्मेशन जो है कि हमारी टीम द्वारा दी जाती है, देन इट इज. बट द फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन. रजिस्टर जो है ये आपको करना है.
2: तो याद रहे, अगर आप एक कीर्तन आर्टिस्ट है और आप भी चाहते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले अपने यू नो कलाकारी जो है ये लोगों तक पहुंचाने का, और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आप यूज करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से आपको एक्सपोजर चाहते हैं, तो आपको ये मिल सकता है. और फिजी कीर्तन रिकॉर्डिंग जो है इसके लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं एज अ टीम और एज अ सिंगल आर्टिस्ट एज वेल, आपकी खुद की टीम भी होगी अगर, तो आप हमारे पास टेक्स्ट कीजिए KR, यानी कीर्तन रिकॉर्डिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म KR लिखे, 5599 पर आप भेज सकते हैं और आपके पास ऑटो रिप्लाई में रजिस्ट्रेशन लिंक जो है ये आ जाएगा. उस पर क्लिक करते हुए सारी चीजें जो डिटेल्स आप एंटर कर रजिस्टर हो जाइए. और याद रखिए, रजिस्ट्रेशन डज नॉट कंफर्म अ रिकॉर्डिंग स्पॉट, क्योंकि सिर्फ 20 आर्टिस्ट जो है ये इनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी ऑन द डे, और इसके लिए आपको रजिस्टर करना जरूरी है. एंड द टीम विल गेट इन टच विद यू एंड लेट यू नो कि क्या आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं. 13th of September तक registrations बंद होंगे. Terms and conditions do apply. और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो KR लिखकर 5599% कर सकते हैं.
1: याद रहे 13th September को registrations close हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर जो required number of artists हैं
2: ये meet हो जाते हैं तो फिर हम वैसे भी बंद कर देंगे.
1: Yes, लेकिन
2: right.
1: आपको KR लिखना है. If you want the registration form, KR लिखें, अपना नाम लिखें और 5599 पर उसे हमारे पास भेज दें.
3: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: पेट्रोल।
1: ट्रेंड पेट्रोल का वक्त हो चुका है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा। बहुत सारी चीज़ें जो है ये ट्रेंड कर रही हैं राइट नाउ, और इसकी जानकारियां जो है ये हम पर आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। अभी न्यूजीलैंड में अगर देखें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं इज द पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स, जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स अलग अलग पार्टियों ने किया है उसको लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। मॉर्गेज एंड इंटरेस्ट रेट्स जो अलग अलग बैंक्स ने अनाउंस किया है, और हाई इंटरेस्ट अराउंड चीफ एग्जीक्यूटिव समंता बैरस उनके रेजिग्नेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा बातें जो हैं ये हो रही हैं। इंडिया में अगर देखें तो दिल्ली में जो बिल्डिंग गिरा है उसके बारे में लोग काफ़ी फिलहाल ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन जाकर, और साथ में मिर्ज़ापुर द मूवी इसके बारे में भी काफी रिसर्च किया जा रहा है।
2: इंटरेस्टिंग, अलग अलग चीजों के मामले में काफी चर्चा हो रही है और अलग अलग यू नो सेक्टर्स की चीजें जो है ये फिलहाल ट्रेंड कर रही हैं ऑनलाइन राइट नाउ। आपको याद दिला दें कि आज का मौसम जो है, जैसे कि हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है खराब मौसम का सामना करेगा, जो फोरकास्ट है इसमें बताया गया है कि एक वेदर सिस्टम जो है ये फिलहाल न्यूजीलैंड में एंटर कर रहा है, जिसके चलते लवा नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड के लिए काफ़ी बैड वेदर वार्निंग जो है ये लागू किया गया है। एंड ऑन द अदर हैंड आज तो मौसम ऐसा रहेगा, लेकिन अगर पूरा वीक भर का हम देखें तो वीकेंड के लिए भी काफ़ी ख़राब मौसम बताया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे बैड वेदर जो है ये रह सकता है। फ्राइडे एंड सैटरडे अब बिट ऑफ रिलीफ रहेगा, बट क्लाउडी पीरियड्स विद रेन पॉसिबल है। संडे को हैवी रेन विद क्लाउडी पीरियड्स जो है ये बताए जा रहे हैं। तो एक पूरे वीक के लिए ये जो देखा जाए काफ़ी बैड वेदर जो है ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, बट फ्रॉम टुडे You would experience something different as far as weather is concerned. तो तैयार रहेगा वेदर के अकॉर्डिंगली रेडी होना, चीज़ें तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना भी बहुत ज़रूरी होता है। That is why we try and keep you updated as far as the weather is concerned. ना?
1: And ये वो घंटा है जब हमारा हम बोर्डिंग कॉल ये भी प्ले होने वाला है। हमने कहा था कि 3,700 फ्राइडे को दिन में मैंने चेक किया था
2: जी।
1: And as of this morning, we've crossed 3,900 entries.
2: Wow, so, almost 4,000 होने वाले।
1: Yes, and this is the final week.
2: Okay, final week मतलब We will come to an end this week. अगर आपने पार्ट नहीं लिया है, you will miss out on it.
0: Ladies and gentlemen.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Some savey pack and save news coming in 3, 2, 1. It's 3, 2, 1 dollar week on now at Pack and Save. The end of the savey pack and save message coming in 3, 2, 1.
4: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 12 panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: And it's looking ugly out there on the roads with severe delays on all motorways into the city.
6: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
7: For 75 years, Fiji Airways has connected Fiji to the world and brought the world closer to home. So right now, they're celebrating with a special 75th anniversary sale. Fly to Fiji one way from $305. Samoa, Tonga and Vanuatu from $375. Honolulu from $475. And Hong Kong, Singapore or Japan one way from $675. Only for a limited time. Book now at fijiairways.com.
8: Alright, Pepper, now we're going to do a radio ad.
9: Can't you just use my line from the TV ad?
8: Well, let's just do it again, please, Pepper.
9: Phone dollars are for phones. Obviously.
8: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
9: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
8: QTs and Cs.
9: Eligibility and T's and C's apply. For more info, visit 1NZ/1Wallet.
8: Cool, and the end bit.
9: One New Zealand. Let's get connected.
10: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Harper Toy and Hamilton.
12: What's your take?
3: What's the take का वक्त हो चुका है और अभी एक social media post जो है ये मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने सोचा कि इसे आपके साथ शेयर करते हैं. यू नो, इस संबंध में हमने बातें पहले भी थोड़ी बहुत शायद की है कहीं ना कहीं
2: जी,
3: बट जब मैंने ये पोस्ट पढ़ा उसके बाद आई थॉट ओके
2: क्यों ना फिर बातें कर ले.
3: हाँ, लेट्स पुट इट अक्रॉस. तो सयंतन घोष
2: जी
3: नाम है इस पर्सन का जिन्होंने इंग्लिश में इसे सोशल मीडिया पर एक्स पर जाकर शेयर किया है और मैं वैसे डायरेक्टली ही आपको पढ़कर सुना रहा हूँ. लिसन टू इट वेरी केयरफुली और उसे सुनने के बाद जो आपके मन में आए, वी वॉन्ट टू नो व्हाट्स योर
2: टेक.
3: या
2: राइट.
3: तो इन्होंने लिखा, व्हेन रणवीर ब्रार कुक्स, व्हेन संजीव कपूर कुक्स, they become idols. They become chefs in our society. They are respected, admired and celebrated. And given who they are and the remarkable things they have done, there is no doubt they deserve it. But then come our households, the people around us. And here, as a married man and a family man, I have realized something that still feels deeply uncomfortable. In 2026, cooking for a man is still in many ways a taboo.
2: Oh, okay.
3: I cook because I love cooking. Cooking is my therapy. It is something through which I connect with myself, something that gives me comfort. But people do not always see it that way. Anindita, my wife, has repeatedly heard that perhaps there is something wrong with her because I cook at home. Maybe she is not a good wife. Maybe she is not a good mother. The judgment comes so easily. It is the same when she watches a movie alone, meets her friends without me and our daughter, or simply chooses to spend some time by herself. Somehow, these ordinary things become evidence against her, as if a married woman must be entirely about kitchens, the household, and the child. I do exactly the same things. I go out, meet friends, watch movies, spend time on my own, but for me, it is considered natural, because I am a man. When Anandita needs her space, my daughter and I spend time together in our own way. We watch movies, go out, party, make memories, and when I need my space, she does the same. There is no guilt attached to it. There should not be. Our household help has also told Anandita several times to be more proactive about kitchen work. Otherwise, it would be bad for the family. It is strange how deeply these ideas have entered our everyday lives. I grew up in a Bengali household where both my parents worked. My father was a college professor and had 2 days off a week, while my mother was a banker, had only Sunday as a holiday. I remember my father cooking and helping her with meals on Sundays. It was never seen as something unusual. It was never about whose duty it was. There were simply two people sharing a home. Perhaps that is what we are trying to teach our daughter to. We sometimes jokingly tell her, women don't cook. Of course, when she grows up, we will tell her that cooking is a life skill, not a woman's job. Because a woman can love cooking or hate it, a man can love cooking or hate it. Neither should require an explanation. She does not like to cook and cooks only if it's necessary or wants to make something. We talk so much about patriarchy as something big, visible and institutional, but I think its most enduring form is much smaller. It lives in our kitchen, in casual remarks, in expectations, in the judgment of a woman who wants a little time for herself, in the surprise when a man cooks. Perhaps patriarchy survives not because we always defend it, but because we have stopped noticing it. And perhaps changing it begins quietly inside our own homes.
2: Interesting, very very interesting. लेकिन ये चीजें अगर आपने सुनी हैं जो भी इन्होंने पढ़ी है पूरी की पूरी, इसे सुनने के बाद आपको समझ में आया हो अगर जो what the person has posted up, तो what's your take? क्या है आपका कहना इसके बारे में? As a man or as a woman, आप अपनी राय जो है ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. It's not that कि it's limited to one particular gender कि वो शेयर करे, और आप ज़रूर कॉल करके हमें बता सकते हैं. What do you have to say about this? क्या ये पोस्ट से आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं?
3: एंड लेट्स सी, उन्होंने तबू के बारे में बातें जो है ये की हैं. क्या इस पर बातें करना भी लोग चाहते हैं या नहीं, दैट्स अनदर थिंग. सी, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसके बारे में कभी कभी पीपल बिकम अनकंफर्टेबल.
2: या दे डोंट वांट टू एड्रेस इट, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं इज द ट्रूथ जो लोग फेस नहीं करना चाहते हैं ना. परविंदर, कैसी हो आप?
12: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे?
2: एकदम बढ़िया. स्कूल जा रही हैं?
12: हाँ, स्कूल जा रही हूँ. तो
2: बस फ्यू मोर डेज ना, स्कूल की छुट्टियाँ आ जाएंगी.
12: हाँ, वो बात तो सही है. मैंने ही बहुत बार सुनी है ये बातें.
3: अच्छा, आपने भी सुनी है?
12: क्योंकि मैं कभी कभी, जैसे मेरा भी बेटा है ना, तो मैं कभी कभी उसको हरजाम के पास छोड़ के जाती हूँ, आराम से उससे फिरती हूँ. तो फिर वैसे पूछते हैं कई लोग कि तेरा बेटा कौन संभाल रहा है. तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि वो अपने पापा के पास है. तो वैसे बोलते वो रह लेता है. क्या भाई, पापा है उसका, तो नहीं रहेगा. और काम के मामले में भी, पहले, अब तो जैसे मेरा सर्किल बहुत छोटा है, पर पहले थोड़ा बड़ा सर्कल था. अब क्योंकि पेरेंट्स हैं तो बहुत बिजी हो गए. तो मुझे जैसे मेडिकल कंडीशन है, तो उसकी वजह से मुझे अर्थराइटिस भी है.
2: जी.
12: तो जो रेपिटेटिव वर्क होते हैं ना, जैसे मतलब एग्जांपल आप ले लो, रोटी बेलने वाला काम एग्जांपल है ना, वो सेम एक्शन कर करके ना मेरे हाथ बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तो मैं रोटी पहले कम बनाती थी, पर मैं मतलब वर्कआउट थोड़ा बहुत फिर भी करती थी क्योंकि गुड फॉर बॉडी मूवमेंट
2: या बाउंस एंड मसल्स एंड ऑल या
12: पर कोई चीज रेपिटेटिव करना जिससे पेन हो सकता है और कोई चीज ऐसा हीलिंग करना, ये लोगों को डिफरेंस नहीं पता। तो मुझे लोग बोलते थे अच्छा ये एक्सरसाइज कर सकती है तो रोटी
2: क्यों नहीं बना सकती। ओके गेट इट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल परविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस और अपनी राय शेयर करने के लिए। हैव अ वंडरफुल डे, यू टू। सो 0800 हम 0800-048-666 पर आप कॉल कर सकते हैं। बातें कर रहे हैं आज हम कुकिंग के बारे में, अबाउट द फैक्ट कि जब कुकिंग एक आदमी करे तो वो एक शेफ बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है, अच्छा हस्बैंड बन जाता है, अच्छा फादर, अच्छा बेटा बन जाता है, बिकॉज दे टेक आउट टाइम एंड गेट दैट डन। और व्हेन इट कम्स टू द वुमेन इट्स ऑलवेज रिगार्डेड एज कि ये महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
3: थिंग इज ये कहते इनके इनको ये प्रॉब्लम थी कि अगर एक आदमी घर में खाना बनाता है तो बीवी को ताने सुनने को मिलते हैं।
2: हाँ, कि ये वाइफ का काम है वो क्यों कर रहा है, तुम्हें में तुम्हारे में कुछ गड़बड़ी है, तुमको कुकिंग नहीं आती होगी, कैसी बीवी हो या कैसी माँ हो या ये सारी चीजें।
3: यहाँ तक कि उनके उनके घर की जो हाउस हेल्प थी
2: वो भी इनको,
3: उन्होंने भी अपनी मालकिन को बताया कि यू नीड टू बी प्रोएक्टिव अबाउट योर किचन क्योंकि ये जो आप कर रही हो आपकी फैमिली के लिए
2: असर पड़ेगा।
3: हाँ
2: राइट, तो ये एक पोस्ट जो है एक शख्स ने किया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, उन्होंने बताया कि वो कुकिंग करते हैं लेकिन उसके रिपरकशंस कहीं ना कहीं उनकी बीवी को फेस करने पड़े, और कुकिंग वो अपनी मर्जी से करते क्योंकि वो उनको थेरेप्यूटिक लगता है, उनको अच्छा लगता है, ही एंजॉयज इट, लेकिन जब वो कुकिंग करते हैं तो उनकी बीवी को ताने सुनने पड़ते हैं और शक लोग उनकी बीवी पर करते हैं कि शी इज़ नॉट अ गुड वाइफ, दैट्स व्हाई द हस्बैंड इज़ गेटिंग थिंग्स डन एट होम एज़ फार एज़ कुकिंग इज़ कंसर्न्ड।
3: यहाँ तक कि बीवी अकेले घूमने जाती है या फिर कहीं बाहर जाती है, अपने फ्रेंड से मिलती है तो भी उनको जज किया जाता है।
2: राइट, बट व्हेन द सेम थिंग इज डन बाय द हस्बैंड तो वो एक नॉर्मल चीज की तरह देखी जाती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी द पीपल द मेन नीड इट, ना वो चीज हो जाती है। तो आज बहुत ही जरूरी टॉपिक है आई वुड से जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ यू माइट नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट ऑन एयर अगर कोई रीजंस है आपके। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस,
3: माय थिंग इज क्यों,
2: बट सी सर्टन चीज़ों के बारे में हम ओपनली बातें कर सकते हैं बट नॉट एवरी वन इज़ कम्फर्टेबल अबाउट इट, एंड सर्टन चीज़ों के बारे में शायद अगर आप यू नो लाइव होने आकर नहीं कॉल कर बताना चाहते आप टेक्स्ट कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट रिवील योर आइडेंटिटी यू कैन डू दैट, यू कैन जस्ट सेंड अस योर मैसेज, यू डोंट हैव टू राइट आपका नाम इन ऑल। और हो सकता है कि अभी कुछ लोग जो है ट्रेवल कर रहे हो, कॉल नहीं कर पा रहे हो, यू नो सिचुएशंस अलग अलग होते हैं ना लोगों के, बट व्हाटएवर द रीज़न इज। एक और एक कॉल आ रहा है, गुड मॉर्निंग।
13: गुड मॉर्निंग पूजा जी, विजय जी कैसे हो, विशाल बात कर रहा हूँ।
3: गुड मॉर्निंग विशाल,
2: कैसे हो विशाल।
13: जो टॉपिक है वो अच्छा है आपका, उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे में कोई मैटर करता नहीं है, ये तो सब सोसाइटी की चक्कर में सब बोलते रहते हैं, वो होता रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे जो लाइफ चल रही है उसमें सोसाइटी का सोचना ही नहीं है और हस्बैंड वाइफ को मिलजुल के काम करना होता है।
3: ओके थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच आपके भी कॉल के लिए एंड शेयरिंग विद व्हाट यू फील। जो आज हमारा व्हाट्स योर टेक है, अब आप चाहें तो 5599 पर हमें टेक्स्ट ज़रूर कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम हम दे नहीं सकते एंड शायद आप अभी भी हिचकिचा रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर आपके पास है जहां आप अपना मैसेज भेज सकते हैं।
10: Bollywood's most wanted.
14: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ।
10: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
3: एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्स्ट आया है 5356. इन्होंने कहा है, If all men could start thinking like him, then what a great place the world will be to live in.
2: Yeah, that is amazing, isn't it?
3: So that I mean, this sentence itself raises
2: questions.
3: मेरे दिमाग में तो सेंटेंस पढ़ने के इमीडिएटली बाद क्वेश्चन आया.
2: क्या?
3: वो बाद में देखेंगे.
2: Okay.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
2: Accurate traffic.
3: Rewards rush only at BP.
4: A high of 18, got showers on and off today into the city. Southern Motorway, 45 minutes, Manukau to town. Heavy Papakura to Manurewa, clear toward Tahu, but then heavy there to Green Lane. Northwestern, half an hour, Massey to the city. Slow from Partiki, heavy point shift to Western Springs, then clearing. Northern 32 in from Constellation Drive. Heavy at Silverdale and all the way from Constellation. The southwestern, heavy northbound through Whitty.
3: Scan everyday rewards for double points on fuel and shop. T's and C's apply.
5: The all-new Mazda CX-5 is big on the road ahead. With 5 years of Mazda care included, it's big on servicing, big on warranty, big on roadside assistance, and big on peace of mind. Mazda.
6: Zoom, zoom.
7: At Bunnings, lowest prices are just the beginning. And you can also earn Bunnings rewards in every aisle, whether you're just popping in or stocking up for a project. A trip to Bunnings can make you feel more rewarded. Simply download the Bunnings app and join Bunnings Rewards today. T's and C's and exclusions apply.
8: Reliance Ventilation System.
9: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
8: Moisture और ventilation का problem लगता है.
9: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
8: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
10: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
11: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह. कभी धूप, कभी बादल. अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए. रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग. रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए. सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज. कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800 862 342. That's 0800 862 342 for free and confidential mental health support.
12: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
14: 22 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में. वैसे 9 बजने में ठीक 9 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है आपके लिए हम लेकर आएंगे. आज का वन से टेक टॉपिक, वेल इस पर तो अभी देखा जाए, और किसी ने भी कुछ नहीं कहा है.
15: या लेट्स मूव ऑन. इतना आपको बता दें, हम बोर्डिंग कॉल प्ले हो चुका है. वी आर इन टू द फाइनल वीक. क्या आपने जाकर बोर्ड नाउ टाइप किया है रोवर पर? अगर नहीं तो बी सी लिखकर 5599 पर भेजें.
14: वेल, अगर आपको ये पता भी नहीं है अभी तक इतने दिनों से आपके लिए हम बोर्डिंग कोल लेकर आ रहे हैं, फाइनल वीक में पहुंच चुके हैं, यू हैव नो आइडिया कि हम बोर्डिंग कोल जो है ये क्या है या कैसे आप इसमें पार्ट ले सकते हैं, तो अभी इस गाने के बाद हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे. वी वॉन्ट यू टू बी रेडी टू लिसन आउट टू इट और अच्छे से आप समझ जाओ, इसीलिए हम आपको टाइम दे रहे टू गेट प्रिपेयर्ड. और इस गाने के बाद फुल डिटेल्स आपको हम बताएंगे कि कैसे आप हम बोर्डिंग कोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Accurate traffic.
2: Kitchen Mania at the Auckland Home Show.
3: A high of 18, got showers on and off today. Coming into the city, Southern Motorway 40 minutes, Manukau to town. Slow patches south of Manukau, and then slow from Otahuhu, heavy Mount Wellington to Green Lane. Southwestern, quite heavy northbound through Whitty. Northwestern, 26 minutes in from Massey, fine to Pātiki, heavy patches there to Grey Lynn. Northern, 28 in from Constellation, heavy patches there to the bridge and slow at Silverdale.
2: Visit the Kitchen Mania displays at the Auckland Home Show this weekend.
4: Kya baat hai us khane mein jo pure घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
5: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
6: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा
7: NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
11: 13 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और आज का जो व्हाट्स योर टेक था उसके बारे में आपको बता दें किसी ने मैसेज किया है कोई समस्या नहीं है अगर आदमी घर में खाना बनाए बात यह है कि देखना चाहिए कौन बाहर जाकर बेहतर तरीके से कमा सकता है और कौन घर बेहतर संभाल सकता है अक्सर महिलाओं में बच्चों और घर के काम के लिए ज़्यादा धैर्य होता है वहीं पुरुष कई बार बाहर काम करने और कमाने की जिम्मेदारी में ज़्यादा धैर्यवान होते हैं थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए जो आपने हमारे पास भेजा है बहरहाल जो आज का आपका पहला टाइम है ये खत्म होने वाला है हम बोर्डिंग कोड के लिए
12: Absolutely. और जैसे जैसे एक एक शो के साथ साथ एक एक दिन हम बिताते जाएंगे वैसे वैसे आपके हम बोर्डिंग कॉल में पार्ट लेने के चांसेस कम होते जाएंगे बिकॉज दिस इज द फाइनल वीक हम बोर्डिंग कॉल जो है आपके लिए भी ओपन तो है पर याद रहे अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हमने कहा था ना समझाएंगे बेसिकली ये हमारा एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें आप पार्ट लेकर जीत सकते हैं टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुवातु विद सोलमन एयरलाइंस और साथ में $1,000 spending money. आपको एंटर कैसे करना है जहां पर आप जब प्रोग्राम सुनते हो द ब्रेकफास्ट शो माई टाइम और लंच बॉक्स एंड ड्राइव शो तो इन चारों प्रोग्राम्स के एक एक घंटे के बीच कहीं ना कहीं पर प्ले होता है Q2 बोर्ड एक स्पेसिफिक ऑडियो है जो आपके लिए हम बजाते हैं इनफैक्ट अगर मैं मेंशन कर ही रही हूँ इसके बारे में तो मैं आपको सिर्फ सुना रही हूँ ये Q2 बोर्ड आपका प्ले नहीं हुआ है आपकी एंट्री जो है रजिस्टर करने के लिए दिस इज व्हाट यू हैव टू लिसन आउट फॉर
13: Gentlemen, got airplane tickets with your name on them. This is the
4: the boarding call for Solomon Airlines flight number Hum 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Please proceed to Rover and enter board now.
10: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
12: तो जैसे ही ये क्यू टू बोर्ड आपको सुनाई दे, मतलब इशारा है आपके लिए कि आप जाए और विजिट करें हमारा रोवर ऐप. रोवर ऐप पर आपके लिए कंपटीशन पेज जो है वहां पर है, जहां लिखा होगा एंटर कोड नाउ.
11: और जहां पर ये लिखा होगा, आपको वहीं पर बोर्ड नाउ टाइप करके सबमिट पर क्लिक करना होगा. इट्स दैट सिंपल. जैसे ही आप ये कर देते हैं, यू बिकम पार्ट ऑफ द ड्रॉ. और अभी तक ओवर 4000 एंट्रीज ऑलरेडी आ चुकी हैं. तो आपने अगर एंटर नहीं किया है, और अगर आपके पास लिंक भी नहीं है, आपको नहीं मालूम कि कहाँ जाकर आपको एंटर करना है, तो सिंपल सी चीज़ आप करें, BC लिखें और उसे अभी हमारे पास 5599 पर भेज दें. क्योंकि आज का जो पहला चांस है वो ख़त्म होने में बहुत टाइम बाकी नहीं रह गया है. इसीलिए जल्दी से बी और सी के बीच में कोई स्पेस ना दें. BC लिखें, 5599 पर भेजें. लिंक आपके पास एक आएगा ऑटो रिप्लाई में. उस लिंक को आप ओपन करें, एक जगह पर आपको दिखेगा एंटर कोड नाउ. बस वहीं पर आप टाइप कर दें बोर्ड नाउ और हिट सबमिट एंड यू बिकम पार्ट ऑफ द रो. इट्स दैट सिंपल. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. सो इसका अभी आप ख्याल रखें. मेक श्योर यू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड थ्रू विद द सोलोमन एयरलाइंस यू विल बी फ्लाइंग टू वनुआतु, जो हफ्ते में चार बार ऑकलैंड से वनुआतु फ्लाई करते हैं. flysolomons.com आप विजिट कर सकते हैं एंड डिटेल्स हासिल कर सकते हैं.

0: एक रिकॉर्ड जो है ये कायम किया गया है बाय रिचर्ड स्कॉट. ही इज अ डैड ऑफ थ्री. यूके के रहने वाले है ये. और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया आफ्टर ही स्पेंट 36 hours and 32 minutes by going back and forth on a swing set.
1: 36 hours?
0: Yes. 36 hours and 32 minutes. Even though उनको ये मज़ा तो आया क्योंकि you know बचपन में जब हम झूले पे जाते हैं तो
1: उसके बाद सब कुछ हिल रहा होगा ना.
0: Obviously, but झूले से उतरने का मन नहीं करता ना जब हम बचपन में झूले में बैठते हैं तो. And he informed कि it wasn't easy. और of course ये पूरा का पूरा concept अगर आप सोचो it doesn't seem right at all. लेकिन उन्होंने कहा कि he did have a happy ending though, as he not only earned the title जहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा लंबा समय झूले पर spend किया, but he also met someone really special जब ये record कायम करने की कोशिश ये कर रहे थे.
1: Who?
0: उनकी लाइफ पार्टनर के साथ उनकी मुलाकात हुई.
1: ओह अच्छा अच्छा.
0: He was a single dad and then he moved on to meet someone जो इनके इस रिकॉर्ड के दौरान उनसे मिले और फिर उनके लाइफ पार्टनर जो है ये बन गए. But the interesting thing is the passion he had. क्योंकि of course toilet breaks वगैरह जो है इसमें included थे. ऐसा नहीं कि he had to sit on the swing for continuously 36 hours. Toilet breaks उन्होंने लिए थे बीच में. But all the other necessary things जो है उसे उन्होंने कम से कम रखने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि वाटर इनटेक तो था उनका लेकिन खाने के मामले में थोड़े रिस्ट्रिक्टेड थे क्योंकि उल्टियाँ आने की संभावना थी ना. But interesting, I think if you ask me, the max I can go on a swing would be for around like 2 minutes.
1: That's a very long time.
0: Yeah, 2 minutes is all I can do. उससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा क्योंकि मुझे झूला पसंद नहीं है. ज़रा भी नहीं. मेरे चक्कर आने लगते हैं मुझे. But I don't know. क्या आपको अगर कभी ऐसा मौका मिला? It's not necessary या ज़रूरत नहीं कि आप एक छोटे बच्चे हो. अगर आप बुजुर्ग भी हैं और अगर आप कोशिश करना चाहें, would you try your luck with it? Would you give it a shot?
1: Nah.
0: To break Richard's रिकॉर्ड?
1: अरे भाई नहीं नहीं नहीं नहीं.
0: पहले ही ना बोल दिया आपने.
1: मुझसे तो ना होगा.
0: मंडे 7th of September है आज और आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा 104.2 FM या ओवर ऐप पर. फिलहाल अगर आप हमें सुन रहे हैं थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए. रिमेम्बर दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन. यहाँ पर थोड़ी देर बाद हम आपके साथ बातें करेंगे अबाउट सम ऑफ द थिंग्स जो हमारे आसपास हो रही हैं. इनफैक्ट इस पूरे वीक आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आएंगे जो ऑकलैंड में या फिर अगर आपके शहर में हो रही है जिसका हिस्सा बन सकते हैं. बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑकलैंड में हो रही है चाहे कहीं अक्रॉस ओवर द वीकेंड जिसका हिस्सा बन सकते हैं. विल शेयर अबाउट दैट. और हाँ हमारा डेली राउंड अप ये भी रहेगा.
1: हाँ और वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग सेंटर्स इन द कंट्री वन ऑफ द बिगेस्ट
0: कब खुलने जा रहा है?
1: Is up for sale.
0: Up for sale?
1: हाँ.
0: अच्छा, okay.
1: Shopping center में चीजें बिकती थी, यहाँ shopping center ही बिक रहा है.
0: Interesting. तो चलिए बहुत सी अपडेट्स हैं आपके लिए जो हम लेकर आएंगे. By the way, before we move on, पिछले घंटे का वर्ल्ड से टेक टॉपिक पर एक मैसेज है. उन्होंने कहा वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई थिंक इट्स जस्ट अ टिपिकल इंडियन थिंकिंग दैट कुकिंग इज ओनली लेडीज ड्यूटी. आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम बट फॉर द सोसाइटी इट्स अ प्रॉब्लम नो मैटर व्हाट यू डू. सोसाइटी विल ऑलवेज टॉक. सो डोंट केयर अबाउट सोसाइटीज ओपिनियंस. डू व्हाट मेक्स यू happy.
1: Thank you so much. कई लोगों ने BC लिखकर भेजा था और 1270 आपने busy लिखकर भेज दिया.
0: Two
1: alphabets, yeah. B और C. These are the two alphabets आपको text करना होता है.
0: Right.
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो. जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल. लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: तो मैंने कहा था कि आपको बताएंगे अबाउट सम ऑफ द थिंग्स जो सुपर सिटी ऑकलैंड में हो रहे हैं और इनका हिस्सा आप बन सकते हैं. दे बेसिकली फ्री टू अटेंड. इसमें आपको कुछ पैसे वगैरह जो है खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. बट ऑन द अदर हैंड सर्टेन थिंग्स जो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करोगे वो शायद आपको पे करना पड़े. आपने नाइट मार्केट के बारे में बहुत सुना होगा और ऑकलैंड में तो काफ़ी पॉपुलर है. एम नॉट रियली श्योर कि क्या अलग अलग सिटीज़ में भी नाइट मार्केट जो है ये होते हैं या नहीं, लेकिन क्वाइट पॉपुलर नाइट मार्केट्स जो है यहाँ पर है ऑकलैंड में. और इफ़ यू हैव नॉट हर्ड अबाउट एनी अदर टाइप ऑफ मार्केट, स्पेशली डे मार्केट जो है इसके बारे में आपको नहीं पता, तो आज हम आपको बताना चाहते हैं. हॉब्सनविल में होता है कैटलिना बे फार्मर्स मार्केट और ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है. Okay. क्योंकि ये डे टाइम मार्केट है हॉब्सनविल में. इट्स एट द कैटलिना बे फार्मर्स मार्केट जो लोकेटेड है वाटर फ्रंट में एट हॉब्सनविल पॉइंट. सो इमेजिन वाटर फ्रंट में टक्ड अवे मार्केट का एक्सपीरियंस कितना खूबसूरत होगा. एंड ये सैटरडेज एंड संडेज को ओपन रहता है 8:30 AM से 2 PM तक. तो यहाँ पर आप जा सकते हैं. एक तो कैटलिना बे का जो वाटर फ्रंट है इसका व्यू एंजॉय कर सकते हैं. इट्स नियर हडसन बे रोड एंड लॉन्च रोड जो है यहाँ पर इसके पास है ये. और इस मार्केट में आपको मिलेगा फ्रेश लोकल फार्म प्रोड्यूस वेजीज वगैरह अगर आप तलाश कर रहे हैं ये आपको मिल जाते हैं. बेक्ड गुड्स यहाँ पर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड एंड क्रोसॉन्स एंड पेस्ट्रीज ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी. और टाइप्स ऑफ चीज़ जो आप यहाँ पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं. फ्रेश फ्लावर्स अगर आपको चाहिए अपने घर के लिए तो यहाँ पर वेराइटी उसकी वो भी आपको मिलेगी. एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड भी यहाँ पर मिलता है विद कॉफ़ी एंड ऑफ कोर्स वाटर एंड स्टफ. तो ये भी आप इंजॉय कर सकते हैं. नाउ कम टू थिंक अबाउट इट, इट्स अ संडे मॉर्निंग एंड आप सोच रहे हैं कि क्या करें विद योर फैमिली, विद यू हैव गॉट लाइक यंग किड्स इन इन योर फैमिली, या फिर आपकी फैमिली में बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर आप एक कपल है बेसिकली एंड यू प्लानिंग की लाइक व्हाट शुड वी डू, या फिर यू जस्ट ऑल बाय योरसेल्फ एंड कोई दोस्त है जिनके साथ आपको मीटअप करना है एंड यू लुकिंग फॉर एन ऑप्शन कि क्या करना है, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू. एक अच्छा नाइस ड्राइव आप इंजॉय कर सकते हैं ऑल द वे टू हॉब्सनविल पॉइंट कैटलिना बे फार्मर्स मार्केट के पास. यहाँ पर जब आप जाओगे बच्चे हैं अगर उनको ना तो यहाँ पर आप एक जो मनी मैनेजमेंट का जो लेसन होता है ये भी आप करा सकते हैं. गिव देम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड और उनको आप उनके साथ रह सकते हैं व्हेन दे आर एक्सप्लोरिंग एंड चूजिंग व्हाट दे वांट टू बाय ऑन देयर ओन, लेट देम परचेस ऑन देयर ओन ना. तो ये भी आप उनको सिखा सकते हैं. और जो अडल्ट है उनको भी एक ब्रेक मिल जाता है जाकर इंजॉय करने का, व्यू टू सिट डाउन, जस्ट टू वाइंड डाउन, जस्ट टू रिलैक्स. फ्रेश खाने का जो भी यहाँ पर आपको रेडी टू ईट मिल जाएगा दैट यू कैन गो एंड एंजॉय. फ्रूट्स एंड वेजीज है ये. आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस बट द एल्डर्स इन आवर फैमिली ना, हमारे इंडियन फैमिलीज में पर्टिकुलरली उनको ऐसे सब्जी भाजी वगैरह जो है देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं वो जब फ्रेश उनको देखने को मिलता है. और एक्साइटेड इन अ वे दे लव टू शॉप फॉर ऑल दोस थिंग्स.
3: एग्जैक्टली या, वी ऑल लव शॉपिंग.
2: या आई एम सेइंग एवरीवन डज इट बट वो डेफिनेटली वो चीज़ उनको बहुत पसंद होती है. तो ये भी आप जरूर एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, फैमिली एक्सपीरियंस होता है, फ्रेंड्स के साथ मिलने का. अगर आपको कुछ नहीं कर रहा है, सोच नहीं रहा कि क्या करें, सो भी एक रीजन है ना. सो ये एक मार्केट है दैट आई वुड सजेस्ट यू गो एंड चेक आउट. अनदर वन इज़ द माटाकाना डे मार्केट या फार्मर्स मार्केट जो है माटाकाना में लगता है. ये एवरी सैटरडेज को ओपन रहता है 8 AM टू 1 PM और ये भी आउट ऑफ ऑकलैंड ही है. अबाउट एन आवर्स ड्राइव है ये, एक घंटे का ड्राइव है. बट बहुत खूबसूरत मार्केट है. और कभी कभी यहाँ पर जो विलेज मार्केट लगता है संडेज को, तो यहाँ पर स्पेशल इवेंट्स भी होते हैं स्पेशली फॉर किड्स. सो यू नीड टू बी अपडेटेड. जैसे पोनी राइड्स वगैरह वो करते हैं, पूरा एक मेला जैसा माहौल होता है जहाँ पर बच्चे भी जाकर फेस पेंटिंग वगैरह जो ये इंजॉय कर सकते हैं. तो दे कीप ऑन डूइंग इट ऑन डिफरेंट टाइम्स और वो अपडेट करते रहते हैं अपने वेबसाइट पर. सो आप अपडेट्स जो ये ले सकते हैं ताकि आपको भी पता रहे कि कौन कौन सी चीज़ें जिनका हिस्सा आप बन सकते हैं.
3: तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डे मार्केट्स, नाइट मार्केट्स, फार्मर्स मार्केट. और अभी तो स्कूली छुट्टियां आने वाली हैं, आने वाले दिनों में और भी हम आपको डिटेल्स देंगे कहां कहां पर क्या कुछ होने को है जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं. एंड हाउ मेनी क्या बोलते हैं फार्मर्स मार्केट हैव यू बीन टू?
2: आई हैव बीन टू एवनडेल वन, आई हैव बीन टू द वन इन मेंगरी और I've been to one more place but मेरे को याद नहीं आ रहा. डे मार्केट गई थी मैं, मतलब लोकेशन नाम क्या था उसका वो याद नहीं क्योंकि बहुत पहले गई थी मैं, पर मुझे वो वाला अच्छा लगा था. एंड नाइट मार्केट में हैंडरसन में जो होता है केमार्ट के कापाक के नीचे और देर इज पापा टोयटो वाला आई हैव बीन एंड वो क्या है उधर फ्लैटबुश साइड में भी लगता है नहीं ओमनिस्टन
3: में कहीं कहीं लगता है
2: वहां पे भी गई हूं आई थिंक
3: ओके
2: मेरे को जगह नहीं याद रहता ना नाम नहीं याद रहता दैट्स अ प्रॉब्लम
3: तो आप अगर आपके ख्याल से जिस भी शहर में आप रहते हैं वहां पर द बेस्ट फार्मर्स मार्केट नाइट मार्केट नहीं
2: फार्मर्स मार्केट हां
3: जहाँ पर आप सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं अभी ऑकलैंड में आप देख लो मोनरेवा है मैंगरी है एवनडेल है
2: माउंट रोस्किल में भी लगता है एक फार्मर्स मार्केट बट वीकडे में होता है आई थिंक
3: पता नहीं मुझे नहीं पता
2: मुझे ऐसा लगता है
3: ओके तो आपके ख्याल से विच इज द बेस्ट फार्मर्स मार्केट टू गो टू 5599 पर हमें आप टेक्स्ट करके जरूर बताएं
2: राइट और अपने रेकमेंडेशंस के साथ साथ रीजंस भी आप भेज सकते हैं व्हाई यू थिंक दैट्स द बेस्ट वन या फिर सिर्फ रेकमेंडेशंस जो है ये आप सेंड कर सकते हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ए देखो
4: आ गए हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स
5: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
6: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check, or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
7: Freedom's flash sale is on now. Save at least 30% off store-wide. Shop sofas, furniture, outdoor mattresses and homewares and get at least 30% off store-wide. Hurry, sale ends today, only at Freedom.
8: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली
9: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी अली फजल दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार
10: हमें एम्पायर चलाना नहीं गुड्डू भैया बनाना है
9: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज
11: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते
9: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC
12: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
13: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
2: आज आपके लिए एक जानकारी या फिर यू कहे कि खबर लेकर आए हैं. नॉर्मली ऐसी स्टोरीज जो है ये हम शेयर करते हैं हमारे सनी साइड अप स्टोरीज में, पर दिस पर्टिकुलर गाय अभी इनके बारे में ना बहुत सी खबरें जो है मेरे फीड पर आती है व्हेन आई एम ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. तो मैंने इनको देखा हुआ है जहाँ पर इनकी स्टोरी जो है ये बहुत बार लोगों ने शेयर की है. इन्होंने खुद अपने वीडियोज जो डाले, आई कम अक्रॉस दैट एज वेल. तो इनका नाम है सुरेंद्र सिंह चौधरी. ये 20 साल के हैं और ये एक एनवायरमेंटल एंथुजियास्ट है जो इंडिया में रहते हैं. और इन्होंने कई महीने लगा दिए ऑल बाय हिमसेल्फ, इकलौते शख्स जिन्होंने अकेले एक पोल्यूटेड अंजार नदी जो है ये साफ किया.
3: अकेले पूरी नदी साफ कर दी?
2: या अकेले इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट निकाला और भी सारे जो बाकी का कचरा जो नदी में लोगों ने फेंका हुआ था वो इन्होंने निकाला ऑन हिज ओन मोस्टली. और उसके बाद चलकर इन्हें ऑनलाइन बिट्टू तबाही के नाम से भी जाना जाता है. इनका एक अनयूजुअल मिशन है विच बिगेन अट्रैक्टिंग अटेंशन आफ्टर वीडियोज एंड पिक्चर्स इनके क्लीन अप कैंपेन के ये वायरल हो रहे थे ऑफ हिज एफर्ट्स दैट स्टार्टेड सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो एक पर्सनल एफर्ट की तरह शुरू हुआ था और इन्होंने एक लोकल रिवर जिसके बारे में हमने बताया वहाँ पर साफ सफाई करते हुए इसे रिस्टोर किया, तो सून इनका ये एफर्ट जो है इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुँचा. एंड अमंग दोज इनको नोटिस किया गया बाय समवन नेम्ड बोयन स्लेट. बोयन जो है ही इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द ओशन क्लीन अप, जो कि बिट्टू तबाही के इस डिटर्मिनेशन से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने इनको ऑफर किया एक जॉब अपॉर्चुनिटी टू जॉइन हीज ऑर्गेनाइजेशन. और दिस इज बेसिकली द जर्नी दैट बिगेन विद यू नो रबिश साफ करना पोल्यूटेड नदियों से. एंड ही इज नाउ बेसिकली इट हैज़ ओपन्ड हिम एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पर इनको एनवायरमेंटल क्लीनअप ग्लोबल लेवल में कह सकते हैं इसका हिस्सा बनने का मौका जो है ये मिलेगा. द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि जिस शख्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं बोयन के बारे में, बोयन स्लेट के बारे में, इनके बारे में आपको बता दें कि ये एक डच इन्वेंटर एंड एंटरप्रेन्योर है.
3: ओके.
2: डेनमार्क में रहते हैं ये. और इन्होंने ओशन क्लीनअप इसको शुरू किया है टू गेट रिड ऑफ वर्ल्ड्स ओशंस एंड रिवर्स ऑफ प्लास्टिक. ये इनका मोटिव है. तो इमेजिन इन्होंने अपने बिट्टू तबाही जिनके बारे में मैं आपको बता रहे थे जिनका असल नाम जो है ये है सुरेंद्र सिंह चौधरी. इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया अपने लोकल नदी को साफ करने के लिए और इनको इंटरनेशनल मौका मिला है जाकर यू नो किसी और कंट्री के इतने बड़े से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर ग्लोबली इस चीज़ का हिस्सा बनने का. इट्स नॉट दैट कि ही इज गोइंग टू डू थिंग्स फॉर डेनमार्क ओनली बट ग्लोबली. बट आई डोंट हैव एनी डिटेल्स एज येट कि क्या इन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया या नहीं, पर एक डिटेल मेरे पास ज़रूर है which raised a lot of questions. अगर आप इनको ऑनलाइन जाकर सर्च भी करोगे इनकी कहानी आपको मिलेगी. इतने महीने इन्होंने लगा दिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ रबिश जो है क्लियर करने में इस नदी से, और खुद साफ सफाई करने के बाद वहाँ पर इन्होंने एक डस्टबिन जो है ये भी लगाया था ताकि लोग जो है ये डस्टबिन का इस्तेमाल करें और नदी का इस्तेमाल ना करें इसमें मैल वगैरह जो फेंकने के लिए. पर आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ हिम गेटिंग दिस रिवर क्लीनड अप एंटायरली कुछ वीडियो सामने आए जहाँ पर लोगों ने वापस से इस नदी में जो कचरा है ये फेंकना शुरू कर दिया. इनफैक्ट एक और एक वीडियो भी सामने आया जो उन्होंने खुद बनाया जहाँ पर व्हेन ही वेंट टू दैट रिवर अगेन टू चेक, इनको वहाँ पर जो डस्टबिन उन्होंने लगाया था वो टूटा हुआ मिला और वो पड़ा हुआ मिला और नदी में वापस से अ लिटिल बिट ऑफ कचरा जो है ये इनको मिला. सो ही वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड एंड ही सेड कि ऐसा नहीं कि वो ये करना बंद कर देंगे, ही विल कीप ऑन डूइंग इट. बट आपको एक एनवायरमेंट जो है साफ सुथरे तरीके से मिली है उसको बस मेंटेन करना है और आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, वो सवाल इन्होंने उठाया.
3: वेल दैट्स द केस ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ पर पोल्यूशन की इस तरह की प्रॉब्लम है. इट्स जस्ट दैट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी के कारण प्रॉब्लम और गंभीर हो जाती है.
2: एब्सोल्युटली. एनीवेज चलिए द ब्रेकफास्ट शो विद विजन पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे हमारे पॉडकास्ट के बारे में जो अवेलेबल है आपके लिए ऑन स्पॉटिफाई एंड रोवा और कैसे आप इन्हें सुन सकते हैं. डिटेल्स हमारे साथ जानने के लिए जरूर आप बने रहिएगा.
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
4: ज्यादा अंदर आऊं
1: मैं लाऊं अपना ए गेम
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: बहुत ही खूबसूरत ये चार्टबस्टर आपके लिए हम पेश कर रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज़ में. और रेड ये फिल्म आई थी 2018 में, उसी फिल्म का ये ट्रैक आपके लिए आज हमने चार्टबस्टर में शामिल किया. 25 मिनट्स अवे फ्रॉम 10 फॉर नाउ. हमने कहा था आपको हमारे पॉडकास्ट के बारे में भी हम बताएंगे जो आप चेकआउट कर सकते हैं ऑन रोवा एंड साथ में स्पॉटिफाई एज वेल. तो ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट जो है इसका जो लिंक अगर आपको चाहिए आप BF लिखकर अगर 5599 पर भेजेंगे तो आपको पूरा का पूरा ऑडियो मिल जाएगा. एंड जो रिसेंट कैचअप पॉडकास्ट है इसमें डॉक्टर परमजीत परमार इमिग्रेशन स्पोक्स पर्सन फॉर द एक्ट पार्टी इनसे बात हुई थी ऑन द ब्रेकफास्ट शो जहां पर शी बेसिकली ब्रोक डाउन द पार्टीज न्यूली प्रपोज्ड इमिग्रेशन पॉलिसी. इन्होंने डिस्कस किया द प्लान जहां पर ये इंट्रोड्यूस करेंगे अ फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायरमेंट परमानेंट रेसिडेंस के लिए रिक्वायरिंग 2 years ऑफ रेसिडेंस विद इन एवरी रोलिंग 5 year पीरियड. और कुछ की क्वेश्चंस जो है ये भी इन्होंने एड्रेस किए अराउंड करंट PR होल्डर्स और एक्सेप्शंस और न्यूजीलैंड में जो माय इमिग्रेशन सिस्टम है इसको कैसे फेयर एंड बैलेंस रखना है इसके बारे में. एंड ऑन द अदर हैंड ये आप जरूर जाकर जबकि सुन सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द होल पॉलिसी. ऐसा नहीं कि ये पास हो चुका है, इट्स बेसिकली दे आर प्रपोजिंग इट वंस
1: इट कम्स इनटू एक्शन. जीतते हैं वापस आते हैं
0: जी देन वो प्रपोज करेंगे ये. बट राइट नाउ एक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अवार्ड विनिंग पॉडकास्ट है जो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रोज़बे जहां पर इस रिसेंट एपिसोड में इन्होंने बातें की हैं विद कंटेंट क्रिएटर अभी. इनको शायद आप भी फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करती हूँ. बड़े बड़े अच्छे लगते हैं मुझे.
1: I've seen his videos, but I...
0: You don't follow?
1: No.
0: Okay, but you have followed his content and you know कि ये कौन है. राइट तो ये बड़ी मुझे बहुत पसंद है द वे ही यू नो
1: front and वो ऐसी बातें भी बोलते हैं
0: कड़वा सच जिसे बोलते हैं.
1: जो आप शायद आपको
0: वो खुलकर इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो यस, सो ही वाज द गेस्ट ऑन अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रोज़बे जहां पर उन्होंने अपने पाथ के बारे में बातें की ऑफ बिकमिंग वन ऑफ न्यूजीलैंड्स रिकॉग्नाइजेबल वॉइसेस एंड फेसेस साउथ इंडियन या साउथ एशियन कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए और इनका खास कनेक्शन विद द फिजी इंडियन कम्युनिटी इसके बारे में भी इन्होंने कुछ डिस्क्लोजर्स किए हैं, बातें की है और डिस्कस किए हैं द रियलिटीज ऑफ मूविंग टू अ न्यू कंट्री. कैसे उन्होंने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकल टिप्स का गाइड ये इस्तेमाल करते हुए लोगों को गाइड किया है यहाँ न्यूजीलैंड में अपनी लाइफ जो है आगे तय करने के लिए. बट द इंटरेस्टिंग थिंग ही स्पोकन अबाउट कि क्यों कंटेंट क्रिएशन इवॉल्व हो रहा है और एक पावरफुल बिजनेस बन सकता है फॉर द फ्यूचर. तो ये पूरा का पूरा कन्वर्सेशन आप अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रोज़बे में सुन सकते हैं जो रोवा एंड स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है. और लिंक के लिए आप ड्राइव लिखकर DRIVE लिखकर 5599 सेंड करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा.
1: मैंने कहा था कि आपको फिल्म मिर्जापुर के बारे में बताएंगे
0: जी.
1: दो तीन दिन हुए हैं इस फिल्म को रिलीज हुए एंड इट हैज रन इनटू कंट्रोवर्सी.
0: ओह ऐसा क्या हो गया?
1: कंट्रोवर्सी एक राजस्थानी आर्टिस्ट हैं और रैपर हैं रपेरिया बालम.
0: ओके.
1: इन्होंने आरोप लगाया है कि उनका ट्रैक शूरवीर जो है इसका इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म में विदाउट हिज परमिशन और क्रेडिट. तो ये गाना जो है वॉज क्रिएटेड एज अ ट्रिब्यूट टू महाराणा प्रताप और इसका इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया है. और फिल्म जो है फ्राइडे को रिलीज हुई जिसके बाद रपेरिया बालम जो है ये इंस्टा पर गए और इन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट जो है ये जाहिर किया. उन्होंने कहा उनका दिल टूटा है आज और आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि क्यों. आई माइट से आई शुड बी हैप्पी बिकॉज माई सॉन्ग इज इन मिर्जापुर बट द मिर्जापुर टीम डिड नॉट टेक माई परमिशन टू यूज माई सॉन्ग. हु गेव देम द परमिशन? आई डिड नॉट. ये उन्होंने कहा है.
0: इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी कब तक ये कंट्रोवर्सी क्लियर अप होती है या कुछ क्लैरिटी जो है इस मामले में मिलती है.
2: मॉर्निंग्स मेड बेटर.
3: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन.
4: ना दिल मंगिए ना ही टाइम.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: When you see them on the road, you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting your back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
3: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
4: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
5: 2pm call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
6: Naya hybrid dhoon rahe ho? The Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Melukao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance low. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada Kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Melukao. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
7: MediaWorks complaints. How can I help?
8: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
7: Nice.
8: And you talked me into creating this funny character.
7: Great.
8: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
7: Are you?
8: Yes.
7: Are you Bobby the Baker?
8: Yes.
7: What's that thing you do again?
8: Stop it.
7: You bring the mouth.
8: Stop it.
7: I'll bring the pie.
8: Stop it, please.
7: Okay.
8: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
7: So what's the problem?
8: My name's Bruce.
9: Advertise with
10: MediaWorks.
7: New Zealand listens to us.
1: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
12: What's going on?
13: तो चलिए आज का डेली राउंडअप आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. एंड आई विल स्टार्ट थिंग्स ऑफ विद दिस अनाउंसमेंट जो हुआ है अबाउट ऑकलैंड एयरपोर्ट. अभी एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट सामने आई जहां पर कहा गया कि ऑकलैंड एयरपोर्ट का लॉन्ग टर्म रीडेवलपमेंट प्लान जो है डज इंक्लूड रिवर्सिंग द ऑर्डर ताकि सिक्योरिटी हैपन्स बिफोर कस्टम एंड पासपोर्ट कंट्रोल. बट ऐसे में ये कहा गया है कि अभी करंटली अगर देखा जाए प्रोसेस है चेक इन और उसके बाद आप बैग्स ड्रॉप करो, गो थ्रू कस्टम्स एंड पासपोर्ट इमिग्रेशन कंट्रोल, गो थ्रू एविएशन सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एंड एंटर डिपार्चर्स एयर साइड एरिया एंड गो टू योर गेट. न्यू प्रोसेस जो होगा फ्यूचर में, इट विल बी बेसिकली चेक इन एंड ड्रॉप योर बैग्स ऑफ, गो थ्रू सिक्योरिटी स्क्रीनिंग, गो थ्रू कस्टम्स एंड पासपोर्ट इमिग्रेशन कंट्रोल एंड देन उसके बाद एंटर द डिपार्चर्स ए साइड एरिया एंड गो टू योर गेट. ऑकलैंड एयरपोर्ट का कहना है कि द रीजन इज टू पुट द स्लोअर सिक्योरिटी प्रोसेस फर्स्ट ताकि मोर इफिशियंट पैसेंजर फ्लो हो सके. और इट्स मास्टर प्लान स्पेसिफिकली सेज कि जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल है विल रिजर्व द ऑर्डर ऑफ कस्टम्स एंड एविएशन सिक्योरिटी ताकि ट्रेवलर्स कंप्लीट कर सके सिक्योरिटी बिफोर रीचिंग कस्टम्स प्रोसेसिंग.
14: ओके अगर आम चुनाव आज होता तो करंट कॉलिशन गवर्नमेंट वुड हैव रिटर्न टू पावर.
13: ओह
14: अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च जो किया गया है और जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें इसे टैक्स पेयर यूनियन क्यूरिया पोल जो है उसमें पाया गया कि जो अपॉर्चुनिटीज पार्टी इनके बारे में काफ़ी बातें हो रही थी कि दे माइट टर्न आउट टू बी द किंग मेकर. They have fallen from 6.1 to 4.5%. इसका मतलब ये होता है दे विल नॉट रीच द थ्रेशहोल्ड.
13: ओके
14: नेशनल वाज डाउन 2 परसेंटेज पॉइंट्स टू 29, लेबर डाउन 1.9 टू 25.9, एक्ट एंड ग्रीन्स वेर द मेन बेनिफिशरीज, ग्रीन्स अप 3.8 टू 13.9 एंड एक्ट 3.2 अप गया है टू 10.5. न्यूजीलैंड फर्स्ट वाज डाउन 0.7 टू 8.4%. द तिपति माउरी पार्टी, इनको 0.5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले हैं, दे आर अप 2% अप टू 2% राइट नाउ.
13: इंटरेस्टिंग. तो और भी कई अपडेट्स हैं जो जैसे जैसे हमारे हाथ लगेंगे ये थ्रू आउट द प्रोग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट शोज में आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे. बट टॉकिंग अबाउट डेली राउंड अप, वन मोर अपडेट फॉर यू.
14: वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट शॉपिंग सेंटर जो है इसे अब मार्केट पर कर दिया गया है फॉर सेल. और रियल एस्टेट एजेंट्स का कहना है दिस कुड बी द लार्जेस्ट सिंगल एसेट रिटेल ट्रांजैक्शन एवर सीन इन न्यूजीलैंड मार्केट. और ये जो शॉपिंग सेंटर है ऑकलैंड का बॉटनी टाउन सेंटर. एंड कॉलेज और JLL हैव जॉइंटली बीन अपॉइंटेड टू रन एन इंटरनेशनल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैंपेन जो अक्टूबर 14th को बंद होगा.
1: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI. 1, 2, 3, 4.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chupo jao, papi ho. Chupo jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातें।
2: सबसे पहले आज कहते हैं कि बेगुनाह कोई नहीं, राज सबके होते हैं, किसी के छुप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं।
3: Very true.
2: और दूसरी बात, आप मक्खी को नहीं समझा सकते कि फूल कचरे से ज्यादा खूबसूरत है।
3: Oh, interesting. एक बार फिर से हो जाए।
2: आप मक्खी को नहीं समझा सकते कि फूल कचरे से ज्यादा खूबसूरत है।
3: वेरी नाइस। चलिए इसी के साथ साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत, जाने की जाने का समय हो रहा है। आज आपने अपना साथ और कीमती समय हमारे नाम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ याद रहे, हम बोर्डिंग कॉल का ये फाइनल वीक है, आपको हम बार बार रिमाइंड करा रहे हैं ताकि इस मौके से आप फ़ायदा उठाएं, मौके से चूके नहीं लेकिन फ़ायदा उठाते हुए आप जीत सके हमारे साथ टू रिटर्न टिकट्स टू वनवातु
2: विद $1,000 स्पेंडिंग मनी। ऑल यू गॉट टू डू इज बोर्डिंग कॉल जो है ये सुनते रहे, जैसे ही ये आपको सुनाई दे आपको जाना है रोवर पर और टाइप करना है बोर्ड नाउ और सबमिट करना है।
3: तो याद रहे हमारा हम बोर्डिंग कॉल, इसमें पार्ट लेने के लिए आपको बस क्यू टू बोर्ड के लिए सुनते रहना है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप एनी टाइम हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं एंड वी विड be able to explain it to you कि कैसे आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। चलिए जाते जाते आज का आखिरी थ्रोबैक आपके नाम हम छोड़े जा रहे हैं। फिल्म आई थी ईयर 2000 में, क्या कहना, और उसी फिल्म का ये गाना अलका याग्निक, कुमार सानू और सोनू निगम की आवाज़ों में है। आप सबके नाम

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver, or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
2: The first time Glenn saved lives was a Thursday. He was wearing odd socks. He crossed his feet. No one seemed to notice. The second time wasn't quite as dramatic. He closed his eyes to see how many dog breeds he could name. 22. Not bad, Glenn. Not too bad. Sit back and save lives at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लें।
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
4: पर...

सरप्राइज सरप्राइज, 3 मिनट हो रहे हैं 10 बजकर और मैं पूजा आज आपका साथ दे रही हूँ माई टाइम के सफर में, ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM पर या रोवा ऐप पर। फिलहाल अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही था कि आज माई टाइम के सफर में हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलिंग इन फॉर काशिका टुडे, शी इज़ अ बिट अनवेल लेकिन बहुत ही जल्द तबीयत सही हो जाएगी और वापस से हमारे साथ माई टाइम के सफर में जुड़ेंगी वो ज़रूर। लेकिन आज उम्मीद है कि मेरे साथ ये माई टाइम का सफ़र तय करने के लिए आप एकदम तैयार हैं। और यू नो, जब भी ऐसे मौके मिलते हैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जुड़ने का, वाई से नो इजेंट इट। तो आज जब इसके लिए तैयारियाँ चल रही थी मेरी, आई केम अक्रॉस दिस वेरी ब्यूटिफुल पोस्ट एंड मैंने सोचा कि इसी के साथ ना माई टाइम की शुरुआत करेंगे। सो इसमें लिखा है, द मो यू आर थैंकफुल द मो यू अट्रैक्ट थिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर। जितना आप शुक्रगुजार रहते हैं उतना ही ज़्यादा चीज़ों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं शुक्रगुजार होने के लिए। इसीलिए लाइफ में जब भी मौका मिले जो आपके लिए बहुत अहमियत रखता हो, आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपको पता है बहुत ख़ास है, या फिर यू नो बेसिक्स के बारे में अगर हम बातें करें, उन चीज़ों के लिए हम अक्सर शुक्रगुजार नहीं होते। वी आर नॉट थैंकफुल फॉर दोज थिंग्स, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन ऐसी चीज़ों को नोटिस करना, उन्हें अप्रिशिएट करना, उनके लिए थैंकफुल होना भी ज़रूरी है। बिकॉज द मोर यू आर थैंकफुल फॉर द मोर यू अट्रैक्ट थिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर। तो ऐसे में चलिए आज के इस माई टाइम के सफ़र की शुरुआत आप सभी के साथ। 5 मिनट हो रहे हैं 10 बजकर, आज है मंडे 7th of September एंड दिस इज़ माई टाइम। फिलिंग इन फॉर काशिका, मैं पूजा आपका साथ दे रही हूँ। इस घंटे आपके लिए काफ़ी कुछ हम लेकर आए हैं धीरे।

0: आपके लिए आज ये बड़ा ही कमाल का ट्रैक जो है ये हम लेकर आ रहे थे, और सोनू निगम साथ में उदित नारायण एंड ऑफ कोर्स सुनिधि चौहान जो है इनकी आवाज़ें आपके लिए हमने पेश की। 2004 में फिल्म आई थी मुझसे शादी करोगी, उसी का ये टाइटल ट्रैक रहा, पिक्चराइज्ड ऑन सलमान खान एंड अक्षय कुमार प्लस प्रियंका चोपड़ा। फिलहाल 15 मिनट हो रहे हैं सुबह हमारे स्टूडियोज में, 10:00 मंडे 7th of September की सुबह आप सभी के नाम कर रहे हैं ऑन माई टाइम 104.2 FM या रोवर पर अगर आप हमें सुन रहे हैं। रिमाइंडिंग यू ऑल कि अगर कोई भी डेडिकेशन सेंड करना हो, बिकॉज टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर यू, आप वो दिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, तो 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। इफ़ यू ओपन द लाइन्स फॉर एनी कॉम्पिटिशन एंड स्टफ लाइक दैट, तो आप 0800-004-866 पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। बाय द वे, इलेक्शन कैंपेन जो है ये काफ़ी हीटअप हो रहा है विद डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ जो अनाउंस कर रहे हैं अपनी नई नई पॉलिसीज। संडे को काफ़ी अनाउंसमेंट्स जो है ये सामने आए, लेस देन 9 वीक्स जो है ये बाकी है अब जनरल इलेक्शन को। तो ऐसे में चलते हुए कुछ अपडेट्स हमारे हाथ भी लगी है अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने अपने अपने अनाउंसमेंट्स किए हैं नई नई पॉलिसीज़ पर, तो इस पर चर्चा करेंगे लेटर दिस आवर, जिसके लिए आपको हमारे साथ ही बने रहना है। आई ट्राई एंड एक्सप्लेन विच पार्टी इज अनाउंस्ड व्हाट। और दूसरी ओर कमिंग अप वेरी शॉर्टली ऑफिस शाउट आउट, आज ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है आपके ऑफिस बेस्टीज को याद करने के लिए या फिर कोई एक्स वर्कर है इनको याद करने के लिए। व्हाट्स द थिंग जिसके जरिए आप अपना शाउट आउट आज कर सकते हैं, जानने के लिए बस हमारे साथ ही बने रहिएगा।
1: माय टाइम विद कशिका,
2: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं।
3: We gotta go. Are you ready?
4: Come and take a trip with me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
6: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
6: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए। कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं, तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.go.nz। दैट्स commonwealthvault.go.nz।
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: हाँ। अच्छा
9: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
12: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
11: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
11: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा.
5: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
6: Office shout out.
0: ऑफिस शाउट आउट आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. फिलहाल 20 मिनट हो रहे हैं 10 बजकर. इफ़ यू आर इन योर ऑफिस राइट नाउ या फिर अगर आप अपने काम पर हैं, यू आर राइट नाउ यू नो लिसनिंग टू मी ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, तो ये मौका आपके पास. और आज का जो शाउट आउट है ये आपको पर्टिकुलरली करना है आपके ऑफिस बेस्टी के नाम. आपका वो ऑफिस बेस्टी जिसके बिना आपका हर लंच अधूरा रहता है. आपका वो ऑफिस बेस्टी जिसके साथ आंखों ही आंखों में काफ़ी इशारे हो जाती हैं और कई दबी बातें झुकी हो जाती हैं. आपका वो ऑफिस बेस्टी जिसके साथ आफ्टर आवर्स भी स्पेंड करने को दिल करता है और उनके जो स्पेशल डेज होते हैं वो आपको पर्टिकुलरली बहुत याद रहते हैं. आपका वो ऑफिस बेस्टी हु मेक्स यू फील लाइक कमिंग टू वर्क एवरी डे. क्या आपके पास है ऐसा कोई ऑफिस बेस्टी? एंड इफ यू हैव देम इन योर लाइफ इन योर ऑफिस विद यू वर्किंग, तो उनके लिए कीजिए एक शाउट आउट आज हमारे साथ ऑन माय टाइम. ऑल यू नीड टू डू इज आपको लिखना है अपना नाम, कहां पर काम करते हैं इफ यू वांट टू डू दैट, ताकि हम आपके सभी वर्क कलीग्स को यू नो शाउट आउट दे सके. या फिर अगर आप पर्टिकुलरली अपने ऑफिस बेस्टी को याद करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. लेट अस नो कितने सालों से एक दूसरे के साथ आप काम कर रहे हैं और कितना स्पेशल रिश्ता ये आप सेलिब्रेट करते हैं अपने ऑफिस बेस्टी के साथ आज के हमारे ऑफिस शाउट आउट में. तो 5599 हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, ताकि आपके लिए आपकी ओर से ये शाउट आउट हम कर सके फॉर योर बेस्टी इन योर ऑफिस एट योर वर्क प्लेस. एंड ऑन द अदर हैंड थोड़ी देर बाद जैसे कि हमने आपसे कहा था, विल हैव अ लुक एट द न्यू पॉलिसीज जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज ने अनाउंस किए हैं टू अट्रैक्ट द वोटर्स.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
0: मैसेजेस भेजने हैं तो 5599 पर अपने नाम के साथ अब जरूर ऐसा कर सकते हैं. और आपको दे रहे हैं इस गाने तक का समय ताकि इस गाने के बाद आपके लिए भी शाउट आउट हम कर सके. अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम मिर्जापुर द मूवी, रोमी और साथ में श्रेया घोषाल की आवाजों में.
13: बांधा

0: ये गलत नहीं होगा कहना कि कनिका कपूर के करियर का सबसे बड़ा हिट ये गाना साबित हुआ जो उन्होंने मीत ब्रोस और साथ में कुणाल अवंती के साथ क्रिएट किया। सो कनिका कपूर को आप सुन रहे थे रागिनी MMS 2, उस फिल्म का ये ट्रैक रहा आपके लिए आज चार्ट बस्टर में। फिलहाल जो मैसेजेस आए हैं, अ बिग शाउट आउट टू माई ऑफिस बेस्टी सेरा, वी स्टार्टेड एज कलीग्स बट नाउ शी नोज वे टू मच अबाउट माई पर्सनल लाइफ, wouldn't have survived Monday mornings without her. ये हमारे पास आरती आपने भेजा है, थैंक यू सो मच। कहाँ पर आप दोनों एक साथ काम करते, खैर वो आपने नहीं लिखा, बट डेफिनेटली अ बिग बिग शाउट आउट टू योर ऑफिस बेस्टी सेरा। Shout out to Aman at work. We spend 8 hours working together and the rest of the day discussing what we are having for lunch. Nitesh, aapka message aaya hai. Thank you so much aapke bhi message ke liye. Bahut bahut shukriya. Aur kisi ne Priya ke liye message bheja hai. Unhone likha, I want to shout out for my bestie Priya. She is the only reason I actually look forward to going into the office. The coffee machine is the second reason. क्या बात है यार, वेरी क्रिएटिव आंसर्स आप भेज रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। बट आज ओ प्रिया, आपके लिए बाय द वे ये मैसेज कविता ने भेजा था, माय बैड। सो यस, आपने अपने अपने ऑफिस बेस्टीज को याद किया ऑफिस शाउट आउट के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे, मैंने कहा था ना कि आपको बताएंगे अबाउट द पॉलिसीज विच हैव बीन अनाउंस्ड इन द वीकेंड। अलग अलग पार्टीज़ ने अलग अलग पॉलिसीज अनाउंस की है और लेस देन 9 वीक्स अब बाकी हैं जनरल इलेक्शंस को। तो सबसे पहले आपको बताएं, जो अनाउंसमेंट ग्रीन पार्टी ने किया हुआ है, उन्होंने कहा है कि दे वॉन्ट टू क्रिएट अ गवर्नमेंट ओन्ड सुपर मार्केट चेन जिसे कीवी मार्ट नाम जो है ये दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड में सुपरमार्केट इंडस्ट्री देखा जाए करंटली ये डोमिनेटेड है बाय दो मेजर कंपनीज, जिसमें है फूड स्टफ जो ब्रांड्स लाइक न्यू वर्ल्ड एंड पैक एंड सेव इनकॉर्पोरेट करते हैं, और दूसरा है वूलवर्थ्स जो वूलवर्थ्स को मैनेज करते हैं ऑब्वियसली। और ग्रीन पार्टी ने आर्ग्यू किया है कि ये नेसेसरी नहीं है कि देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ सुपरमार्केट्स इन न्यूजीलैंड, लेकिन देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कंपटीशन। उनका कहना है कि ज़्यादा कंपटीशन का मतलब होगा प्रेशर पड़ेगा सुपरमार्केट्स पर और वो फूड प्राइसेस जो है ये कम करेंगे। ग्रीन पार्टी का ये कहना है कि वो दरअसल रिक्वायर करेंगे फूड स्टफ एंड वूलवर्थ्स को टू सेल 120 सुपरमार्केट्स एंड 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स टू द गवर्नमेंट बेसिकली, जहां पर जो स्टोर्स होंगे जो फैसिलिटीज होगी दे विल बी देन प्लेस्ड इनटू पब्लिक ओनरशिप। इन अदर वर्ड्स, इंस्टेड कि मेजर सुपरमार्केट जो है उन्हें प्राइवेटली ओन किया जाए, द गवर्नमेंट वुड ओन अ सुपरमार्केट चेन यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टोर्स, जो करंट स्टोर्स है उनका इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया जाएगा। सो द बेसिक आइडिया इज मोर सुपरमार्केट कंपटीशन, मोर प्रेशर ऑन सुपरमार्केट्स, पोटेंशियली लवर फूड प्राइसेस, ये प्रपोजल है ग्रीन पार्टी का। और दूसरा जो अनाउंसमेंट हुआ बाय न्यूजीलैंड फर्स्ट, जहां पर न्यूजीलैंड फर्स्ट के जो लीडर है विंस्टन पीटर्स, इन्होंने अनाउंस किया है एक प्रपोजल कंसर्निंग द न्यूजीलैंड सुपर एनुएशन। उनकी पार्टी का कहना है कि वो चेंज करना चाहते हैं रूल्स ताकि फ्रॉम 2029 एक व्यक्ति जिनको न्यूजीलैंड सिटीजन या जो न्यूजीलैंड सिटीजनशिप हो जिनके पास, उन्हीं को ही न्यूजीलैंड सुपर एनुएशन जो है ये मिले। अगर आप नहीं समझते हैं कि सुपर एनुएशन क्या होता है, तो बेसिकली न्यूजीलैंड में सुपर एनुएशन जो है ये गवर्नमेंट का एक पेमेंट होता है जो रिटायरमेंट के बाद लोगों को मिलता है, एंड इट इज़ अवेलेबल टू एलिजिबल ओल्डर पीपल जो मीट करते हैं करंट रेसिडेंसी और अन्य एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को। एट प्रेजेंट सिटीजनशिप इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, और न्यूजीलैंड फर्स्ट का कहना है कि वो ये बदलकर ये रिक्वायरमेंट लाना चाहते हैं। विंस्टन पीटर्स ने कहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूजीलैंड सुपर एनुएशन टू माइग्रेंट्स एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनता जा रहा है, और उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए हैं एसेंशियली कि अगर कोई न्यूजीलैंड में लेटर इन देयर लाइफ मूव होता है, रिलेटिवली कम समय यहाँ पर स्पेंड करते हैं, कम समय तक काम करते हुए कम टैक्सेस पे करते हैं, तो उनको सुपर एनुएशन नहीं मिलना चाहिए। न्यूजीलैंड फर्स्ट का ये मानना है कि दैट क्रिएट्स एन अनफेयर बर्डन ऑन पीपल जो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ज्यादा टैक्स उन्होंने पे किए हैं फॉर द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स। सो दिस इज अनदर प्रपोजल दैट दे हैव गिवन। व्हाट दे आर नॉट प्रपोजिंग इज कि वो दरअसल रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर 67 नहीं करना चाहते, और अन्य चेंजेस जो सुपर एनुएशन एंटाइटलमेंट में है वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, और अन्य चेंजेस जो एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी रूल्स को लेकर है उसे ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। So these were some of the policies announced by the Green Party and New Zealand First Party. क्या कहना है ACT Party का और National Party का, क्या announcements उन्होंने किए हैं ये भी जानेंगे बस थोड़ी देर में। The beat of-
1: Bollywood.
2: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: मोहित चौहान की आवाज आपके लिए फ्रॉम द मूवी दिल तो बच्चा है जी, ये हम शामिल कर रहे थे 2011 में ये फिल्म आई है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, उम्मीद है यू आल्सो एंजॉयड इट। बाय द वे, रिमाइंडिंग यू ऑल, हमारा हम बोर्डिंग कॉल अभी तक प्ले नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि मौका है आपके पास हमारे साथ शामिल होने का हम बोर्डिंग कॉल के लिए, अपने अपने नामों को रजिस्टर कराने का। ऑलमोस्ट 4000 एंट्रीज होने वाली हैं फॉर हम बोर्डिंग कॉल, बट इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन इट, इसका मतलब ये है कि आप मिस आउट कर रहे हैं ऑन अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ विनिंग टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातु विद सोलमन एयरलाइंस प्लस $1000 स्पेंडिंग मनी। अगर आप सोच रहे कैसे एंटर करना है, बहुत आसान है, आपको सुनते रहना है क्योंकि 11 से 12 बजे के बीच माई टाइम के सफर में आपके लिए क्यू टू बोर्ड ये प्ले होगा। जैसे ही क्यू टू बोर्ड का ऑडियो प्ले हो वैसे ही आपको विजिट करना होगा रोवा पर हमारा हम बोर्डिंग कॉल का कॉम्पिटिशन पेज, जहां पर आपके लिए लिखा होगा एंटर कोड नाउ, और जहां ये लिखा है वहीं पर आपको बस जाकर टाइप करने हैं दो वर्ड्स, बोर्ड नाउ, BOARD स्पेस NOW। बोर्ड नाउ टाइप करने के बाद आपको बस सबमिट पर क्लिक करना है, दैट्स इट। इतना आपने कर दिया, आपकी एंट्री स्ट्रेट अवे पहुंच जाती है हमारे हम बोर्डिंग कॉल के इस ड्रॉ के लिए। और ये आप याद रखिए, अगर आपको कंपटीशन पेज का लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक हासिल करने का एक सबसे सिंपल तरीका, आप BC यानी कि बोर्डिंग कॉल का शॉर्ट फॉर्म BC लिखकर 5599 पर सेंड कर सकते हैं। ऑटो रिप्लाई में जो लिंक आपको मिलेगा ना, वही है हम बोर्डिंग कॉल का कॉम्पिटिशन पेज का लिंक, इट्स दैट ईजी। हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलमन एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनवातु। आप flysolomons.com विजिट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस अराउंड हम बोर्डिंग कॉल, तो इसके लिए आप hum.rover.nz जो है ये विजिट कर सकते हैं। पर भूलिएगा नहीं, टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातु विद $1000 स्पेंडिंग मनी जीतने का मौका है।
1: Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
4: The Auckland Home Show starts this Thursday at Auckland Showgrounds. With inspiration from the front gate to the back fence, discover hundreds of exhibitors, expert advice, and the all-new garden showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Buy tickets now and save at aucklandhomeshow.co.nz.
5: Kabhi kabhi low feel karna normal hai, bilkul mausam ki tarah. Kabhi dhoop, kabhi badal. Apni feelings pe dhyan dijiye. Reach in and check how you're doing. Reach out aur kisi trusted professional se baat kijiye. Support is available at Asian Family Services. Call Asian Helpline on 0800-862-342. That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
6: Coffee? The usual?
7: How about the unusual?
8: Can't wait for coffee? Then don't! Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
9: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
10: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. Trade

फिलिंग इन फॉर काशिका टुडे, मैं पूजा आपका साथ दे रही हूँ माई टाइम के सफर में. एंड वी आर ऑलमोस्ट 17 मिनट्स अवे फ्रॉम 11 फॉर नाउ. ठीक 11 पर आपके लिए न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये भी रहेगा, बट अभी के लिए बातें कर रहे हैं हम अबाउट द न्यू पॉलिसीज जो अलग अलग पार्टीज ने अनाउंस की है. वी हैव स्पोकन अबाउट द ग्रीन्स एंड न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी, लेकिन एक्ट पार्टी के बारे में अगर बातें करें तो एक्ट का कहना है कि न्यूजीलैंड में क्लाइमेट पॉलिसीज जो है दे आर कॉस्टिंग अस टू मच, और वो स्क्रैप करना चाहते हैं नेट ज़ीरो टारगेट को, रिपील करना चाहते हैं ज़ीरो कार्बन एक्ट को, और रिड्यूस करना चाहते हैं कार्बन रिलेटेड कॉस्ट, जिससे दे बिलीव कि कॉस्ट कम होगा और इससे और आसानी जो है ये होगी. एक्ट का कहना है, या एक्ट पार्टी के क्लाइमेट स्पोक्स पर्सन सैमन कोर्ट का कहना है कि द पार्टी वांट्स न्यूजीलैंड टू गेट अ बेटर डील अंडर द पेरिस अग्रीमेंट. और एक इशू जो एक्ट पर्टिकुलरली एड्रेस करना चाहते हैं इज हाउ द मीथेन एंड CO2 आर बींग ट्रीटेड. तो लेट्स सी इनके इस पॉलिसी अनाउंसमेंट को लेकर कितना फ़ायदा या नुकसान इनको होता है. एंड द फाइनल वन, जहां पर नेशनल पार्टी की बातें करें तो नेशनल हैज़ सेड कि वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना फर्स्ट होम जो है ये ले सके विद अ 5% डिपॉजिट, और इसीलिए वो इंक्रीज करना चाहते हैं द इनकम लिमिट फॉर फर्स्ट होम लोन स्कीम फॉर पीपल हु अर्न अंडर $300,000 कम्बाइंड. तो लेट्स सी ये पॉलिसीज इन्होंने अनाउंस किए हैं, और अपडेट्स जो है आपके लिए डेफिनेटली हम लेकर आते रहेंगे. आने वाले दिनों में भी कई अनाउंसमेंट्स डेफिनेटली होंगे विच वी विल बी शेयरिंग विद यू ऑल. पर फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर ड्रीम डायरी. तो ड्रीम डायरी के बारे में बातें कर लेते हैं, लेकिन बिफोर वी डू द एक्चुअल थिंग, जहाँ पर ड्रीम डायरी में अगर आपने कुछ सपना देखा इसका क्या मतलब होता है, उससे पहले आप हमें ये बताइए, आपने ऐसा कोई सपना देखा है जिसके मतलब के बारे में आप जानना चाहते हैं? अगर आपने ऐसा कोई सपना देखा है जिसका मतलब आप समझना चाहते हैं कि अच्छा इसका क्या मतलब, बिकॉज आई सॉ दिस, तो आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 पर, और बता सकते हैं कि आपने क्या सपना देखा. और अगर आपने ऐसा कोई सपना देखा है तो उसके साथ आप हमारे पास ये मैसेज करोगे, और जो अगला सेगमेंट होगा ड्रीम डायरी का, उसमें आपके लिए हम डिटेल ज़रूर लेकर आएंगे. लोग अक्सर जब अपने सपने में सांप यानी कि स्नेक्स देखते हैं तो उनको रिलेट करते विद द स्पिरिचुअल और मोर रिलीजियस साइड ऑफ इट, स्पेशली हमारे जो इंडियन कम्युनिटी को लेकर हम देखें. लेकिन कहते हैं कि अगर आप अपने सपने में सांप देखते हैं, यू आर एक्चुअली डीलिंग विद हिडन फियर्स, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एक टॉक्सिक सिचुएशन जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं या थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं. अगर हम कॉमन मीनिंग्स के बारे में बातें करें तो अगर सांप को सपने में आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली कि उसने आपको काटा है, इसका मतलब होता है कि आप बहुत वनरेबल फील कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद इमोशनल पेन, या फिर आप अवॉइड कर रहे हैं एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसे आपको फेस करना ज़रूरी है, बट रादर देन दैट आप उसे अवॉइड कर रहे हैं. अगर आपने अपने सपने में देखा है कि आपको सांप जो ये चेस कर रहा है, इसका मतलब होता है यू आर रनिंग फ्रॉम एन अनरिजॉल्व्ड इशू, एन इमोशन, या फिर एक मेजर डिसीजन इन योर लाइफ जो लेना आपके लिए ज़रूरी है. और अगर सपने में आप एक पर्टिकुलर रंग का सांप देखते हैं, जैसे अगर आपने ब्लैक स्नेक जो ये देखा, दिस टिपिकली पॉइंट्स आउट द फियर ऑफ अननोन, हिडन इमोशंस, या फिर एक पोटेंशियल डेंजर का वार्निंग साइन भी होता है. दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: वैसे थ्रोबैक से पहले आपको हम याद दिला दें कि एक स्पेशल अनाउंसमेंट आज सुबह ही हुआ है ऑन द ब्रेकफास्ट शो, जो सभी कीर्तन कलाकार हैं इनके लिए। अगर आप या आपके जानकारी में कोई एक ऐसे शख्स है जो कीर्तन गायक है, कीर्तन गाना और ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो कीर्तन गाना पसंद करते हैं, तो ये मौका आपके लिए फीजी कीर्तन को एक नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में आप सबका सहयोग रहा है, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन अब हम फीजी कीर्तन संग्रह, जहाँ पर ऑकलैंड के कलाकारों को एक मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी जहाँ पर वो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सकते हैं, और इसके लिए आपको बस तैयार रहना है। हम फीजी कीर्तन संग्रह के लिए कीर्तन रिकॉर्डिंग जो है ये होगा फ्राइडे 25th ऑफ सितंबर को एट वैदिक सेंटर पापाटोईटोई में। और अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अगर आपको चाहिए तो आप KR यानी कीर्तन रिकॉर्डिंग का शॉर्ट फॉर्म KR लिखकर 5599 पर हमारे पास सेंड कर सकते हैं। ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म हासिल कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स अपने आप रजिस्टर कर सकते हैं। पर याद रहे, रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी रिकॉर्डिंग स्पॉट जो ही कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ 20 आर्टिस्ट्स को ही रिकॉर्डिंग करने का मौका जो है ये मिलेगा। और वंस आपके कंफर्मेशन हो जाएंगे तो हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे टू लेट यू नो कि यू आर कंफर्म्ड, योर स्पॉट इज कंफर्म्ड। 30th ऑफ सितंबर को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, इसीलिए उससे पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। KR लिखकर 5599 पर भेज सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very. That is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99. Or one tooth acrylic denture sirf $599 mein plus free dental examinations for new and existing patients free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment visit Shine Dental at 574 Great South Road Manukau book today on 09-277-6644 T's and C's apply
6: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
7: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
8: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
7: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI
9: Zero
10: with an X.
11: You started your business for a reason, remember? Then all of a sudden, invoices and bills and payroll started getting in the way. And that is where Xero comes in.

0: and struck a number of vehicles as it crashed. Sheriff Rosie Cordero-Stutz says it came to rest in a field.
1: And we have multiple individuals that were transported to local hospitals with unknown injuries.
0: More on that as it comes to us. Now back here, label changes are coming. Recommendations to upgrade to digital labelling has been accepted by the government, and over-the-counter medicine will be aligned with Australia's requirements to eliminate the need for a specialised New Zealand label. Minister David Seymour says the changes will make it easier for exporters to sell to international markets and vice versa. There's been a solid drop in property values here. Quotable value shows they slumped 1.9% in the last quarter, the biggest fall in 2 years. Spokesperson Simon Peterson saying it's been a slow burn.
2: It is good news for first-home buyers in particular. They remain very active in the market. It's not so good news for people who bought around the peak of the market.
0: And State Highway 3 in Taranaki's Hawera is blocked after a truck rolled this morning. No serious injuries, but police are advising drivers to expect delays. In motorsport, with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty, Kiwi driver Scott McLaughlin has broken his two-year IndyCar drought. He led from start to finish to win the season-ending race at California's Laguna Seca on Sky Sport.
3: These guys and girls on my team, Team Penske, have stood by me the whole time. It was unbelievable. We were working hard to be better, but today was a big step in the right direction.
0: Sir Scott Dixon was 17th. And in football, Arsenal's perfect start to the English Premier League season has continued, coming back to beat Chelsea 2-1.
4: News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
5: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
6: सूचित किया जाता है कि Mount Wellington के इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन शलीन, राजन, रॉयलैंड, कृषि, शिवलैंड और गीता के पिता कमलेश नारायण के पति यानी नसोले 6 माइल्स नसीनू फीजी के भूतपूर्व निवासी शिव नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-814-900 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे माउंट वेलिंगटन के इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन शलेन तथा राजन रॉयलैंड कृषि शिवलिन और गीता के पिता कमलेश नारायण के पति यानी नसोले 6 माइल्स नसीनू फीजी के भूतपूर्व निवासी शिव नारायण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-814-900 पर कॉल कर सकते हैं.
5: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
4: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
6: अभी भी मौसम का हाल ऐसा ही बताया गया है, जहां पर बारिश होगी समय समय पर गंभीर बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों के लिए बताया गया है कि शाम के समय बारिश थमती हुई नजर आएगी, तो साउथ ऑफ पापाकुरु के लिए कहा गया है गंभीर बारिश के साथ पॉसिबल थंडरस्टॉर्म्स भी है. आज सनसेट होगा 6:06 PM पर. टेम्परेचर राइट नाउ 15.5 डिग्रीज एंड ओवरनाइट टेम्परेचर 9 डिग्रीज रहेगा.

Good morning, namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits 104.2 FM पर या Rover App के जरिए अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं on my time का आज का ये सफर मैं पूजा आपका साथ दे रही हूँ filling in for Kashika today और इधर जबकि अब हम mid morning मजा जो है ये शुरू करने जा रहे हैं तो definitely मजा तो आएगा भाई अभी याद आपको दिला देते हैं कि अभी तक हमारा बोर्डिंग कॉल प्ले नहीं हुआ है इसका मतलब है आपको सुनते ही रहना है क्यू टू बोर्ड के लिए एज सून एज दैट प्लेज याद है ना आपको सीधे रोवर ऐप पर जाना है कंपटीशन पेज जो है यहाँ पर जाकर आपको बोर्ड नाउ ये सबमिट करना होगा ये दो वर्ड्स हैं एंटर कोड नाउ लिखा होगा कंपटीशन पेज पर बस वहीं पर जाकर आपको बोर्ड नाउ टाइप करना है और सबमिट करना है और बदले में ड्रो में शामिल होकर आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न टिकट्स टू वनवातु विद सोलमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी याद रहे सोलमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनवातु आप flysolomons.com विजिट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए एंड टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए hum.rover.nz विजिट

कर सकते हैं. दिस इज द फाइनल वीक फॉर आवर हम बोर्डिंग कोल, सो जब जब मौका मिले तब तब उसका फायदा जरूर उठाइएगा. बाय द वे, लेटर दिस आवर आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आज की 6 वर्ड स्टोरी और लेफ्ट ओवर मैजिक, ये भी आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे, जहां पर आज बचे हुए चावल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. बचे हुए चावल का सिर्फ चीला नहीं बनता, कुछ और भी बनता है बहुत ही यमी, लेकिन क्या, जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा. बचाओ क्या, 7 मिनट हो रहे हैं 11 बजकर और आपके लिए माई टाइम पर मिड मॉर्निंग मजा मैं पूजा लेकर आ रही हूँ. 5599 पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं. कंपटीशन का जो पेज लिंक अगर आपको चाहिए हम बोर्डिंग कोल के लिए कि कहाँ पर जाकर आपको कोड एंटर करना है, तो बस BC बोर्डिंग कोल का शॉर्ट फॉर्म BC लिखकर अपने नाम के साथ 5599 पर सेंड कर दीजिए.

0: तो आपके लिए लेकर आ रहे थे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा गाना फ्रॉम द मूवी दिल्ली 6. इंटरेस्टिंग व्हाई? बिकॉज दिस सॉन्ग इज अ लॉट ऑफ इमोशंस, राइट? और साथ में व्हेनेवर यू थिंक अबाउट दिस सॉन्ग तो आप खुद ब खुद एकदम ऐसे जो ठुमके नहीं होते हमारे वो वाले लगने शुरू हो जाते हैं फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजंस. द वर्डिंग्स इस गाने में जो है ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है इफ़ यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स अराउंड यू. सुजाता साथ में रेखा भारद्वाज, श्रद्धा और वी एन की आवाज़ों में आपके लिए ट्रैक हम पेश कर रहे थे. आज 14 मिनट हो रहे हैं हमारे स्टूडियोज में इस समय 11 बजकर. बाय द वे आज आपके लिए जो हम लेकर आए हैं एक अपडेट अबाउट आवर यू नो फेरी फ्रेंड्स जो होते हैं, हमारे पेट्स जो होते हैं, स्पेशली द कैट्स एंड डॉग्स वी हैव अराउंड. इनके बारे में कहा जाता है कि व्हेन यू रेज योर पेट्स, बेसिकली कैट्स एंड डॉग्स, ये डॉग्स के मामले में पर्टिकुलरली कहा जाता है कि दे आर लाइक किड्स, बच्चों को आप जैसे रेज कर रहे हैं ना वैसा होता है. कैट्स डॉग्स के मिलान में थोड़ा इंडिपेंडेंट होते हैं, बट डॉग्स जो है अगर आप उनको सही लेसन्स नहीं देते हैं तो वो डिपेंडेंट होते जाते हैं. बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पर आपने ये नोटिस किया कि आपके पेट डॉग में एक चेंज जो है ये आपने देखा है, ऑल ऑफ अ सडन आपका जो पेट डॉग है ये दरअसल बन चुका है थोड़ा यू नो डिफरेंट. जैसे नॉर्मली अगर वो कडली होते थे तो सडनली वो आपको अवॉइड करना शुरू कर दे, उनकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आपने नोट की है. नॉर्मली अगर वो इंडिपेंडेंट थे तो आपके साथ एकदम क्लिंगी होना शुरू कर दे, या अचानक से इरिटेबल हो जाए, फियरफुल हो जाए, या अग्रेसिव बिहेवियर्स अगर शो करने लगे तो इस मामले में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, यू शुड गिव देम स्पेस. अगर आप उनको अवॉइड करोगे, यू डोंट फोर्स कडल्स, या फिर आप उनको फोर्सफुली पिकअप नहीं करते हैं, यू गिव देम सम टाइम एंड लेट देम कम टू यू, तो ये चीज़ उनको हेल्प करती है. चेक इफ समथिंग इज रॉन्ग फिजिकली. ऐसे ही डिसाइड ना कर ले कि उनको मेंटली किसी सिचुएशन का सामना वो कर रहे हैं, क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स है. सडन बिहेवियर चेंजेस जो होते हैं समटाइम्स पेट्स में, ये पेन से रिलेटेड होते हैं या फिर दे आर नॉट फीलिंग वेल उससे रिलेटेड होते हैं. जैसे इफ दे हैव डिफिकल्टी इन मूविंग, इफ दे आर लिंपिंग, इफ दे आर ईटिंग और ड्रिंकिंग डिफरेंटली, क्या उनके टॉयलेट हैबिट्स में कुछ चेंजेस आए हैं, इफ दे आर स्क्रैचिंग और लिकिंग देमसेल्व्स, या फिर वो टच भी नहीं होना चाहते कि आप उनको छुओ, वो भी उनको पसंद नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय छिपे रहते हैं या सोए रहते हैं, तो ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स है जो आप नोटिस कर सकते हैं. एंड थिंक अबाउट व्हाट हैज चेंज्ड, क्या हुआ है जिसकी वजह से ये बदलाव उनमें आया है. मे बी आपके घर पर एक नया पेट आया हो, एक नया पर्सन आपके साथ उन्होंने रहना शुरू किया हो, यू हैव मूव्ड हाउस, यू हैव चेंज्ड द फर्नीचर, आपके घर का रूटीन बदला है, खाने का तरीका बदला है, आसपास शोर शराबे ज़्यादा होने लगे हैं, कम एक्सरसाइज और टेंशन उनको मिल रहा है, या फिर कुछ स्ट्रेसफुल पूरी फैमिली में हो रहा है, दैट योर पेट इज़ ऑल्सो फीलिंग. और साथ में आपके लिए ये कहा गया है कि अगर आप रेगुलर रूटीन्स रखते हैं डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, मील्स, वॉक्स, प्ले टाइम, बेड टाइम, तो ये उनको हेल्प करता है फेमिलियर होने के लिए एंड टू फील सेफ. वो सेफ फीलिंग जो होती है वो उनको हील करने में एंड नॉर्मल होने में ज़्यादा हेल्प करती है. अगर आपका पेट जो नॉर्मली जेंटल होता है लेकिन सडनली अग्रेसिव हो गया है, गिव देम स्पेस, डोंट पनिश देम. समटाइम्स अग्रेशन जो है एक साइन होता है कि वो डरे हुए हैं, स्ट्रेस्ड हैं या पेन में हैं. और अगर स्पेस देने के बावजूद भी ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, देन द गुड आइडिया वुड बी टू स्पीक टू अ वेट. फिलहाल 18 मिनट हो रहे हैं 11 बजकर और माई टाइम आपके लिए ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में पूजा लेकर आ रही हूँ. थोड़ी देर बाद आज की 6 वर्ड स्टोरी, उम्मीद है इसके लिए आप तैयार है.
1: माई टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर.
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है,
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
7: The Auckland Home Show starts this Thursday at Auckland Showgrounds with inspiration from the front gate to the back fence. Discover hundreds of exhibitors, expert advice, and the all-new Garden Showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Buy tickets now and save at aucklandhomeshow.co.nz.
8: White separated. Pockets checked. Cold wash. Gentle cycle. Powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
9: Zero with an X.
10: You started your business for a reason, remember? Then all of a sudden, invoices and bills and payroll started getting in the way. And that is where Xero comes in. Connect your invoicing, bank feeds, bills and payments in one place. Real-time cash flow without all the added chaos. Xero takes care of the numbers so you can get back to doing what you love. Search XERO today.
11: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
12: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
13: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like our mild Colby or Edam cheese blocks 1kg, just $10.99 each. And Huggies bulk nappies 30 to 54 pack, any two for just $29. Only at Woolworths. T's and C's apply.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
0: आज की सिक्स वर्ड स्टोरी के लिए टॉपिक हम आपको दे रहे हैं. सिक्स वर्ड स्टोरी क्या होता है कि आप अपनी ये जो स्टोरी है हमें सिर्फ और सिर्फ 6 शब्दों में अगर बता सके, आपकी क्रिएटिविटी इस मामले में कितनी कमाल की है ये भी पता चलता है. और साथ में आप शेयर करते हैं ऐसे कुछ ब्यूटीफुल सी स्टोरीज हमारे साथ कम से कम शब्दों में. तो सिक्स वर्ड स्टोरी में आज का आपका टॉपिक है आपके पड़ोसी, अभी के नहीं बचपन के, वो पड़ोसी जो आपकी मेमोरी में है तब से जब आप छोटे थे. आज अपने वी कैन से फर्स्ट नेबर ना, हाँ आपके लिए तो फर्स्ट नेबर ही होंगे, तो आपके फर्स्ट नेबर जो है इनके बारे में कुछ भी, या वो एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में आप कुछ भी हमारे साथ सिक्स वर्ड स्टोरी में आज शेयर कीजिए. बस 6 शब्दों का इस्तेमाल कर बताइए उनके बारे में. देखते हैं कितने क्रिएटिव तरीके से आप अपने फर्स्ट पड़ोसी यानी नेबर के बारे में हमें आज सिक्स वर्ड स्टोरी में बता सकते हैं. 5599 पर आपको मैसेज करना है. इनवाइटिंग ऑल योर मैसेजेस एंड आपके मैसेजेस थोड़ी देर बाद हम जरूर देखेंगे.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चलिए आज हम आपको ये भी याद दिला दें कि हमारे बहुत से अमेजिंग पॉडकास्ट्स आपके लिए अवेलेबल है। ना केवल हम पर आप प्रोग्राम्स का मजा उठा सकते हैं, लेकिन रोवर ऐप पर बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और तो म्यूजिक स्टेशन हमारे हैं ही, जो आप जाकर सुन सकते हैं, चाहे वो फीजी कीर्तन संग्रह हो, फीजी भजन हो, या फिर हमारा हम 80s ज्यूक बॉक्स रिवाइंड का जो म्यूजिक स्टेशन हो, या फिर हमारा चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, ये भी आप जाकर जरूर सुन सकते हैं। बट टॉकिंग अबाउट पॉडकास्ट, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है जहां पर अवार्ड विनिंग अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूजबे ये आप सुन सकते हैं। इस रीसेंट एपिसोड में सैंडी एंड रूजबे ने बातें की है विद अभी, जो कि एक कॉन्टेंट क्रिएटर है, और कैसे ये न्यूजीलैंड आने के बाद एक फेस बन चुके हैं, वॉइस बन चुके हैं फॉर द साउथ एशियन कम्युनिटी। इनका स्पेशल कनेक्शन विद फीजी इंडियन कम्युनिटी, ये भी इन्होंने डिस्कस किया है, डिस्क्लोज किया है, और साथ में डिस्कस किए कुछ रियलिटीज ऑफ मूविंग टू अ न्यू कंट्री, कैसे इन्होंने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को यूज करते हुए लोगों को गाइड किया है व्हेन दे आर मूविंग टू न्यूजीलैंड, और कैसे कंटेंट क्रिएशन दिन ब दिन इवॉल्व हो रहा है और एक पावरफुल बिजनेस बन सकता है आने वाले दिनों में। इसके बारे में इन्होंने कुछ बातें जो है ये की है, जो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूजबे के इस रीसेंट एपिसोड में, जो रोवा एंड स्पॉटिफाई पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप बस ड्राइव लिखकर 5599 पर सेंड कर सकते हैं। बाय द वे, आपको ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट के बारे में भी बता दें, जहां पर रिसेंटली हमारी बातें हुई डॉक्टर परमजीत परमार के साथ, जो कि इमिग्रेशन स्पोक्स पर्सन है फॉर द एक्ट पार्टी, और इन्होंने कुछ डिटेल्स शेयर किए हैं, ब्रेक डाउन किया है पार्टी का जो न्यूली प्रपोज्ड इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके बारे में, डिस्कस किए हैं प्लान्स कि कैसे फिजिकल प्रेजेंस और रिक्वायरमेंट फॉर परमानेंट रेसिडेंसीज ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जहां पर रिक्वायर्ड रहेगा 2 years ऑफ रेसिडेंसी विद इन एवरी रोलिंग 5 year पीरियड, और इन्होंने एड्रेस किए हैं कुछ की क्वेश्चंस अराउंड द करंट पीआर होल्डर्स एक्सेप्शंस, और जो न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन सिस्टम है इसे फेयर और बैलेंस्ड बनाए रखने के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट है, ये भी आप जरूर सुन सकते हैं। लिंक चाहिए तो BF लिखकर आप 5599 पर सेंड कर सकते हैं हमारे पास।

0: अरमान मलिक की आवाज आज आप सुन रहे थे माई टाइम के मिड मॉर्निंग मजा के सफर में। बाय द वे, आज की हमारी 6 वर्ड स्टोरी, हमने कहा था अपने फर्स्ट नेबर के बारे में आप हमें बता सकते हैं। तो प्रीति ने हमारे पास मैसेज किया है, माई डॉग्स नेबर बिकेम माई डॉग, ये इन्होंने लिखा। ओके, थोड़ा बहुत हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, शायद इतना क्लोज हो गए थे आप उस डॉग के साथ। इन्होंने लिखा है, माई फर्स्ट नेबर बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, इनका नाम ओके राहुल, आपने हमारे पास मैसेज किया है। गॉट अ बिट कंफ्यूज्ड, बट थैंक यू सो मच आपके भी 6 वर्ड स्टोरी के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय द वे, थोड़ी देर बाद आपको हम बताने वाले हैं हमारे लेफ्ट ओवर मैजिक के बारे में, बचे हुए चावल को आप कैसे इस्तेमाल कर कुछ यमी बना सकते हैं, जानने के लिए कीप लिसनिंग।
1: माय टाइम विद कशिका।
2: वाह,
3: हाउ
2: अद्भुत।

0: आज की लेफ्ट ओवर मैजिक, जहाँ पर बचे हुए चावल को कैसे आप यूज कर उसकी आइसक्रीम बना सकते हैं, समथिंग रियली इंटरेस्टिंग जो मैंने एक वीडियो के थ्रू देखा ओवर द वीकेंड. एंड मुझे लगा कि यार इससे बढ़िया रेसिपी क्या ही सकती, क्योंकि चावल बड़े बचते हैं अगर आपके घर में तो उसको यूज कीजिए. आप क्या कीजिए, एक दिन पुराना चावल चलेगा, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम वाला चावल. तो जो राइस है आप उसे लीजिए और उसे एक पहले तो इंग्रेडिएंट्स बता दे, सॉरी आई एम डूइंग दिस आफ्टर सो मेनी डेज. तो लेफ्ट ओवर राइस का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको आइसक्रीम बनाना है, इंग्रेडिएंट्स चाहिए एक कप लेफ्ट ओवर राइस, दो कप फुल फैट मिल्क, पाँच टेबल स्पून तक या फिर जितना आपको मीठा चाहिए उतना हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं शुगर, और आधा टी स्पून कार्डमम पाउडर एंड इलायची पाउडर एंड एक टेबल स्पून चॉप्ड नट्स. आमंड्स हो तो बढ़िया, पर अगर नट्स नहीं डालने तो भी चलेंगे, बट आई थिंक आमंड्स विल मेक इट टेस्ट बेटर. तो क्या करना है आपको, ले लेना है राइस, बचा हुआ चावल जो आपका, और साथ में दूध एक ब्लेंडर में एक साथ डालकर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दे अंटिल इट बिकम्स स्मूथ. नाउ एक सॉस पैन ले, उसमें ये आपका जो ब्लेंडेड मिक्सचर है इसे डाले और इसे लो हीट पर करीबन 8 मिनट तक आप पकाए, बीच बीच में इसे स्टर करते रहें एंड धीरे धीरे धीरे ये पक जाएगा और थोड़ा थिक हो जाएगा. फिर उसमें थोड़ा सा पानी आप डालें, अगर बहुत थिक हो गया तो थोड़ा सा पानी डालें, प्रोबेबली आप एक टेबलस्पून पानी जो ये डाल सकते हैं टू मेक इट अ बिट पतला सा. और उसके बाद उसमें चीनी डालें और इलायची डालें और फिर उसे दो तीन मिनट के लिए और आप अच्छी तरह से कुक करें. इसके बाद आप उसे साइड में रख दें ताकि वो कम्प्लीटली ठंडा हो जाए. वंस वो ठंडा हो जाए, जिस कंटेनर में इसे आपको फ्रीज करना है इस कंटेनर में इसे डालें, करीबन 3 घंटे तक आप इसे फ्रिज में रख दें और उसके बाद टेक इट आउट. एंड जब ये थोड़ा सेमी फ्रोजन हो बेसिकली, इसे आप वापस से निकालें, वापस से इसे ब्लेंड करें जब तक कि ये फिर से थोड़ा स्मूथ ना हो जाए. देन आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए वापस से फ्रीज करने के लिए डाल सकते हैं. एंड उसके साथ साथ जब आपको ये खाना हो तो खाने से पहले आप क्या करें, इसे बाहर निकाल लें, 5-10 मिनट पहले बाहर निकाल लें, फिर स्कूप्स आउट कर सकते हैं आप इसके बाउल में और उसके ऊपर आप कटा हुआ जो कार्डमम है या पिस्टेशियोस जो भी है ये आप डालकर इसे सर्व कर सकते हैं. इट टेक्स टाइम फॉर इट टू फ्रीज क्योंकि आइसक्रीम है, बट आपके चावल जो है बचे हुए बर्बाद नहीं होंगे. कितना यमी चीज़ आप तैयार कर सकते हैं ना बचे हुए चावल के साथ. आई हैव नॉट ट्राइड द रेसिपी आई विल बी ऑनेस्ट, बट जब भी कभी ट्राई किया तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी मैं.
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: तो चलिए जाने से पहले एक और एक खबर हाथ लगी है और जल्दी से ये आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं. नाउ दिस डिटेल इज अबाउट न्यूजीलैंड हॉस्पिटल्स, कितना अंडर प्रेशर है फिलहाल. इनफैक्ट अगर आपको सही सही बताएं, आरएनजेड पर एक आर्टिकल रिपोर्ट की गई है जिसके हिसाब से कहा गया है कि दे आर वेरी हाई, आई मीन अंडर वेरी हाई प्रेशर. और पेशेंट्स जो हैं देखा जाए तो दे आर अबव द नॉर्मल विंटर लेवल्स करेंटली जो हॉस्पिटल्स फेस कर रहे हैं. और इस सिचुएशन में इमरजेंसी एंड एजेंट केयर जो है इसे प्रायोरिटाइज किया जा रहा है. इसका मतलब ये है कि जो प्लैंड सर्जरीज हैं दे आर बीइंग डिलेड राइट नाउ. हेल्थ न्यूजीलैंड का कहना है कि ये जो डिलेज है वो केस बाय केस डिसाइड किए जा रहे हैं पेशेंट की सेफ्टी और प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए. सर्जरीज विल बी रीशेड्यूल्ड एज सून एज पॉसिबल और ये प्रेशर जो है फॉर अनदर 3 to 4 weeks तक कंटिन्यू हो सकता है. डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो डिले है दे आर कॉजिंग स्ट्रेस, एक्स्ट्रा कॉस्ट्स और डिस्ट्रप्शंस ना केवल पेशेंट्स के लिए लेकिन उनकी फैमिलीज के लिए भी. और हॉस्पिटल इस मामले में कह रही कि वो काम कर रही है मैनेज करने के लिए सिचुएशन को विद एक्स्ट्रा स्टाफ, ओवर टाइम और साथ में टेम्प्ररी बेड्स के साथ भी. तो जैसे ही इस स्टोरी पर कोई और डेवलपमेंट सामने आता है, कुछ और यू नो रिलीफ आता है सामने, तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करते हुए चलेंगे. मिड मॉर्निंग मज़ा थ्रोबैक
1: brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
0: इसी के साथ साथ अब जाने का समय हो रहा है. थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए, आपके समय के लिए. आज माई टाइम में आपने मेरा साथ दिया, शुक्रिया इसके लिए. लेकिन कल आपसे मुलाकात होगी ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर. तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और एंजॉय कीजिएगा आज का हमारा फाइनल थ्रोबैक ऑन माई टाइम.